नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त जागृति, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ, आपकी आवाज में, सिर्फ और सिर्फ वागड़ रेडियो पर। तो चलिए शुरू करते हैं दिन का ये खूबसूरत सफर हर रंग के साथ में। साथियों, सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना आप सुन पाएंगे। हर सुबह की शुरुआत हो ईश्वर के नाम के साथ। आरती, भजन और मन को शांति देने वाला ये कार्यक्रम समर्पित है आराधना को। तो जुड़िए प्रभु स्मरण में और कीजिए अपने दिन का शुभारंभ। इसी के साथ साथियों, अगला कार्यक्रम है 6:30 पर कार्यक्रम खेतीबाड़ी। किसान हमारे अन्नदाता है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की सलाह, ताकि खेत भी मुस्कुराए और अन्न भंडार भी भरे। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी कि मैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है सच्चा बचपन। इसे आप सुन पाएंगे 7:00। श्रोताओं, बचपन की कहानियाँ, नैतिक शिक्षा और बच्चों के लिए मनोरंजन का खजाना, प्यारे नन्हे श्रोताओं के लिए एक खास कार्यक्रम जहाँ हंसी, ज्ञान और संस्कार साथ चलते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इसी रूपरेखा को आगे बढ़ाते हुए हम आगे चलते हैं। आप सुन पाएंगे 7:30 पर कार्यक्रम युवाओं की आवाज को, युवा शक्ति देश की असली ताकत। इस कार्यक्रम में उठेंगे युवाओं के मुद्दे, मिलेंगी करियर गाइडेंस, मोटिवेशंस और नए विचारों को मंच। जुड़िए और बनिए बदलाव की आवाज में। इस कार्यक्रम को लेकर आती है आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी कि मैं। अगला कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8:00 सच्चा स्वराज। जी हाँ साथियों, स्वराज सिर्फ राजनीतिक नहीं, आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम में सुनिए स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और जानिए आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी कि मैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे 8:30 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम लोक संगीत, जिसमें आप सुनेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास, लोक संगीत में बसती है हमारी आत्मा। तो तैयार हो जाइए दोस्तों ढोलक, बांसुरी और मंजीरे की ताल पर झूमने के लिए। अगला कार्यक्रम सुन पाएंगे 9:00 हमारा स्वास्थ्य है। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर। साथियों, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, इस कार्यक्रम में जानिए घरेलू नुस्खे, डॉक्टरी सलाह और योग से जुड़ी बातें और खुद को रखिए तंदुरुस्त हर रोज। आगे बढ़ते हुए सुनेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे आप सुन पाएंगे 9:30 पर और इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। साथियों, आपको कार्यक्रम की रूपरेखा तो बता ही दी हूँ। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे 10:00 और 10:00 कार्यक्रम आता है हमारी बात आपके साथ। साथियों, ये कार्यक्रम समाज के मुद्दे, संवाद का एक मंच। आप कहिए, हम सुने, क्योंकि आपकी बातों में है वो ताकत जो बदलाव ला सकती है। ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 10:00 और इसे लेकर आएंगे हमारी रेडियो साथी। दोपहर 11 से 1 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। आपकी फरमाइश सिर्फ आपके नाम, आपके पसंदीदा गानों की फरमाइश आपके संदेशों के साथ। आप अपने संदेश हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234 और आप अपने फरमाइश गीतों को सुन सकते हैं वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। श्रोताओं, बजेंगे वही गाने जो आपके दिल की धड़कन है। तो जुड़े रहिए वागड़ रेडियो पर, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज है सबसे खास। तो श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की प्रातः कालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना।

0: जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन्म ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति, जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है। और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अगर चाहो तेज दिमाग ने स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई एन बोनू, आ लक्षण आपने अपने मई देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
4: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: जागृति बूंद, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था
5: नाना अंजलि बूंद हूँ था का?
1: अरे जागृति बूंद, आपड़ी जे नदी है ये हुके जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
5: ओ अंजलि बूंद, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बूंद, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
5: होवे अंजलि बूंद, आपड़े भाई बूंद थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
1: होवे होवे जागृति बूंद, आपड़े भाई बूंदो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: અંજલિ બોલ, ગીત તો આઈશું પૂરું, અને ગીતને બાદ એક વખત ફરી આપણે કિસાન ભાઈ બહેનોનું આપણે સ્વાગત કરું આપણે આજની કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં.
1: હવે
0: જેમ કે ગીત કે પહેલે આપણે વિષય બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાત કરવા રહ ધાનની ખેતીને બારે મેં, કે ધાનની ખેતી હરતે કરવી જોઈએ અને ધાનની ખેતી આપણે બોલે હરતે મહત્વપૂર્ણ હે.
1: હવે
0: તો આના વિશેની જાણકારી અલવા બોલે આજે આપણે સ્ટુડિયો મેં વિષય વિશેષજ્ઞ આવે હે, જે કે જેનું નામ હે પટેલ સર. તો એ આપણે બતાડેંગા ધાનની ખેતીને બારે મેં. તો પહેલે હાંભળી લાણાની વાત મારે કરા આપણી વાત એમ.
1: હવે સર નમસ્કાર.
2: નમસ્કાર
1: સર, આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં.
2: ધન્યવાદ
1: સર. જૈસા કે આજ આપ હમારે કાર્યક્રમ સે જુડ રહે હૈ ઓર આજ હમારી કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ ધાન કી ખેતી કે મહત્વ કો લેકર. હમ દેખતે હૈ કે ધાન કી ખેતી કરના હમારે લિયે બહોત ઝ્યાદા મહત્વપૂર્ણ હૈ. એસે મેં સબસે પહેલે બાત આતી હૈ કે હમારે જો કિસાન ભાઈ બહેન હૈ વો ભૂમિ કા ચયન ઓર ઉસકી તૈયારી કૈસે કરે.
2: બિલકુલ, જૈસે અપન કો ધાન કી ખેતી કરની હૈ તો ઇસમે खेत की तैयारी तो करना ही है.
1: बिल्कुल,
2: खेत गर्मी के अंदर अच्छी तरह से उसको हकाई कर देनी है, क्योंकि धान की खेती है अच्छी जल धारण क्षमता वाली चिकनी खेत के अंदर, मतलब चिकनी मिट्टी जो होती है, चिकनी मिट्टी के अंदर ही ये धान की खेती होती है, क्योंकि उसके अंदर जल टिक रहना चाहिए, मतलब जल का भराव क्षमता रहना चाहिए, तब जाके वो धान की खेती होती है.
1: बिल्कुल सर.
2: तो उसके लिए खेत की तैयारी पहले कर देनी चाहिए. खेत की पूर्व तैयारी करने के बाद बारिश का पानी ज्यादा से ज्यादा अपने खेत में रहे, ऐसी व्यवस्था करना बहुत जरूरी है.
1: जी हाँ.
2: और धान की खेती दो प्रकार से होती है.
1: बिल्कुल.
2: एक उसका एक तो नर्सरी करके, नर्सरी करके रोप लगाते हैं, दूसरी सीधी बुवाई करते हैं.
1: बिल्कुल सर.
2: तो दो प्रकार की खेती, धान की खेती दो प्रकार की होती है.
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा. तो यही अब मैं जानना चाहूंगी कि बीज का चुनाव और उपचार कैसे करना है, और साथ ही अगर ये बुवाई दो तरीके की होती है तो दोनों क्या ऐसे तरीके हैं जो हमारे भाई बहनों को ध्यान में होने चाहिए.
2: बिल्कुल, एक तो अपन खेत की तैयारी अपन करते हैं, अच्छी तरह से खेत को तैयार कर दिया.
1: बिल्कुल.
2: अब जैसे अपन को रोपाई करनी है, तो जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन से खेत के अंदर किस टाइप का धान अच्छा होता है.
1: बिल्कुल,
2: वो किसान को खुद को पता है, है ना. ऐसी जगह पर अपन को खेत की नर्सरी करना बहुत जरूरी है. यदि अपन को 25 जून जुलाई के अंदर, मतलब 25 जून में बारिश आती है, या जुलाई के अंदर धान की रोपाई करनी है, तो अभी अपन को उसकी नर्सरी करना बहुत
1: जरूरी है. बिल्कुल.
2: तो जैसे अपन को बीज लिया, अब धान की नर्सरी अपन करेंगे तो जैसे बीज लेते हैं, तो बीज के अंदर कमजोर बीज, अच्छा बीज, सब कुछ बीज होता है.
1: बिल्कुल.
2: तो उस बीज को अपन को बीज उपचार करना बहुत जरूरी है. बीज उपचार करके ही अपन को नर्सरी करें.
1: जी हाँ.
2: तो अच्छी उत्पादन मिलने की क्षमता रहती है. अपन सीधी बुवाई करेंगे तो भी बीज उपचार करना बहुत जरूरी है.
1: जी हाँ.
2: और बीज उपचार एकदम आसान तरीका है धान के अंदर. आसान तरीका इसीलिए बता रहा हूँ कि अपन जो धान अपने को बुवाई करनी है या नर्सरी तैयार करनी है, उसको पानी के अंदर डाल दिया अपन ने, तो जो हल्का बीज होगा वो ऊपर तर के बाहर आ जाएगा.
1: बिल्कुल.
2: इसके बावजूद भी हल्का बीज इसके अंदर रहता है, तो इसके अंदर आलू डाल दो, आलू हमेशा पानी में डूब जाता है.
1: बिल्कुल.
2: लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हिलाया करो, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हिलाया करो, नमक डालते जाओ पानी हिलाया करो, नमक डालते जाओ पानी हिलाया करो, तो थोड़ी देर में अपने आप आलू ऊपर आ जाएंगे. तो आलू जैसे ऊपर आ जाएंगे तो इसके साथ साथ हल्का बीज भी ऊपर आ जाएगा. तो ये स्थिति में जो हल्के बीज है वापस आप निकाल दो, और नीचे जो बैठे हुए बीज है वो निकाल के उसका नर्सरी तैयार कर दीजिए. अब नर्सरी कैसे करनी है सब किसान भाई जानते हैं कि जमीन लेवल से आधा फीट 6 इंच ऊपर मिट्टी का गादी क्यारा तैयार करके इसके अंदर बेड़ बना के आपको नर्सरी
1: तैयार
2: करनी है. इसके बाद जब बारिश अच्छी

0: में का एक पाथरिया भी है।
1: बिल्कुल,
0: जो पाथरिया वेराइटी है वो एकदम पहाड़ी एरिया में सूखे में होता है, जिसको पानी की जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट बारिश आती है और किसान बुआई करता है। तो इस प्रकार का भी धान है। तो अपन को जहाँ जैसे पानी की नमी वाला जो खेत है उसके अंदर यदि सीधी बुआई करते हैं, तो जैसे मैंने बताया ऐसा उपचार करके आप सीधी बुआई अंदर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जितने कम मात्रा में यदि धान की खेती में बीज डालेंगे, इतनी इसकी ग्रोथ ज्यादा होती है, इतनी जड़ उसके अंदर ज्यादा जाती है और अच्छी पैदावार देती है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये किसान भाई को बहुत ध्यान रखना जरूरी है। रही बात अपन खाद की, तो खाद अपन को समय समय पर बहुत डालना बहुत जरूरी है। खेत अपन जो तैयार करते हैं उसके पहले ही अपन को देसी खाद इसके अंदर डाल देना चाहिए, जिसकी वजह से अपन को अच्छी उत्पादन मिलता रहे।
1: बिल्कुल सर।
0: तो अपन जैसे खाद एक एकड़ के अंदर कम से कम 8 से 10 टन अपन को देसी खाद डालना चाहिए, और इसके अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगे या किसी भी प्रकार का खरपतवार नहीं हो, उसके लिए अपन को खरपतवार निकालना भी जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: और साथ साथ में उसके अंदर अपन को जैसे अच्छी पैदावार के लिए आप रेगुलर पानी को भी, जैसे पानी की कमी हो गई, बारिश नहीं आई, तो अपना इरिगेशन का पानी भी अंदर देना बहुत जरूरी है, तब जाके अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। तो धान की खेती में नमी रखना बहुत जरूरी, तब जाके उत्पादन हो सकता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा सर। जैसा कि आपने बताया कि धान की खेती में भूमि की तैयारी कैसे करनी है, खाद का कैसे ध्यान रखना है, साथ ही आपने बताया कि सीधी बुआई धान की कैसे करनी है और रोपाई के माध्यम से हम कैसे करते हैं, तो सर दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा फायदेमंद है हमारे किसान भाई बहनों के लिए?
0: देखो, नर्सरी करके वो जो बुआई करेंगे वो काफी फायदेमंद है।
1: बिल्कुल।
0: इसीलिए कि एक तो इसके अंदर बीज की मात्रा बहुत कम लगती है, दूसरी चीज कि जब वो बुआई करेंगे तो निश्चित मात्रा में करते हैं बुआई, इसीलिए उसकी जो जड़ है वो गहराई में जाती है और अच्छा उत्पादन देती है, और उसका जो दाना है, उसका जो धान है, वो क्वालिटी अच्छी निकलती है और उसकी क्वांटिटी क्वालिटी दोनों अच्छा निकलता है, उत्पादन भी अच्छा आता है और गुणवत्ता भी उसकी अच्छी रहती है।
1: जी जी।
0: तो अपन को इस तरह से जो नर्सरी तैयार करके रुपाई करेंगे तो बहुत अच्छा किसान फायदेमंद रहेंगे।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। यही अब मैं जानना चाहूंगी कि धान की खेती में कीटों का प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण उन्हें कैसे करने की जरूरत है?
0: खरपतवार तो देखो अपन को करना, अंदर हल चलाना जरूरी है, अपन ने लाइन टू लाइन बुआई की है, एक तो वो करेंगे किसान, हाथ से भी खरपतवार अंदर निकाल देना है, और किसी बीमारी लगी तो अपन को जैसे बताया कि निमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, इस प्रकार का प्रयोग करके अपन को इसका छिड़काव करेंगे तो भी वो बीमारी खत्म हो जाती है। तो अपन को इस तरह का प्रयोग, जैविक दवाई का प्रयोग करके अपन को खरपतवार जो बीमारी लगती है उसका प्रयोग करना चाहिए, और खरपतवार अपन को हाथ से निकालेंगे तभी जाके उसका अच्छी लाभ किसान ले सकता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि खरपतवार का नियंत्रण करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि खरपतवार की वजह से बहुत सी बार हमारी फसलों पर कीटों का प्रकोप भी हो जाता है, और साथ ही हम जो पोषण हमारी मिट्टी को, हमारे पेड़ पौधों को देना चाहते हैं, वो खरपतवार सोख लेते हैं। तो ऐसे में हमारे किसान भाई बहनों को खेती करते समय विशेष तौर पर खरपतवार नियंत्रण की बातों पर ध्यान देना है। तो सर, जैसा कि बातें बहुत अच्छी चल रही है, क्या कोई विशेष ऐसी सावधानियां है जो हमारे भाई बहनों को इसमें ध्यान रखने की जरूरत है?
0: बिल्कुल, महत्वपूर्ण बातें धान की खेती में ऐसी है कि अपन को समय समय पर उसको, जैसे समय समय पर खाद देंगे, कोई बीमारी आती है तो बीमारी नष्ट के लिए बराबर है उसका उपचार करेंगे, और बीच में खाद की मात्रा भी यदि अपन ने दे दी, वर्मी कम्पोस्ट दे दिया अपन ने, जीवामृत अंदर दे दिया, और जैसे एक सरल विधि में बताऊं कि जैसे कंडे होते हैं, कंडे के भिगो करके उसका पानी भी इसके अंदर अपन देंगे तो भी अच्छी उत्पादन, अच्छी फ्लावरिंग आने की क्षमता रहती है, उसके अंदर काफी अच्छे हॉर्मोन्स रहते हैं, तो ये भी खाद की एक मात्रा है, उसको भी दे सकते हैं। तो समय समय पर यदि अपन ने धान की खेती की जो ध्यान रखा तो किसान भाई अच्छी तरह से आमदनी बिल्कुल ले सकता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो सर, जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से आपने हमें ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है, आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जागृति बुन सीम के अवड़े, आपने वैसमी पटेल सर जुड़े तक हता ने एने आपने घनी असल तरीका थी कि बताड़ियो है कि धान की खेती बल्ले आपने भूमि हरते तैयार करवी है, बीजनु चयन हरते करवो है, ने एने साथे एने ई भी बताड़ियो कि धान की खेती बे प्रकार नी थाय है, तो कया प्रकार नी खेती आपने बल्ले फायदेमंद है, कई कई वातनु आपने ध्यान राखवु है, ई हंगरी बातें एने अपने

0: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: भाई ने बोलो, आप इकारे विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। हो भी अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
4: हो भी प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
3: होवे आज नाना ना कदम है, ई अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
4: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: दोस्तों अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
3: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
5: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर एक नए विषय के साथ में।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि कशिश, कार्यक्रम सच्चा बचपन में हम बात करते हैं जीवन से जुड़ी छोटी मोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण आदतों को लेकर।
0: जी हाँ,
1: आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि बच्चों को कैसे सिखाएं प्लीज, सॉरी और थैंक यू बोलने की आदत। साथियों, ये तीन शब्द बहुत छोटे होते हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि ये शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं बल्कि एक अच्छे संस्कार, एक अच्छी सोच और एक सुंदर व्यक्तित्व की पहचान भी होते हैं। तो जानेंगे कशिश आज कार्यक्रम के माध्यम से कि थैंक यू, सॉरी और प्लीज का जो महत्व है वो हम हमारे बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: शुरुआत में मनोरंजन करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में, फिर बातें हमारी आगे जारी रहेंगी।
0: जी हाँ अंजलि जी,

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हुए हम बढ़ना चाहेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन में हमारे विषय की ओर। जैसा कि साथियों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चों को सिखाना है हमें प्लीज, सॉरी और थैंक यू बोलने की आदत के बारे में। श्रोता साथियों, जैसा कि गीत से पहले पे बताया था कि ये जो तीन शब्द हैं वो दिखने में काफी छोटे हैं, लेकिन इनका असर बच्चों के जीवन में काफी हद तक बड़ा है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हम देखते हैं अंजलि जी कि बचपन वह समय होता है जब बच्चों का व्यक्तित्व बन रहा होता है। जो आदतें हम उन्हें बचपन में सिखाते हैं साथियों, वही उनके पूरे जीवन की नींव बनती है।
1: जी हाँ,
0: हम देखते हैं कि ये जो तीन शब्द है प्लीज, सॉरी और थैंक यू, ये बच्चों में अलग अलग गुण विकसित करता है। जैसे कि प्लीज जो शब्द है वो सिखाता है विनम्रता, सॉरी जो शब्द है वो सिखाता है गलती मानना, और थैंक यू सिखाता है आभार व्यक्त करना।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर पंक्ति है जो कही गई है कि संस्कार शब्दों से नहीं, शब्दों के पीछे की भावना से बनते हैं।
1: बिल्कुल, यही कशिश अब बात आती है कि बच्चों को प्लीज बोलना कैसे सिखाएं। तो साथियों, जब बच्चा कुछ मांगता है तो वह अक्सर सीधे बोल देता है मुझे ये चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: यहाँ से हमें शुरुआत करनी होती है। इसके लिए हमें करना ये है कि बच्चों को प्यार से समझाना है कि प्लीज जोड़ने से बात और भी प्यारी लगती है।
0: जी हाँ,
1: खुद उदाहरण बने। जब आप बच्चों से कुछ कहें तो प्लीज का प्रयोग करें। उसे सिखाएं कि किसी से मदद मांगते समय विनम्र होना जरूरी होता है।
0: बिल्कुल,
1: उदाहरण भी हम दे सकते हैं, मम्मी पानी दो, मम्मी प्लीज पानी दे दीजिए। साथियों, ये जो सारी चीजें हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि किसी ने क्या खूबी कहा है कि विनम्रता वह चाबी है जो हर चीज का दरवाजा खोल देती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। यही अब बात करते हैं सॉरी बोलने की आदत की। तो देखते हैं अंजलि जी कि आजकल बच्चे गलती करने के बाद भी सॉरी बोलने से बचते हैं, लेकिन ऐसे में माता पिता को उन्हें ये समझाना जरूरी हो जाता है कि गलती मानना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत होती है।
1: बिल्कुल,
0: तो ऐसे में दोस्तों जब बच्चा गलती करे तो उसे डांटने के बजाय आप उसे समझाएं और उसे महसूस कराएं कि सॉरी बोलने से रिश्ते मजबूत होते हैं।
1: जी हाँ,
0: साथ ही अगर आपकी भी गलती अगर हो तो खुद भी अपनी गलती पर बच्चे से सॉरी बोलें श्रोता साथियों, क्योंकि हम देखते हैं अंजलि जी कि सॉरी सिर्फ शब्द नहीं होता बल्कि सच्चाई होती है। दोस्तों देखते हैं कि माफी मांगना झुकना नहीं होता बल्कि रिश्तों को बचाना होता है अंजलि जी। तो ऐसे में सॉरी बोलने की आदत हमारे बच्चों को सिखाना एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। अब बात आती है थैंक यू कहना क्यों जरूरी है। तो साथियों, कृतज्ञता जीवन को सुंदर बनाती है।
0: बिल्कुल,
1: जब बच्चा थैंक यू कहना सीखता है कशिश, तो वह हर छोटी चीज की कद्र करना भी सीखता है। अगर थैंक यू बोलना हम कैसे सिखाएं बच्चों को, तो साथियों जब कोई बच्चे की मदद करे तो उसे थैंक यू बोलने के लिए प्रेरित करें। घर में ऐसा माहौल बनाए जहाँ हर कोई एक दूसरे का ध्यान रखता हो। बच्चे को सिखाएं कि धन्यवाद सिर्फ बड़े काम के लिए नहीं बल्कि छोटी छोटी मदद के लिए भी कहा जाता है।
0: बिल्कुल,
1: श्रोता साथियों, कृतज्ञता वह फूल है जो हर दिल में खुशबू भर देती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बात कर ही रहे हैं कि हम अपने बच्चों को सॉरी, थैंक यू और प्लीज कहना कैसे सिखा सकते हैं, तो ये बातें हम आगे भी करेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में।
1: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जान ही लिया, अब बात करते हैं कि ये तीनों जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम हमारे बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो साथियों, इसके लिए हमें उदाहरण बनना होगा। बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। अगर माता पिता कशिश खुद भी प्लीज, सॉरी और थैंक यू का प्रयोग करें तो बच्चा भी वही सीखेगा।
1: बिल्कुल।
0: इन शब्दों को लेकर सिखाएं नहीं, बल्कि रोज की आदत बना दें। जब बच्चा सही आदतों का इस्तेमाल करे तो उसकी तारीफ करें, इससे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। बच्चों को कहानियों के माध्यम से समझाएं कि अच्छे व्यवहार का क्या महत्व है। हर बच्चा अलग होता है, उसे सीखने में समय लगेगा, इसके लिए हमें धैर्य भी बनाकर रखना है। कह सकते हैं साथियों कि जब बच्चे प्लीज, सॉरी और थैंक यू जैसे शब्द सीखते हैं तो वे एक अच्छे नागरिक बनते हैं।
1: जी हाँ।
0: समाज में शांति, सम्मान और प्यार भी बढ़ता है। छोटे शब्द बड़े बदलाव लाते हैं साथियों।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। अब यही अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्लीज, सॉरी और थैंक यू जैसे छोटे छोटे शब्द जो हैं वो बच्चों के जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि दोस्तों, ये केवल बोलने के लिए शब्द नहीं है, बल्कि एक अच्छे व्यक्तित्व, एक अच्छा संस्कार और मजबूत रिश्तों की पहचान माने जाते हैं। देखते हैं अंजलि जी कि जब बच्चा प्लीज बोलना सीखता है तो उसमें विनम्रता आती है, और जब सॉरी बोलता है तो उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करना सिखाया जाता है। साथ ही थैंक यू शब्द से उसके अंदर कृतज्ञता के भाव आते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बचपन में डाली गई ये आदतें जीवन भर साथ रहती हैं बच्चों के। इसलिए माता पिता और शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को इन शब्दों का सही अर्थ और सही उपयोग करना सिखाएं।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि दोस्तों, ये केवल समझाने से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से सिखाया जा सकता है। जैसा कि हमने हमारे साथियों को पहले भी बताया अंजलि जी, कि बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, आज के समय में जहां लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और व्यवहार में कठोरता बढ़ती जा रही है, ऐसे में इन छोटे छोटे शब्दों की अहमियत और भी बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल।
0: ये शब्द रिश्तों में मिठास खोलते हैं, लोगों के बीच सम्मान बढ़ाते हैं और समाज को बेहतर बनाते हैं। यदि हर बच्चा बचपन से ही इन आदतों को अपनी आदत बना ले तो आने वाला समाज अधिक सभ्य, संवेदनशील और सकारात्मक होगा।
1: बिल्कुल।
0: साथियों, एक ऐसा समाज जहां लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, सम्मान देंगे और प्रेम से रहेंगे।
1: बिल्कुल।
0: संस्कारों की शुरुआत छोटी आदतों से होती है, और वही आदतें कशिश आगे चलकर महान व्यक्तित्व का निर्माण करती है। जब शब्द मीठे होते हैं तो रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाते हैं। श्रोता साथियों
1: जी, बिल्कुल।
0: आइए हम सभी को मिलकर बच्चों को सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि अच्छे व्यवहार और अच्छे शब्दों की ताकत भी सिखानी है, ताकि वे एक अच्छे इंसान बनकर समाज में नई दिशा दे सके।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो ऐसे में कार्यक्रम के माध्यम ये कहा जा सकता है कि जब एक बच्चा प्लीज कहना सीखता है साथियों, तो वह दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना भी समझता है, और जब वह सॉरी कहता है तो वह ये सीखता है कि गलती करना गलत नहीं है बल्कि उसे स्वीकार करना सही बात है। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि वही जब बच्चा थैंक यू बोलता है तो उसे जीवन में मिलने वाली हर छोटी बड़ी मदद की कद्र करना वह सीख जाता है।
0: जी जी।
1: इस प्रकार से अंजलि जी, ये तीनों शब्द मिलकर बच्चे को एक अच्छा इंसान बनने के लिए दिशा में आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हम देखें दोस्तों, तो ये भी सच है कि आज के व्यस्त और प्रतिस्पर्धात्मक जीवन में लोग अक्सर शिष्टाचार को नजरअंदाज कर देते हैं।
0: जी जी।
1: ऐसे समय में यदि बच्चों को शुरू से ही हम इन शब्दों की आदत डलवा दें, तो वे न केवल अपने परिवार में बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, उनके व्यवहार में मिठास होगी इससे, और उनके रिश्तों में मजबूती आएगी। साथ ही वे हर परिस्थिति में संतुलित, समझदार और कह सकते हैं कि सभ्य बन पाएंगे।
0: बिल्कुल। तो साथियों, अच्छे शब्दों की ताकत तलवार से भी ज्यादा होती है, क्योंकि ये दिलों को जीत लेती है। जहाँ व्यवहार में मिठास होती है वहाँ रिश्तों में हमेशा उजाला बना रहता है।
1: जी हाँ।
0: तो कशिश, इस तरीके से कार्यक्रम में हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि प्लीज, सॉरी और थैंक यू जैसे छोटे शब्द बच्चों के जीवन में कितने बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बने तो हमें सिर्फ उसे पढ़ाना नहीं है बल्कि अच्छे संस्कार भी सिखाने हैं।
1: जी हाँ।
0: तो बातें कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी हो गई है, और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल अंजलि जी।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
2: नमस्कार।

0: भाई बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
2: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: भाई ने बोनो, आप एक कार्य विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हां, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है। जीनी हवा में आपड़े हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे, अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं, बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा, ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे, प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे, आज नाना कदम है, ये आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारी बातें रहने वाली है आर्थिक अनुशासन का क्या महत्व है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि श्रोता साथियों, हम मनुष्य के जीवन में धन का बहुत महत्व होता है। धन केवल हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य की सुरक्षा, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का भी आधार बनता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन धन तभी लाभदायक सिद्ध होता है जब उसके उपयोग में अनुशासन हो। जिस प्रकार बिना दिशा के बहती नदी विनाश का कारण बनती है, उसी प्रकार बिना अनुशासन के खर्च किया गया धन जीवन में परेशानियां पैदा करता है।
0: बिल्कुल,
1: आज के समय में हम देखते हैं कि बढ़ती महंगाई, दिखावे की प्रवृत्ति और अनियंत्रित खर्चों के कारण आर्थिक अनुशासन की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करने वाले हैं। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना साथियों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत सुनवा दें हम।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागर रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं आर्थिक अनुशासन को लेकर। जैसा कि जागृति जी गीत से पहले भी हमने हमारे साथियों को बताया था कि आज के जो युवा हैं वो सपनों से भरे हुए हैं। वह अच्छी शिक्षा चाहते हैं, बेहतर करियर बनाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, नई नई चीजें खरीदना और सीखना चाहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही जीवन को खुलकर जीना चाहते हैं। लेकिन श्रोता साथियों, इन सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए केवल मेहनत ही नहीं बल्कि आर्थिक समझ और अनुशासन भी बहुत जरूरी होता है। हम अक्सर ये देखते हैं कि कई युवा जागृति जी कम उम्र में ही पैसे कमाने लगते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन सही योजना और अनुशासन के अभाव में वे आर्थिक परेशानियों में कई कबार फंस जाते हैं। कुछ लोग दिखावे के लिए अनावश्यक खर्च करते हैं साथियों, और कुछ बिना सोचे समझे ऑनलाइन शॉपिंग करने लगते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो कुछ ऐसे भी हैं जो क्रेडिट कार्ड और कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। श्रोता साथियों, धीरे धीरे ये जो आदत है वो हमारे अंदर तनाव, चिंता और भविष्य की असुरक्षा का कारण बन जाती है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि कहा गया है कि धन वही सफल कहलाता है जो सोच समझकर खर्च हो जाए। श्रोता साथियों, आर्थिक अनुशासन का अर्थ है अपनी आय और खर्चों को संतुलित ढंग से संचालित करना।
0: जी हाँ।
1: इसका मतलब केवल पैसे बचाना नहीं होता बल्कि धन का सही योजना के साथ उपयोग करना भी है। जब व्यक्ति अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचत, कुछ आवश्यकता और कुछ भविष्य की सुरक्षा के लिए निर्धारित करता है, तभी वो आर्थिक रूप से मजबूत बन पाता है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोताओं, आपसे कहना चाहेंगे कि आर्थिक अनुशासन हमें ये सिखाता है कि इच्छाओं और आवश्यकताओं में अंतर समझना कितना जरूरी है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि जरूरतों को पहचानना फिजूल खर्चों से बच जाना है। यानी कि आज की दुनिया में लोग अक्सर दूसरों को देखकर खर्च करने लगते हैं। महंगे मोबाइल, जैसा कि आपने कहा था, फैशन, गाड़ियाँ और दिखावटी जीवन शैली कई लोगों को कर्ज की ओर धकेल देती है। श्रोता साथियों,
0: बिल्कुल।
1: और कशिश, सोशल मीडिया ने भी इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। लोग अपनी वास्तविक आय से अधिक खर्च करने लगते हैं ताकि समाज में अपनी झूठी छवि बना सके, और इसका परिणाम ये आता है कि तनाव, चिंता और आर्थिक संकट बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल।
1: आर्थिक अनुशासन व्यक्ति को इस दिखावे की दौड़ से दूर रखता है और सादगीपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि युवाओं के जीवन में तो आर्थिक अनुशासन बहुत जरूरी है, क्योंकि युवावस्था जीवन का वह समय होता है जब युवा अपने भविष्य की नींव रख रहे होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: साथियों, इसी उम्र में हमारी आदतें जो हैं वो आगे चलकर जीवन की दिशा तय करती है। यदि ऐसे में युवा शुरुआत से ही आर्थिक रूप से अनुशासित बन जाए तो वे भविष्य की कई परेशानियों से बच सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जैसे कि आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलती है। दोस्तों, आर्थिक अनुशासन युवाओं को आत्मनिर्भर बनाता है। जब व्यक्ति जागृति जी अपने खर्चों को नियंत्रित करना सीख जाता है तब वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता।
1: जी हाँ।
0: उसे छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वह अपने पैसों की कीमत समझने लगता है, साथ ही जिम्मेदारी के साथ जीवन जीता है।
1: बिल्कुल कशिश।
0: वहीं हम देखते हैं कि ये भविष्य को भी सुरक्षित बनाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि भविष्य में अचानक आने वाली परिस्थितियों का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बीमारी हो, नौकरी का संकट हो या पारिवारिक समस्या, दोस्तों किसी बड़े खर्चे की जरूरत भी हमें पड़ सकती है।
1: बिल्कुल।
0: हम कह सकते हैं कि ये जो समस्याएं हैं वो कभी भी हमारे सामने आ सकती है।
1: जी हाँ।
0: ऐसे में यदि व्यक्ति आर्थिक रूप से अनुशासित है और उसने बचत की आदत को बनाए रखा है तो वह कठिन समय में अपने परिवार का और स्वयं का ध्यान रख सकता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि आर्थिक अनुशासन परिवार की खुशहाली का आधार भी है। जिस परिवार में आय और खर्च का संतुलन बना रहता है वहाँ तनाव कम होता है।
0: बिल्कुल।
1: ऐसे परिवार कठिन परिस्थितियों का सामना आसानी से कर लेते हैं। इसके विपरीत हम देखते हैं जहाँ अनावश्यक खर्च अधिक होते हैं वहाँ अक्सर कलह और चिंता का वातावरण बना रहता है।
0: बिल्कुल।
1: आर्थिक रूप से मजबूत परिवार ही बच्चों को अच्छी शिक्षा और बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। तो जैसा कि कशिश, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हम बात कर रहे हैं आर्थिक अनुशासन के महत्व को लेकर, ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि हमारी बातें चल रही थी गीत से पहले कि आर्थिक अनुशासन का क्या महत्व है।
1: बिल्कुल।
0: तो साथियों, आपको यहीं बताना चाहेंगे कि आर्थिक अनुशासन व्यक्ति को आत्मसम्मान भी देता है। जो व्यक्ति अपने खर्चों को नियंत्रित रखना जानता है कशिश, उसे दूसरों के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
1: बिल्कुल।
0: कर्ज का बोझ इंसान की स्वतंत्रता छीन लेता है, इसलिए समझदारी इसी में है श्रोताओं कि व्यक्ति अपनी आय के अनुसार जीवन जीना सीखे। छोटी आय में संतोष पूर्वक जीना बड़ी आय में कर्ज लेकर जीने से कहीं बेहतर है।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं कि पैसों की कमी अक्सर मानसिक तनाव का कारण बनती है। कई युवा जागृति जी कर्ज और खर्च के साथ साथ आर्थिक दबाव के कारण चिंता में रहने लगते हैं।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन दोस्तों, जब आय और खर्च संतुलित रहते हैं और बचत होती है और साथ ही हम योजना बनाकर खर्च करते हैं, तभी मानसिक शांति बनी रहती है। हम देखते हैं कि हर युवा के कुछ सपने होते हैं, जैसे कि खुद का घर, उच्च शिक्षा प्राप्त करना, अच्छा व्यवसाय, यात्रा, माता पिता की मदद या फिर बेहतर जीवन।
0: बिल्कुल।
1: दोस्तों, ये सपने केवल इच्छा करने से पूरे नहीं होने वाले। इनके लिए आर्थिक तैयारी जरूरी होती है। ऐसे में आर्थिक अनुशासन व्यक्ति को धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। जागृति जी,
0: बिल्कुल कशिश,
1: हम देख सकते हैं कि अनियंत्रित खर्च कई बार युवाओं को गलत रास्तों की ओर ले जाता है। जैसे कि दिखावे की होड़ हो गया, जरूरत से ज्यादा खर्च करना, दूसरों को प्रभावित करने की चाह। दोस्तों, ये सभी जो चीजें हैं वो आर्थिक असंतुलन पैदा कर सकती है।
0: जी हाँ।
1: ऐसे में जो आर्थिक अनुशासन है वो व्यक्ति को सादगी के साथ साथ जिम्मेदारी और समझदारी भी सिखाता है। जागृति जी,
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में भी आर्थिक अनुशासन का महत्व कम नहीं है। किसान यदि अपनी आय का सही प्रबंध करे तो वे कर्ज के बोझ से भी बच सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: कई बार हम देखते हैं कि लोग सामाजिक दिखावे, शादी ब्याह और अनावश्यक खर्चों में इतना धन खर्च कर देते हैं कि बाद में आर्थिक संकट में फंस जाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: सादगी और समझदारी से किया गया खर्च जीवन को सुरक्षित बनाता है और खुशहाल भी बनाता है। कहा गया है कि सादगी में ही आर्थिक मजबूती का राज छिपा हुआ है।
1: जी जी।
0: श्रोता साथियों, आज डिजिटल युग में ऑनलाइन खरीदारी और आसान ऋण सुविधाओं ने लोगों को अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित किया है। जैसे कि अभी खरीदो बाद में भुगतान करो, ये जो योजनाएं होती है वो कई बार युवाओं को कर्ज में डाल देती है। इसीलिए कशिश, हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि यह आवश्यक है कि व्यक्ति हर खर्च से पहले ये सोचे

0: कि वो वास्तव में आवश्यक है या केवल क्षणिक आकर्षण है।
1: बिल्कुल,
0: आर्थिक अनुशासन हमें धैर्य और विवेक का पाठ पढ़ाता है श्रोता साथियों, इसलिए हर चमकती चीज जरूरत नहीं हो सकती है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। अब दोस्तों प्रश्न ये है कि हम आर्थिक अनुशासन को विकसित कैसे करें।
0: बिल्कुल,
1: तो आपसे कहना चाहेंगे कि आपको शुरुआत बजट बनाने से करनी होगी साथियों। जैसे कि जागृति जी, हर महीने की आय और खर्च का हिसाब हमारे युवा साथियों को रखना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: एक साधारण बजट बनाए साथियों, जिसमें जरूरी खर्च हो, बचत हो और मनोरंजन के लिए अलग अलग राशि तय हो। बजट हमें ये समझने में मदद करेगा जागृति जी कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। साथ ही जरूरत और इच्छा में अंतर समझना भी जरूरी है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि हर चमकती चीज जरूरी नहीं होती है।
0: बिल्कुल,
1: जरूरत वही है श्रोता साथियों जिसके बिना काम नहीं चल सकता।
0: बिल्कुल,
1: जबकि इच्छा वह है जो केवल मन को खुश करने के लिए होती है। यदि जागृति जी युवा इस अंतर को समझ लेंगे तो अनावश्यक खर्च कम हो सकता है।
0: बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे श्रोताओं कि आर्थिक अनुशासन केवल पैसों तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के प्रति जिम्मेदार सोच को भी दर्शाती है कशिश।
1: बिल्कुल,
0: जो व्यक्ति समय, ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग करना जानता है वही जीवन में सफलता प्राप्त करता है।
1: जी जी,
0: आर्थिक रूप से अनुशासित व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है, शांत होता है और दूरदर्शी होता है। वो भविष्य की चिंता से मुक्त होकर अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। इसलिए श्रोताओं आपसे कहना चाहेंगे कि आर्थिक अनुशासन आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है।
1: बिल्कुल,
0: यह केवल धन बचाने की कला नहीं है बल्कि सुरक्षित, सम्मानपूर्ण और संतुलित जीवन जीने का आधार है।
1: जी हाँ,
0: प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय और खर्चों का सही प्रबंधन करना सीख ले तो न केवल उसका जीवन सुखमय होगा बल्कि समाज और राष्ट्र भी प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगा।
1: बिल्कुल,
0: हमें आज से ही ये संकल्प लेना होगा श्रोता साथियों कि हम फिजूल खर्चों को छोड़कर बचत, निवेश और जिम्मेदारी पूर्ण आर्थिक व्यवहार को अपनाएंगे, यही समृद्धि का मार्ग है।
1: जी
0: इसमें
1: हाँ,
0: आपसे कहना चाहेंगे साथियों कि आर्थिक अनुशासन को जीवन में अपनाना है और सुखी और सुरक्षित भविष्य हमें हमारा बनाना है।
1: बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि पैसा जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन के लिए आर्थिक स्थिरता जरूरी है। आज यदि आप श्रोता साथियों छोटी छोटी आर्थिक आदतों पर ध्यान देंगे तो भविष्य में आपको बड़े लाभ मिलने लगेंगे। ऐसे में याद रखिए कि फिजूल खर्ची कुछ समय की खुशी जरूर देगी, लेकिन आर्थिक अनुशासन पूरी जिंदगी की सुरक्षा देगी।
0: बिल्कुल,
1: आज के इस कार्यक्रम में दोस्तों जैसा कि हमने जाना कि आर्थिक अनुशासन केवल पैसों को बचाने का विषय नहीं है बल्कि जीवन को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने का भी माध्यम है। हम कह सकते हैं कि ये हमारी युवा साथियों को आत्मनिर्भर बनाएगा जागृति जी, उनके भविष्य को सुरक्षित रखेगा, तनाव कम करेगा और सपनों को पूरा करने की शक्ति भी उन्हें देगा।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि आज की दुनिया में जहां दिखावा और उपभोग की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है वहां आर्थिक अनुशासन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
0: जी हाँ,
1: इसलिए दोस्तों याद रखिए धन कमाना महत्वपूर्ण है लेकिन धन को सही तरीके से संभालना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की और अब देख पा रहे हैं कि समय उचला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: जी हाँ,
0: विदा हम जरूर लेंगे पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद है कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से आर्थिक अनुशासन के महत्व को लेकर, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से हमारी बातचीत रहने वाली है पर्यटन और तीर्थ यात्रा की भीड़ से करा रहे हैं पहाड़। श्रोताओं, पहाड़ जिन्हें हम प्रकृति का मुकुट कहते हैं, जहाँ की हवा में ताजगी होती है, नदियों में जीवन होता है और जंगलों में सुकून। लेकिन अंजलि, आज वही पहाड़ मानो हमसे कह रहे हैं, हमें देखने आओ लेकिन हमें तोड़ने मत आओ।
0: बिल्कुल। तो जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें बनी रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे साथियों को सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली हैं पर्यटन और तीर्थ यात्रा की भीड़ से करा रहे हैं पहाड़।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि पहाड़ सिर्फ चट्टानें नहीं है, वे नदियों के जन्मदाता है।
0: बिल्कुल,
1: वे जंगलों के रक्षक हैं और वे लाखों लोगों की आजीविका का आधार भी हैं। हम देखते हैं कि मैदानों में बैठकर जिस पानी को हम पीते हैं उसका बड़ा हिस्सा पहाड़ों से ही आता है।
0: बिल्कुल,
1: जिस स्वच्छ हवा की हम बात करते हैं उसकी रक्षा में पहाड़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन जागृति जी, जब लाखों लोग एक साथ सीमित स्थानों पर पहुँचते हैं तब पहाड़ों की क्षमता पर भारी दबाव पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि हम जानते हैं कि लोग घूमने और भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन सोचिए श्रोता साथियों, अगर एक छोटे से गांव में 10,000 लोगों की व्यवस्था हो और अचानक 1,00,000 लोग पहुंच जाए तो क्या होगा? सड़कें जाम हो जाएंगी, कचरा बढ़ जाएगा, पानी की कमी होगी और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ेगा। और यही स्थिति जागृति जी कई पहाड़ी क्षेत्रों की होती है।
0: बिल्कुल अंजलि, पर्यटन और तीर्थ यात्रा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: बिल्कुल,
0: लोग प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए पहाड़ों की ओर आते हैं। श्रद्धालु अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब ये यात्रा प्रकृति की सीमाओं को भूलकर केवल भीड़ और उपभोग का माध्यम बन जाती है। आज हम देखते हैं कि कई प्रसिद्ध पहाड़ी क्षेत्रों में एक साथ इतनी अधिक संख्या में लोग पहुंच रहे हैं कि वहां की प्राकृतिक व्यवस्था भी चरमरा रही है।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि पहाड़ों का अपना एक प्राकृतिक संतुलन होता है।
0: बिल्कुल,
1: वहां की मिट्टी नाजुक होती है, ढलानें संवेदनशील होती है, जंगलों का महत्व बहुत अधिक होता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन जागृति जी, जब बड़ी संख्या में होटल, पार्किंग, सड़कें और निर्माण कार्य होने लगते हैं तो ये संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: कई स्थानों पर पहाड़ काटे जा रहे हैं और पेड़ हटाए जा रहे हैं। नतीजा ये होता है श्रोता साथियों कि भूस्खलन, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही है। हम देखते हैं जागृति जी कि पहले तीर्थ यात्रा का अर्थ होता था सादगी, अनुशासन और

0: के प्रति सम्मान और आत्मिक शांति। आज कई जगह तीर्थ यात्रा भीड़ और प्रदर्शन का रूप लेती जा रही है।
1: बिल्कुल,
0: जहाँ श्रद्धा होनी चाहिए वहाँ जल्दबाजी दिखाई देती है, जहाँ संयम होना चाहिए वहाँ अव्यवस्था दिखाई देती है। भगवान के दर्शन करने जाते समय हम भगवान की बनाई प्रकृति को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। क्या श्रोता साथियों ये सही है? हमें सोचने की जरूरत है कि ये सारी चीजें हमारे लिए सही नहीं है।
1: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि तीर्थ यात्रा के क्षेत्र में ये भी स्थिति देखने को मिल रही है कि पहले तीर्थ यात्रा का अर्थ था संयम, सादगी और प्रकृति के प्रति सम्मान। लोग कठिन रास्तों पर चलकर यात्रा करते थे और यात्रा को आत्मिक साधना का माध्यम मानते थे।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कई स्थानों पर तीर्थ यात्रा भीड़ और सुविधाओं की होड़ में बदलती जा रही है। श्रद्धाओं की बढ़ती संख्या के कारण पहाड़ों पर भारी दबाव पड़ रहे हैं। आस्था का सम्मान आवश्यक है श्रोताओं, लेकिन आस्था के नाम पर प्रकृति को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं कहा जा सकता। पर्यटन का एक सकारात्मक पक्ष ये भी है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार जरूर मिलता है।
0: बिल्कुल,
1: छोटे व्यवसायों को बढ़ावा मिलता है और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। लेकिन यदि पर्यटन अनियंत्रित हो जाएंगे तो उसके लाभ भी कम और नुकसान ज्यादा होने लगते हैं।
0: जी जी,
1: इसलिए आवश्यकता इस बात की श्रोता साथियों कि पर्यटन विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाया जाए। एक ऐसा विकास ही वास्तव में टिकाऊ और भविष्य के लिए उपयोगी होगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, जैसा कि हमने पहले जाना था कि भगवान के दर्शन करने जाते समय हम भगवान की बनाई प्रकृति को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि इसका असर स्थानीय लोगों पर भी पड़ता है। हम जानते हैं कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, यह सकारात्मक पक्ष है। लेकिन दूसरी तरफ जागृति जी, पानी की कमी, कचरे का बढ़ना, महंगाई और पर्यावरणीय समस्याएं भी बढ़ती हैं। जब पर्यटन संतुलित नहीं होता है तब लाभ से अधिक नुकसान होने लगता है।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे जागृति जी कार्यक्रम के माध्यम से कि आज कई प्रसिद्ध पर्यटन और तीर्थ स्थलों पर प्लास्टिक की बोतलें, खाने के पैकेट और अन्य कचरा बड़ी समस्या बन चुके हैं। सोचिए दोस्तों कि जिस स्थान पर लोग शांति और सुंदरता देखने जाते हैं वही कूड़े के ढेर दिखाई दे तो कैसा लगेगा। कचरा केवल सुंदरता नहीं बिगाड़ता, यह मिट्टी, जल और वन्य जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है।
1: बिल्कुल,
0: कई जानवर प्लास्टिक खाकर बीमार पड़ जाते हैं और नदियां दूषित हो जाती हैं।
1: जी हाँ अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है, हम जान रहे हैं पर्यटन और तीर्थ यात्रा की भीड़ से करा रहे हैं पहाड़ को लेकर, तो बातें ऐसे ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, इसी के साथ जागृति जी, अब हम बात करें वाहनों की बढ़ती संख्या पर। तो हम देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
1: बिल्कुल,
0: लंबे ट्रैफिक जाम अब आम बात हो गए हैं। घंटों तक खड़े वाहन प्रदूषण बढ़ाते हैं, शोर बढ़ाते हैं और पहाड़ों की शांति प्रभावित करते हैं। जिस सुकून की तलाश में लोग पहाड़ों पर आते हैं, उसे सुकून को वे अनजाने में खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब जागृति जी ये नहीं है कि लोग आनंद करना बंद कर दें। इसका समाधान ये है कि हमें जिम्मेदार यात्रा करनी चाहिए।
1: जी हाँ अंजलि, इसी के साथ हम हमारे श्रोता साथियों को ये कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि श्रोताओं, आज समय की मांग है कि हम जिम्मेदार पर्यटन की अवधारणा को अपनाएं। जिम्मेदार पर्यटन का अर्थ है कि हम किसी भी स्थान की यात्रा करते समय उसके पर्यावरण, संस्कृति और संसाधनों का सम्मान करें। हमें कचरा नहीं फैलाना है, प्लास्टिक का उपयोग कम करना है, जल और ऊर्जा की बचत करनी है, स्थानीय परंपराओं का सम्मान करना है।
0: बिल्कुल,
1: एक जिम्मेदार पर्यटक केवल दर्शक नहीं होता बल्कि प्रकृति का संरक्षक भी होता है। इसमें युवाओं की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है अंजलि। युवा समाज को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। अगर युवा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होंगे तो वे दूसरों को भी प्रेरित कर सकेंगे। सोशल मीडिया पर केवल सुंदर तस्वीरें साझा करने के बजाय प्रकृति संरक्षण का संदेश देना भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: आज का युवा यदि प्रकृति का मित्र बन जाए अंजलि, तो कल का भारत अधिक सुरक्षित और सुंदर बन सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि उन्हें याद रखना है कि हम पर्यटन नहीं प्रकृति के मेहमान है और अच्छे मेहमान कभी भी घर को नुकसान नहीं पहुंचाते।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम यात्रा के दौरान किस तरह वहाँ की जगहों को साफ रखें। इसी के साथ सरकार, प्रशासन और समाज को भी मिलकर काम करना होगा। यात्रियों की संख्या का वैज्ञानिक प्रबंधन करना होगा, मजबूत लेकिन पर्यावरण अनुकूल ढांचा विकसित करना होगा, कचरा प्रबंधन की जागृति जी बेहतर व्यवस्था बनानी होगी, पर्यावरणीय नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। युवा केवल दर्शक नहीं है, वे परिवर्तन के वाहक भी है। यदि युवा जागरूक होंगे तो समाज जागरूक होगा, और अगर युवा जिम्मेदार पर्यटन को अपनाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी इसी को अपना पाएंगी।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि आज का जो विषय है केवल पहाड़ों का नहीं है बल्कि हमारे भविष्य का भी विषय है। श्रोताओं, सवाल ये नहीं है कि हर साल कितने लोग पहाड़ों पर घूमने या तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: असली सवाल तो ये है कि हम अपने पीछे क्या छोड़कर आ रहे हैं, प्रकृति के प्रति सम्मान या प्रदूषण का बोझ। याद रखिए, पहाड़ कभी शिकायत नहीं करते, वे चुपचाप हमें पानी देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं अंजलि, हरियाली देते हैं और जीवन देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जब नदियां मेली होने लगे, जब जंगल कम होने लगे, जब भूसंकलन और बाढ़ जैसी घटनाएं बढ़ने लगेगी, तब समझ लेना चाहिए कि प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है।
0: बिल्कुल,
1: हमें ये नहीं भूलना होगा श्रोताओं कि पहाड़ केवल आज की पीढ़ी के लिए नहीं बने, इन पर उतना ही अधिकार हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों का भी है। यदि हम आज स्वार्थ में आकर पहाड़ों को नुकसान पहुंचाएंगे तो कल हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि आखिर हमने उनके हिस्से की प्रकृति क्यों छीन ली।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज हमें सोशल मीडिया पर केवल सुंदर तस्वीरें साझा करना ही पर्याप्त नहीं है, जरूरी है कि हम प्रकृति संरक्षण का संदेश फैलाएं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, प्रकृति बहुत सहनशील है, वो हमें पानी देती है, हवा देती है, जंगल देती है, जीवन देती है, लेकिन उसका धैर्य असीम नहीं है। जब हम उसकी सीमाओं को बार बार चुनौती देते हैं तो वो हमें चेतावनी देती है, कभी भूस्खलन के रूप में तो कभी बाढ़ के रूप में तो कभी सूखे के रूप में।
1: बिल्कुल,
0: इन संकेतों को समझना होगा हमें। पहाड़ हमें बुलाते हैं, उनकी सुंदरता हमें आकर्षित करती है, उनकी नदियां हमें जीवन देती है जागृति जी, उनके जंगल हमें सांस देते हैं, लेकिन आज पहाड़ हमसे एक विनती कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आओ हमारा आनंद लो, आओ हमारी गोदी में सुकून खोजो, आओ अपनी आस्था व्यक्त करो, लेकिन हमें घायल मत करो।
1: बिल्कुल अंजलि, सच्चा यात्री वही है जो किसी स्थान से केवल यादें लेकर लौटे और अपने पीछे केवल अच्छे पद चिन्ह छोड़कर आए।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, सच्चा श्रद्धालु वही है जो मंदिर में भगवान के दर्शन करने के साथ भगवान की बनाई प्रकृति का भी सम्मान करे, क्योंकि प्रकृति की रक्षा करना भी एक प्रकार की पूजा है और पर्यावरण की सेवा करना भी एक प्रकार की तीर्थ यात्रा है। आज आवश्यकता इस बात की श्रोताओं कि हम अपनी सोच बदले, पर्यटन को केवल मनोरंजन न समझे और तीर्थ यात्रा को केवल यात्रा न माने।
0: बिल्कुल,
1: इन्हें प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता से जुड़े। जब भी पहाड़ों पर जाएं, ये संकल्प लेकर जाएं कि वहां की सुंदरता को बढ़ाएंगे, घटाएंगे नहीं। हम स्वच्छता फैलाएंगे, गंदगी नहीं, हम संरक्षण करेंगे, विनाश नहीं। श्रोताओं, इतिहास गवाह है कि जब जब युवाओं ने कोई संकल्प लिया है तब तब समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन भी आया है।
0: बिल्कुल,
1: आज का युवा प्रकृति संरक्षण को अपना मिशन बना ले अंजलि, तो आने वाले वर्षों में पहाड़ फिर से मुस्कुराने लगेंगे, नदियां फिर से निर्मल बहेंगी और जंगल फिर से जीवन से भर उठेंगे।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए हम सब मिलकर ऐसा भारत बनाने का संकल्प ले जहां विकास भी हो, प्रकृति भी सुरक्षित रहे, जहां तीर्थ यात्रा भी हो और पर्यावरण का सम्मान भी, जहाँ पर्यटन भी हो और पहाड़ों की आत्मा भी जीवित रहे।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि पहाड़ बचेंगे तो नदियाँ बचेंगी, नदियाँ बचेंगी तो खेत बचेंगे, खेत बचेंगे तो जीवन बचेगा और जब जीवन बचेगा तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ श्रोता साथियों याद रखिए कि पर्यटन का उद्देश्य केवल यात्रा नहीं प्रकृति से जुड़ना भी है।
1: बिल्कुल,
0: अगर आज हमने पहाड़ों की रक्षा नहीं की तो कल आने वाली पीढ़ियां केवल तस्वीरों में ही उनकी सुंदरता देखेगी।
1: जी हाँ, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें कर चुके हैं और अब समय का मान रखते हुए आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल,
2: छुप

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की जो भी बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: भाई ने बोलो घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है मानी दुआ पिता ने उम्मीद मुसोरनी मुस्कान होवे इटली गाड़ी धीरे चलावो हेलमेट पहरो सीट बेल्ट लगाड़ो एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा सड़क सुरक्षा अपनावो किनकी घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
1: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव-गांव आगे बढ़ेगा
1: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर हिंडो स्कूल जा अपड़े अपड़ा भी अपना पूरा करो
0: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है
1: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे स्तुतिश अगाड़ी बढ़ेगा
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

सेहत नो राज हू है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात की शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर घर हर रसोई और हर परिवार से जुड़ा हुआ है। हमारा आज का विषय है रसोई में मौजूद हल्दी अदरक और लहसुन को लेकर।
2: बिल्कुल जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि भारतीय रसोई केवल भोजन बनाने का स्थान नहीं है बल्कि ये प्राकृतिक औषधियों का एक भंडार भी है साथियों।
0: जी हाँ,
2: अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घरों में उपयोग होने वाले जो अनेक मसाले हैं और जो अनेक खाद्य सामग्रियां हैं वो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन कई बार इन सभी चीजों की हमें जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण श्रोता साथियों हम इसके लाभों से परिचित नहीं हो पाते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, जानेंगे साथियों कि ये जो औषधियां हैं हल्दी अदरक और लहसुन ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे फायदेमंद है और इनके अंदर ऐसे कौन से गुण हैं जो हमारे सेहत को बेहतर बनाते हैं।
0: बिल्कुल
2: बिल्कुल, तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि कशिश और मनीषा हमने श्रोता साथियों को गीत से पहले विषय से रूबरू करा दिया था कि आज हमारी बातचीत रहने वाली है रसोई में मौजूद औषधियां हल्दी अदरक और लहसुन को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: अक्सर हम सोचते हैं श्रोता साथियों कि स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए केवल महंगी दवाइयां और बड़े अस्पतालों की आवश्यकता होती है, लेकिन सच ये है कि हमारे घर की रसोई में ही कई ऐसी चीजें मौजूद हैं जो वर्षों से हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करती आ रही है।
1: जी बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हमारी दादा दादी नाना नानी इन चीजों का महत्व अच्छी तरह से जानते हैं। जब सर्दी होती थी, खांसी होती थी, गला खराब होता था या शरीर में किसी भी प्रकार से कोई कमजोरी होती थी, तब सबसे पहले रसोई में रखी हल्दी अदरक और लहसुन का उपयोग किया जाता था। आज के कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि रसोई और स्वास्थ्य का पुराना रिश्ता क्या था और अभी के समय में उसका महत्व और ज्यादा क्यों बढ़ गया है।
1: जी हाँ दिलीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब यही अगर भारतीय रसोई

0: स्वास्थ्य के पुराने रिश्ते को लेकर अगर हम बात करें तो जानते हैं साथियों कि भारतीय संस्कृति में भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं माना जाता है।
1: जी जी
0: साथियों, हमारे यहाँ भोजन को स्वास्थ्य और जीवन का आधार कहा गया है।
1: बिल्कुल।
0: और इसी कारण से भारतीय रसोई में उपयोग होने वाले मसालों और खाद्य पदार्थों का चयन केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर भी किया जाता है।
1: जी हाँ,
0: पहले के समय में गाँव में अस्पताल और डॉक्टर आसन इससे उपलब्ध नहीं हो पाते थे अंजलि जी। ऐसे में लोग अपने अनुभव और पारंपरिक ज्ञान के आधार पर ही घरेलू उपायों का सहारा लेते थे। साथियों, हल्दी, अदरक और लहसुन ऐसे ही घरेलू उपचारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। अंजलि जी, आज भले ही चिकित्सा सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन इन प्राकृतिक चीजों का महत्व कभी कम नहीं हुआ। बल्कि हम देखते हैं कि लोग फिर से प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रहे हैं।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर हम हल्दी की बात करें तो हम देखते हैं कि भारतीय रसोई की सबसे लोकप्रिय सामग्री का नाम लिया जाए तो वो निश्चित रूप से हल्दी है। लगभग हर सब्जी, दाल और कई व्यंजनों में इसका उपयोग किया जाता है।
0: जी
1: श्रोता साथियों, हल्दी का रंग सुनहरा होता है और यही सुनहरा रंग इसे विशेष पहचान देता है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके स्वास्थ्य लाभों में छिपी होती है।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि भारत में हल्दी का उपयोग केवल खाने तक सीमित नहीं है, धार्मिक कार्यों, शुभ अवसरों और विवाह समारोह में भी हल्दी का विशेष महत्व है। शादी से पहले होने वाली हल्दी की रस्म हमारे समाज की एक महत्वपूर्ण परंपरा भी रही है अंजलि जी।
2: बिल्कुल मनीषा, अगर यही बात करें सर्दी जुखाम में हल्दी का प्रयोग हम कैसे करते हैं।
0: जी हाँ।
2: तो श्रोता साथियों, जब मौसम बदलता है तो कई लोगों को सर्दी जुखाम की समस्या हो जाती है। ऐसे समय में कशिश और मनीषा, गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीने की सलाह दी जाती है।
0: बिल्कुल।
2: कहना चाहेंगी ये घरेलू उपाय वर्षों से प्रचलित है। अगर
0: हाँ।
2: किसी को हल्की सी चोट लग जाए तो कई घरों में हल्दी का लेप भी लगाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कशिश और मनीषा, आज भी लोग इस उपाय का उपयोग करते हैं।
0: जी हाँ।
2: हल्दी का उपयोग त्वचा की देखभाल के लिए भी किया जाता है और कई घरेलू उपटन फेस पैक में भी हल्दी मिलाई जाती है। यह त्वचा को साफ और चमकदार बनाए रखने में सहायक होता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो ये तो हमने बात की हल्दी की, अब यही अगर श्रोता साथियों दूसरी महत्वपूर्ण औषधि की बात की जाए तो वो है अदरक, जिसे स्वाद और स्वास्थ्य का संगम कहा जाता है। साथियों, अदरक एक ऐसी चीज है जो लगभग हर रसोई में हमें मिल ही जाएगी।
1: जी जी,
0: जी हाँ। चाहे चाय बनानी हो, सब्जी बनानी हो या कोई विशेष व्यंजन तैयार करना हो साथियों, सभी में अदरक का उपयोग करना आम बात है।
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि अधिकतर लोग अदरक वाली चाय ज्यादा पीना पसंद करते हैं। साथियों, जब भी ठंड का मौसम आता है तो अदरक वाली चाय की मांग बढ़ जाती है। सुबह की शुरुआत अदरक वाली चाय से ही होती है और शरीर में ताजगी महसूस होती है।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही जब गले में कुछ परेशानी हो जाती है तो भी हम अदरक का ही सेवन करते हैं साथियों। जैसे कि जब गला बैठ जाए या फिर खराश महसूस हो तो अदरक का उपयोग हर घर में किया जाता है।
1: बिल्कुल।
0: जी हाँ। अदरक और शहद का जो मिश्रण है उसे मिलाकर एक पेस्ट बनाना पुराने समय से लोकप्रिय और घरेलू उपाय माना जाता है।
1: बिल्कुल जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हुए हम बढ़ना चाहेंगे हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हमारी स्वास्थ्य प्रद बातें चल रही है रसोई में मौजूद औषधियों को लेकर।
1: बिल्कुल
0: जी हाँ, जैसा कि हमने गीत से पहले हल्दी के बारे में जाना था और हम गीत से पहले श्रोता साथियों अदरक के औषधीय गुणों के बारे में बात कर रहे थे।
1: जी जी,
0: यहीं अगर बात करें कि ये पाचन के लिए कैसे लाभकारी है, तो आजकल अनियमित खानपान के कारण पाचन संबंधित कई समस्याएं बढ़ रही है। अंजलि जी और मनीषा
1: जी, हाँ,
0: ऐसे समय में अदरक को भोजन का हिस्सा बनाना हमारे श्रोता साथियों के लिए लाभदायक होगा। साथ ही अगर बात करें बरसात के मौसम की, तो साथियों बरसात के मौसम के दिनों में संक्रमण और मौसमी बीमारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे समय में अगर आप चाय, काढ़े और भोजन में अदरक का सेवन करेंगे साथियों, तो ये आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर रखेगा।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल कशिश। यही अगर हम बात करें लहसुन की, तो हम देखते हैं कि लहसुन का स्वाद और सुगंध भोजन को विशेष बनाते हैं। इसके बिना कई व्यंजन श्रोता साथियों अधूरे लगते हैं। हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लहसुन का उपयोग लंबे समय से घरेलू उपचारों के रूप में किया जाता रहा है।
0: बिल्कुल,
1: बुजुर्ग अक्सर इसके नियमित सेवन की सलाह देते हैं साथियों। साथ ही श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि सर्दियों में लहसुन का उपयोग बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल,
1: कई लोग लहसुन की चटनी, सूप और सब्जियों का सेवन करते हैं। श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि लहसुन को शरीर को सक्रिय और ऊर्जावान बनाए रखने का खाद्य पदार्थ भी कहा जाता है।
2: बिल्कुल,
1: यही कारण है श्रोता साथियों कि लोग इसे अपने खाने में शामिल करते हैं।
2: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि हल्दी, अदरक और लहसुन तीनों अलग अलग गुणों वाली चीजें हैं, लेकिन जब ये हमारे दैनिक भोजन का हिस्सा बनती है तो स्वास्थ्य को कई प्रकार के लाभ पहुंचाती है।
1: बिल्कुल,
2: जैसे कि कशिश, ये रसोई में आसानी से उपलब्ध होती हैं, इनका उपयोग करना सरल है, ये भोजन का स्वाद बढ़ाती हैं, परिवार के सभी सदस्य इनका उपयोग कर सकते हैं और ये हमारी पारंपरिक जीवन शैली का हिस्सा भी है।
1: बिल्कुल,
2: कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग फास्ट फूड और पैकेट वाले खाद्य पदार्थों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।
0: जी हाँ,
2: इसके कारण स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे समय में हमें अपनी परंपराओं, घरेलू ज्ञान की ओर फिर से ध्यान देना चाहिए।
0: बिल्कुल,
2: यदि हम अपने भोजन में प्राकृतिक चीजों को शामिल करें तो स्वास्थ्य को बेहतर रखने में सहायता मिल सकती है।
0: जी हाँ,
2: हल्दी, अदरक और लहसुन जैसे साधारण पदार्थ हमें यह सिखाते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए हमेशा महंगे साधनों की आवश्यकता नहीं है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। अब यही श्रोता साथियों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि इन तीनों का सेवन करने के लिए कुछ सावधानियां हैं जो हमें बरतनी है। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं अंजलि जी, कि किसी चीज की अति हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है, तो ऐसे में श्रोता साथियों, प्राकृतिक चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती हैं, लेकिन किसी भी चीज का बहुत ज्यादा उपयोग करना या ज्यादा सेवन करना उचित बात नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आप इसका संतुलित मात्रा में ही सेवन करें। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो पहले डॉक्टर से सलाह ले लें, फिर ही इन खाद्य पदार्थों का आप सेवन करें।
1: जी हाँ,
0: साथ ही घरेलू उपायों पर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए साथियों। बच्चों और बुजुर्गों की अगर बात करें तो उनके लिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और स्वस्थ जीवन शैली के साथ ही हम इनका सेवन कर सकते हैं साथियों।
1: बिल्कुल जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे, ये हमारी रसोई वास्तव में स्वास्थ्य का खजाना है। हल्दी, अदरक और लहसुन जैसे साधारण दिखने वाली चीजें वर्षों से ये हमारे परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। केवल भोजन का स्वाद ही नहीं बढ़ाती साथियों, बल्कि यह स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है। तो श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि हमें अपनी पारंपरिक रसोई के महत्व को समझना है, प्राकृतिक जीवन शैली को अपनाना है और अपने परिवार को स्वस्थ रखने का प्रयास करना है। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही बड़े स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती हैं।
2: बिल्कुल मनीषा, अक्सर हम सोचते हैं कि स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए केवल महंगी दवाइयाँ और बड़े अस्पतालों की हमें जरूरत होती है, लेकिन श्रोता साथियों, हमारी रसोई केवल भोजन बनाने का स्थान नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य का खजाना भी है। हल्दी, अदरक और लहसुन जैसी साधारण दिखने वाली चीजें हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि हम संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और अच्छी दिनचर्या के साथ इसका सही उपयोग करें तो स्वस्थ जीवन की और एक मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
2: तो हमें श्रोता साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारी रसोई में बहुत सी ऐसी औषधीय चीजें उपलब्ध हैं, जिनका सेवन करके हम हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हो चुकी हैं, और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: जी हाँ,
0: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दें हम।
1: जी बिल्कुल कशिश, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य यहीं समाप्त होता है। अंत में साथियों, आपसे यही कहना चाहेंगे कि हल्दी, अदरक और लहसुन भारतीय रसोई की ऐसी अमूल्य औषधियां हैं जो भोजन का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ स्वास्थ्य की भी रक्षा करती हैं।
1: जी हाँ
0: साथियों, हल्दी सूजन और संक्रमण से बचाती है, तो वहीं अदरक जो है वो पाचन और श्वसन तंत्र को मजबूत बनाती है, और जो लहसुन है वो साथियों रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। तो ऐसे में हम कार्यक्रम के माध्यम से कह सकते हैं कि इन तीनों चीजों का नियमित और संतुलित उपयोग अनेक रोगों से हमारे स्वास्थ्य का बचाव कर सकता है।
1: बिल्कुल। तो श्रोता साथियों, जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी बातें ढेर सारी हो गई हैं और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगे ताकि आज का ये कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा उसके लिए वो राय सुझाव हमें पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
2: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
2: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
2: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए स्वास्थ्यप्रद विषय को लेकर। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को,
2: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को,
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
3: नमस्कार।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हम कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर जब भी हाजिर होते हैं तो बात करते हैं एक नए विषय को लेकर। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसे ही नए विषय को लेकर बातचीत होगी। साथियों, बात करेंगे मेहनत के फल को लेकर, क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि जीवन में हर इंसान सफलता चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके सपने पूरे हो और उसका परिवार खुश रहे, समाज में उसे सम्मान मिले और उसके जीवन में सुख समृद्धि आए। लेकिन दोस्तों, इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत काम करती है वह है हमारी मेहनत। हम देखते हैं कि मेहनत वह चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देती है। साथियों, मेहनत वह दीपक है जो अंधेरे रास्तों में भी रोशनी कर देती है। और मेहनत का फल वह सिर्फ सफलता नहीं देता साथियों, बल्कि इंसान को आत्मविश्वास, सम्मान और संतोष भी देता है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही बात करेंगे दोस्तों कि मेहनत का फल इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है और मेहनत इंसान की जिंदगी को कैसे बदलती है। साथ ही क्यों मेहनत करने वाला इंसान कभी वास्तव में हारता नहीं है। साथियों, तो ऐसे ही ढेर सारी बातें होंगी। लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो पहले सुनते हैं श्रोता साथियों उसी दस्तूर को निभाते हुए एक प्यारा सा गीत। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुकी है और बातचीत की शुरुआत भी हमारी हो चुकी है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं मेहनत के फल को लेकर। साथियों, जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बताया था कि मेहनत वह चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे को भी खोल देती है, साथ ही मेहनत वह दीपक है जो अंधेरे के रास्ते में भी रोशनी भर देती है। साथियों, अब यही साथियों अगर बात करें कि मेहनत सफलता की पहली सीढ़ी कैसे मानी जाती है, तो श्रोता साथियों, दुनिया में ऐसा कोई महान इंसान नहीं है जिसने बिना मेहनत की बड़ी सफलता प्राप्त की हो। आपको बताना चाहूंगी कि हर सफल व्यक्ति के पीछे वर्षों की मेहनत, संघर्ष और धैर्य छिपा हुआ होता है। दोस्तों, जैसे कि एक किसान को ही देख लीजिए आप, वह तपती धूप में खेत जोतता है, बीज बोता है, पानी देता है और फसलों की रक्षा करता है। दोस्तों, कई महीनों के मेहनत के बाद जब खेत में सुनहरी फसल लहराती है तब उसे अपनी मेहनत का फल मिलता है। ठीक उसी तरह विद्यार्थी भी रात रात भर पढ़ाई करते हैं, खिलाड़ी लगातार अभ्यास करता रहता है और जो मजदूर है वो दिन भर पसीना बहाता है, तब जाकर उन्हें सफलता मिलती है। साथियों, यानी कि कहने का मतलब यही है कि मेहनत के बिना जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए श्रोता साथियों, मेहनत को सफलता की पहली सीढ़ी माना जाता है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि मेहनत जो है वो इंसान को मजबूत भी बनाती है। वो कैसे साथियों? तो मेहनत सिर्फ पैसे कमाने का माध्यम नहीं होती साथियों, ये इंसान के व्यक्तित्व को भी मजबूत बनाती है। जैसे कि जो इंसान मेहनत करता है वह संघर्ष करना भी सीख जाता है, उसे मुश्किलों से डर नहीं लगता, वह हर परिस्थिति का सामना करना सीख जाता है। और कई बार तो दोस्तों जीवन में ऐसे मौके भी आते हैं जब सब कुछ हमारे खिलाफ हमें दिखाई देता है, लेकिन मेहनती इंसान हार नहीं मानता दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि उसे ये पता होता है कि मेहनत करने से ही उसे सफलता मिलेगी। और फिर वह बार बार कोशिश करता है और फिर एक दिन उसे इतने संघर्ष के बाद सफलता मिल ही जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों कार्यक्रम के माध्यम से हम ये समझ पा रहे हैं कि मेहनत इंसान को मजबूत बनाती है और अगर सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत और संघर्ष तो करना ही होगा दोस्तों, क्योंकि मेहनत करते करते ही सफलता मिलती है। अगर आप सोच ले श्रोता साथियों कि आपको मेहनत नहीं करनी है लेकिन आपको सफलता भी चाहिए, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कार्यक्रम के माध्यम से कि अगर हमें सफलता चाहिए, अगर हमें परिणाम अच्छे चाहिए, तो हमें मेहनत तो करनी ही होगी, साथ ही संघर्ष भी करना होगा, असफलताओं को भी झेलना होगा दोस्तों। क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेहनत करते हैं और उन्हें असफलता मिलती है और फिर वो असफलता से हार मान जाते हैं और निराश होकर बैठ जाते हैं और खुद से ये कहते हैं कि अब मैं आगे कोशिश नहीं कर सकता या कर सकती। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपसे कहना चाहूंगी कि मेहनत करने पर जरूरी नहीं है कि पहली बार में ही आपको सफलता मिल जाए। दोस्तों, असफलता सफलता तक पहुंचने का रास्ता होती है, इसलिए अगर आप भी किसी कार्य में मेहनत कर रहे हैं साथियों, तो सफल होने के लिए आपको असफलता को भी झेलना होगा। इसलिए असफलता से घबराए नहीं बल्कि असफलता को सफलता का एक अवसर समझे श्रोता साथियों। तो इस तरीके से जैसा कि कार्यक्रम में मेरी आपसे बातें बहुत अच्छी चल रही है और हम मेहनत के फल को जान रहे हैं श्रोता साथियों, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

दोस्तों इस गीत के बाद फिर से रुक करना चाहूंगी कार्यक्रम सपनों की उड़ान की ओर। जैसा कि दोस्तों बातें हम कर रहे हैं मेहनत से लेकर सफलता तक के सफर की, और इसी सफर को अगर श्रोता साथियों आगे बढ़ाऊं तो गीत से पहले जैसा कि हमने जाना था कि मेहनत सफलता की पहली सीढ़ी होती है और मेहनत जो है वो इंसान को मजबूत भी बनाती है। यही श्रोता साथियों आपसे कहना चाहूंगी कि मेहनत का फल देर से जरूर मिलता है लेकिन मिलता जरूर है, क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि आज की दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुरंत सफलता पाना चाहते हैं। वे ऐसा चाहते हैं कि बिना मेहनत के सब कुछ जल्दी मिल जाए, लेकिन दोस्तों जीवन का सच्चा नियम ये है कि मेहनत का फल समय लेकर आता है। बीज बोने के तुरंत बाद पेड़ नहीं बनता साथियों, उसे मिट्टी में रहना पड़ता है, धूप सर्दी मौसम की मार झेलनी पड़ती है, तब जाकर श्रोता साथियों वो फल देता है। इसी तरह इंसान को भी दोस्तों मेहनत का परिणाम धीरे धीरे मिलता है। कई बार लोग मेहनत करके थक जाते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिलती। ऐसे में हमें ये याद रखना चाहिए दोस्तों कि हर सच्ची मेहनत भविष्य में जरूर रंग लाती है, इसलिए हमेशा दोस्तों असफल होने पर निराश नहीं होना है बल्कि सफलता की ओर बढ़ने के प्रयास जारी रखने हैं। इसी के साथ दोस्तों कहावत तो आपने सुनी होगी कि मेहनत का फल मीठा होता है या फिर धैर्य का फल मीठा होता है। तो दोस्तों जो चीज बिना मेहनत के मिलती है उसकी कीमत इंसान जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जो सफलता हमें संघर्ष मेहनत से मिलती है और उसके लिए हमने धैर्य रखा हो, बहुत लंबे समय तक उसका इंतजार किया हो साथियों, तो उस चीज को उस सफलता को पाने का आनंद हमें बहुत अलग मिलता है। जैसे कि दोस्तों अगर उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं तो एक गरीब परिवार का बच्चा जब मेहनत करके नौकरी पाता है तो उसकी खुशी सिर्फ उसकी नहीं होती बल्कि पूरे परिवार की होती है। एक खिलाड़ी जब सालों के अभ्यास के बाद मेडल जीतता है तो उसके आंसू उसकी मेहनत की कहानी बताते हैं। दोस्तों मेहनत से मिली सफलता इंसान को गर्व देती है, उसे एहसास होता है कि उसने अपने दम पर कुछ हासिल किया है और उसे एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। हम देखते हैं कि जो इंसान मेहनत करता है दोस्तों उसे खुद पर भरोसा होने लगता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर आज मुश्किल है तो कल वह अपनी मेहनत से स्थिति बदल सकता है। मेहनती इंसान दूसरों पर निर्भर नहीं रहता दोस्तों, वह अपनी क्षमता पहचानता है और यही आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। श्रोता साथियों हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि जो किस्मत में तुम्हारे लिखा होगा वो तुम्हें मिल ही जाएगा, लेकिन दोस्तों मेहनत एक ऐसी ताकत है जो किस्मत की दिशा भी बदल सकती है। अगर दोस्तों सिर्फ किस्मत से ही सब कुछ मिल रहा होता तो मेहनत करने वाले किसान खेत में क्यों जाते, विद्यार्थी पढ़ाई क्यों करते और खिलाड़ी अभ्यास क्यों करते। दोस्तों सच तो ये है कि मेहनत ही किस्मत को अवसर में बदलती है, इसलिए श्रोता साथियों मेहनत करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता, उसके साथ धैर्य रखना भी जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों कई लोग शुरुआत में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन परेशानी आते ही हार मान लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सफल वही व्यक्ति होता है जो लगातार मेहनत करता रहे। तो ऐसे में हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे श्रोता साथियों आपसे यही कहना चाहेंगे कि धीरे धीरे चलने वाला इंसान भी मंजिल तक पहुंच जाता है लेकिन रुकने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता। इसलिए श्रोता साथियों यही समय है जब आप अपनी जिंदगी की दिशा तय कर रहे हैं। अगर आज आप मेहनत करेंगे, कुछ नया सीखेंगे और अपने समय का सही उपयोग करेंगे दोस्तों, तो आने वाला भविष्य उज्जवल होगा आपका। मोबाइल आलस्य और समय की बर्बादी दोस्तों हमें और हमारे सपनों को कमजोर कर देती है, लेकिन मेहनत को अपना साथी अगर हम बना लें तो जीवन में हम आगे निकल सकते हैं। याद रखिए आज की मेहनत ही आपकी कल की पहचान बनेगी, क्योंकि दुनिया मेहनती लोगों का ही सम्मान करती है साथियों। जैसे कि एक ईमानदार मजदूर, किसान, एक शिक्षक, डॉक्टर हो या कलाकार, हर वह इंसान सम्मान के योग्य है साथियों जो मेहनत से अपना काम करता है। मेहनत इंसान को सिर्फ धन नहीं देती बल्कि समाज में पहचान भी देती है। इसलिए कार्यक्रम के अंत में आपसे यही कहना चाहूंगी

मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती दोस्तों, वह या तो सफलता देती है या फिर सफलता तक पहुंचने का अनुभव देती है। इन्हीं महत्वपूर्ण बातों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी, क्योंकि देख रही हूं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो श्रोता साथियों, विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी यहाँ पर एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यही समाप्त होता है। हमें उम्मीद है साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

जिंदगी निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था नाना अंजलि बुन हूँ था का अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएंगा हितर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा। ओ अंजलि बुन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है। होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है। होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा। होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है सोच बदलो जिंदगी बदलेगी।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, मनुष्य के जीवन में सोच का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। व्यक्ति जैसा सोचता है वैसा ही उसका व्यवहार होता है, व्यक्तित्व और भविष्य उसी पर ही बनता है। कहना चाहेंगे मनीषा कि सकारात्मक सोच व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, जबकि नकारात्मक सोच उसे निराशा और असफलता की ओर ले जाती है। जीवन में आने वाली परिस्थितियां हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन उन परिस्थितियों को देखने समझने का दृष्टिकोण ही उसके जीवन की दिशा तय करता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए कहा जाता है कि यदि सोच बदल जाए तो जिंदगी भी बदल सकती है। आज के समय में अधिकांश लोग अपनी समस्याओं और सफलताओं और कठिनाइयों को लेकर चिंतित रहते हैं। वे परिस्थितियों को बदलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन मनीषा अपनी सोच बदलने का प्रयास नहीं करते। जबकि वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत जो है वो मन और विचारों से होती है। जब व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक, रचनात्मक और व्यापक बनाता है, तब उनके जीवन में नए अवसर और नई संभावनाएं जन्म लेने लगती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं सोच बदलो जिंदगी बदलेगी। अंजलि जी, हम देखते हैं कि मनुष्य का जीवन उसकी सोच का प्रतिबिंब होता है। जैसा हम सोचते हैं साथियों, वैसा ही हमारा व्यवहार बनता है और वैसा ही हमारा जीवन आकार लेने लगता है। श्रोता साथियों, संसार में हर व्यक्ति की सफलता, सुख और सम्मान प्राप्त करना चाहता है, लेकिन इच्छा करने से पहले श्रोता साथियों जीवन नहीं बदलता।
1: बिल्कुल,
0: जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहले अपनी सोच बदलना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सकारात्मक सोच व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है साथियों, जबकि नकारात्मक सोच उसे निराशा, असफलता की ओर ले जाती है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए अंजलि जी कहा जाता है कि सोच बदलो जिंदगी बदलेगी।
1: जी हाँ मनीषा, क्योंकि सोच हमारे जीवन की नींव है। हमारे विचार ही हमारे निर्णयों को प्रभावित करते हैं और निर्णय ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि श्रोता साथियों किसी व्यक्ति की सोच जो है वो सकारात्मक है तो वह कठिन परिस्थितियों में भी आशा की किरण खोज लेता है। वहीं नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति छोटी सी समस्या को भी बड़ा बनाकर हार मान लेता है। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अपनी कमियों को पहचान कर उसमें सुधार करने का प्रयास करता है मनीषा, और वह असफलता से सीखने का जो अवसर है वो ढूंढ ही लेता है। दूसरी ओर नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अपनी गलतियों को दोष जो है वो दूसरों पर डाल देता है, परिस्थितियों को कोसता रहता है, और इस तरह सोच का सीधा प्रभाव व्यक्ति के जीवन, कार्यशैली और सफलता पर पड़ता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज के समय में जब जीवन में प्रतिस्पर्धा, तनाव और चुनौतियां बढ़ रही हैं, तब सही सोच को महत्व देना हमारे लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।
1: बिल्कुल,
0: सकारात्मक सोच न केवल हमारे जीवन के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है श्रोता साथियों, बल्कि हमारे व्यक्तित्व, संबंध और कार्य क्षमताओं को भी प्रभावित करती है। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि सोच मनुष्य के जीवन की दिशा और दशा दोनों तय करती है। मनुष्य अपने विचारों के आधार पर श्रोता साथियों निर्णय लेता है और निर्णय उनके भविष्य को निर्धारित करता है। यदि किसी व्यक्ति की सोच सकारात्मक ही अंजलि जी, तो वह कठिन परिस्थितियों में भी अवसर खोज लेता है। वही नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति छोटी छोटी समस्याओं को भी बहुत बड़ा संकट समझने लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल मनीषा, हम कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि सकारात्मक सोच जीवन में ऊर्जा और उत्साह का संचार करती है। यह व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करने का साहस देती है। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति ये मानता है कि हर समस्या का समाधान संभव है और हर कठिनाई के पीछे कोई न कोई सीख छिपी होती है।
0: जी हाँ,
1: सकारात्मक सोच से आत्मविश्वास बढ़ता है। जब व्यक्ति अपने ऊपर विश्वास करता है मनीषा, तो वह बड़े से बड़े लक्ष्य को भी प्राप्त करने का प्रयास करता है।
0: बिल्कुल,
1: यही विश्वास उसे सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। सकारात्मक सोच न केवल मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी प्रभाव डालती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि महापुरुषों का जीवन ही श्रोता साथियों वो इस बात का प्रमाण है कि महान उपलब्धियां अपने विचारों से जन्म लेती है और फिर वास्तविकता बनती है श्रोता साथियों। इसीलिए किसी भी परिवर्तन की शुरुआत हमारी सोच से होती है।
1: बिल्कुल,
0: यही अंजलि जी बात आती है कि सकारात्मक सोच क्या है। साथियों, सकारात्मक सोच का अर्थ केवल अच्छी बातें सोचना नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में समाधान खोजने की क्षमता विकसित करना है।
1: बिल्कुल,
0: सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति समस्याओं से घबराता नहीं है, बल्कि उसका सामना करने का साहस रखता है।
1: जी हाँ,
0: हम देखते हैं श्रोता साथियों कि जिसके अंदर सकारात्मक सोच होती है वो आत्मविश्वास को बनाए रखता है, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखता है और दूसरों के प्रति अच्छा दृष्टिकोण रखता है। साथ ही हम देखते हैं कि असफलताओं से सीख लेता है और भविष्य के प्रति आशावादी रहता है।
1: जी हाँ मनीषा, रचनात्मक सोच व्यक्ति के विकास में सबसे बड़ी बाधा बन सकती है। यह व्यक्ति के आत्मविश्वास को कमजोर करती है और उसके मन में भय, चिंता और असुरक्षा की भावना पैदा करती है।
0: जी हाँ,
1: नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हर कार्य में असफलता की कल्पना करता है।
0: बिल्कुल,
1: जिसके कारण वह पूरी क्षमता से प्रयास भी नहीं कर पाता। ऐसी सोच रिश्तों पर भी बुरा प्रभाव डालती है। नकारात्मक विचार व्यक्ति को चिड़चिड़ा और निराशा बना देते हैं। धीरे धीरे वह समाज और परिवार से भी दूरी महसूस करने लगते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए नकारात्मक सोच को छोड़ना आवश्यक है। जीवन में परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहले सोच को बदलना जरूरी है। यदि व्यक्ति की अपनी परिस्थिति को बदलना चाहता है, तो उसे अपने विचारों को बदलने से शुरुआत करनी होगी। सोच बदलने का अर्थ केवल सकारात्मक बातें करना नहीं है, बल्कि अपने दृष्टिकोण में व्यापक और रचनात्मक चीजों को जोड़ना होता है। जब व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि हर समस्या का समाधान संभव है, हर असफलता उसे कुछ सिखाने आई है, तब उसके जीवन में बदलाव आने लगता है।
0: हाँ।
1: शिकायत करने के बजाय समाधान खोजने लगता है और यही बदलाव धीरे धीरे उसके जीवन को नई दिशा देता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं।
1: बिल्कुल,
0: और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले मनीषा हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगे कि सोच बदलना एक दिन का कार्य नहीं है, उसके लिए निरंतर प्रयास और अभ्यास की आवश्यकता होती है। जैसे स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए, सकारात्मक लोगों की संगति करनी चाहिए, अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखने की आदत विकसित करनी चाहिए और हर परिस्थिति में अच्छाई खोजने का प्रयास करना चाहिए।
1: जी हाँ,
0: दूसरों से तुलना करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रखना चाहिए। इन छोटे छोटे प्रयासों से व्यक्ति की सोच धीरे धीरे सकारात्मक और रचनात्मक बनने लगती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें कि नकारात्मक सोच के क्या दुष्परिणाम होते हैं, तो हम देखते हैं कि नकारात्मक सोच व्यक्ति की प्रगति में सबसे बड़ी बाधा होती है।
0: बिल्कुल।
1: जब व्यक्ति हमेशा बुरा सोचता है साथियों, तो उसका आत्मविश्वास है वो कम होने लगता है। वह किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले ही हार मान लेता है।
0: जी हाँ।
1: साथियों, नकारात्मक सोच के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि तनाव और चिंता बढ़ती जाती है, मानसिक शांति समाप्त हो जाती है, रिश्तों में दूरी आने लगती है, साथ ही हमारे निर्णय लेने की क्षमता है वो भी कमजोर हो जाती है। श्रोता साथियों, व्यक्ति अवसरों को पहचान नहीं पाता, ऐसी सोच धीरे धीरे व्यक्ति को निराश और असफलता की ओर ले जाती है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को बताना चाहेंगे कि सकारात्मक सोच केवल व्यक्ति को ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करती है।
1: जी हाँ।
0: जब परिवार के सदस्य सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो घर का वातावरण सुखद और प्रेरणादायक बनता है। बच्चे भी ऐसे माहौल में आत्मविश्वासी और जिम्मेदार बनते हैं। समाज में भी सकारात्मक सोच विकसित और सहयोग की भावना बढ़ावा मिलता है।
1: जी हाँ।
0: लोग एक दूसरे की कमियां खोजने के बजाय उनकी अच्छाइयों को पहचानने लगेंगे श्रोता साथियों और सहयोग करेंगे तो समाज अधिक मजबूत और प्रगतिशील बन सकता है। दुनिया के अधिकांश सफल लोगों की सफलता के पीछे उनकी सकारात्मक सोच और दृढ़ विश्वास का योगदान रहा है।
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने कठिन परिस्थितियों के बावजूद हार नहीं मानी, अपने लक्ष्य की ओर लगातार प्रयास करते रहे। उनकी सफलता यह साबित करती है श्रोता साथियों कि परिस्थितियां नहीं बल्कि सोच व्यक्ति को महान बनाती है।
1: जी हाँ।
0: सफलता केवल धन या पद प्राप्त करने का नाम नहीं होता श्रोता साथियों, बल्कि वास्तविक सफलता वह है जिसमें व्यक्ति संतुष्ट, खुश और आत्मविश्वासी महसूस करे। यह तभी संभव है जब उसकी सोच सकारात्मक और संतुलित हो।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि जब व्यक्ति अपनी सोच को बदलता है और स्वयं पर विश्वास करना सीखता है साथियों, तो उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है।
0: बिल्कुल।
1: वह कठिन कार्यों को भी करने का साहस जुटा लेता है। साथ ही हम देखते हैं कि जीवन में समस्याएं कभी समाप्त नहीं होती साथियों। हमें हमेशा समस्याओं का सामना करना चाहिए, लेकिन श्रोता साथियों, सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति समाधान खोजने पर ध्यान देता है। यही आदत उसे सफल बनाती है अंजलि जी। जो व्यक्ति हम देखते हैं कि सकारात्मक सोच रखता है साथियों, वह हर परिस्थिति में अवसर खोज लेता है, यही गुण उसे सफलता की ओर ले जाता है।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि सोच ही जीवन का आधार है। यदि हम अपनी सोच को बदल लें तो जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकती है। सकारात्मक सोच हमें नई ऊर्जा, नया आत्मविश्वास और नए अवसर प्रदान करती है।
1: जी हाँ।
0: हमें कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।
1: बिल्कुल।
0: को अधिक सार्थक बनाती है। इसलिए हमें अपने विचारों को सकारात्मक, रचनात्मक और आशावादी बनाने पर प्रयास करना चाहिए। परिस्थितियां हमारे हमेशा हमारे अनुसार नहीं होंगी, लेकिन उन्हें देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमारे हाथ में होता है।
1: जी हाँ।
0: जब हम अपनी सोच को बदलते हैं तब हमारे भीतर छिपी संभावनाएं जागृत होती हैं और हम अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं।
1: बिल्कुल।
0: सच ही कहा गया है कि सोच बदलो जिंदगी बदलेगी।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ श्रोता साथियों को बताना चाहेंगे कि सोच बदलने के उपाय क्या हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको स्वयं पर विश्वास रखना है।
0: जी जी।
1: हर व्यक्ति में कोई ना कोई विशेष गुण होते हैं। अपनी क्षमताओं को पहचाने और उन पर विश्वास करना सोचे, जिसे श्रोता साथियों हम देखते हैं कि सफलता की ओर हम एक और कदम बढ़ा पाएंगे। साथ ही साथियों, हमें अच्छी संगति अपनानी है। हम देखते हैं कि अंजलि जी, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं उसका प्रभाव हमारी सोच पर भी पड़ता है। सकारात्मक सोच और प्रेरणादायक लोगों की संगति हमें अच्छी सोच विकसित करने की मदद करती है। साथ ही श्रोता साथियों, असफलता जीवन का अंत नहीं होती, यह तो सफलता की ओर बढ़ने का एक और कदम होती है। जो व्यक्ति असफलता से सीखता है वह भविष्य में अधिक मजबूत बनता है।
0: जी हाँ मनीषा, जीवन किसी तैयार रास्ते का नाम नहीं है, बल्कि यह हमारे निर्णयों, अनुभवों और विचारों से बनने वाली एक सतत यात्रा है। इस यात्रा में हर व्यक्ति को कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता, कभी सम्मान मिलता है तो कभी आलोचना, लेकिन इन सब के बीच जो चीज हमारे स्थिर रहती है वह हमारी सोच होती है।
1: बिल्कुल,
0: जिस व्यक्ति की सोच मजबूत होती है वह विपरीत परिस्थितियों में भी टूटता नहीं बल्कि उससे सीख कर और अधिक परिपक्व बनता है।
1: बिल्कुल,
0: वास्तव में श्रोता साथियों, जीवन में सबसे बड़ी क्रांति बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। जब व्यक्ति अपने डर को साहस में, अपनी कमजोरियों को सीखने के अवसर में और अपनी असफलताओं को नए प्रयास की प्रेरणा में बदलना सीख जाता है, तब उसका व्यक्तित्व निखरने लगता है और वह दूसरों को बदलने की अपेक्षा स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है।
1: जी हाँ,
0: यही दृष्टिकोण उसे भीड़ से अलग पहचान देता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ श्रोता साथियों

0: को लक्ष्य निर्धारित करने हैं। श्रोता साथियों, स्पष्ट लक्ष्य व्यक्ति को सही दिशा देते हैं। लक्ष्य होने पर व्यक्ति का ध्यान नकारात्मक बातों से हटकर प्रगति पर केंद्रित रहता है। यही अंजलि जी अगर बात करें कि विद्यार्थी के जीवन में सकारात्मक सोच का क्या महत्व है, तो श्रोता साथियों हम देखते हैं कि विद्यार्थी जीवन है वो सीखने और विकास का समय होता है। यदि विद्यार्थी सकारात्मक सोच रखते हैं तो वे पढ़ाई में अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। परीक्षा में असफलता होने पर उन्हें निराश नहीं होना है साथियों, बल्कि अपने कमियों को सुधारने का प्रयास करना है। सकारात्मक सोच विद्यार्थी के अंदर आत्मविश्वास को बढ़ाती है, उसके एकाग्रता को विकसित करती है, साथ ही तनाव को कम करती है, लक्ष्य प्राप्ति में श्रोता साथियों सहायता करती है और नेतृत्व क्षमता का भी विकास करती है। इसलिए अंजलि जी, विद्यार्थियों के लिए सकारात्मक सोच का महत्व और भी जरूरी हो जाता है।
1: जी हाँ मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही हैं। ये बातें निरंतर आगे यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ वाकर रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रहे थे सोच बदलेगी तो हमारी जिंदगी बदलेंगे। यही अंजलि जी अगर बात करें कि परिवार और समाज में सोच का क्या प्रभाव पड़ता है, तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि व्यक्ति की सोच केवल उसके जीवन तक ही नहीं रहती, बल्कि परिवार समाज को भी प्रभावित करती है। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति परिवार में प्रेम, सहयोग और विश्वास के वातावरण को बनाता है। जबकि अंजलि जी, हम देखते हैं कि समाज के लोग सकारात्मक सोच को अपनाते हैं तब समाज में सामाजिक एकता बढ़ती है, विवाद कम होते हैं, विकास के नए अवसर पैदा होते हैं, साथ ही आपसी सहयोग भी मजबूत होता है। इस प्रकार श्रोता साथियों, अच्छी सोच समाज के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
1: जी हाँ मनीषा, आज के समय में संसाधनों की कमी से अधिक लोगों को सही सोच की कमी परेशान कर रही है। अवसर अक्सर ये देखते हैं कि लोग जो हैं वो कहते दिखाई देते हैं कि जो आशा के साथ आगे बढ़ते हैं, जो लोग हर परिस्थिति में केवल बाधाएं देखते हैं, वे संभावनाओं के द्वार पर पहुंच नहीं पाते। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने मन को संकीर्णता, निराशा, ईर्ष्या और भय से मुक्त करें और उसे विश्वास, कृतज्ञता, धैर्य और सकारात्मकता से भरें। याद रखिए कि एक अच्छा विचार केवल एक पल को नहीं बदलता, बल्कि पूरे जीवन की दिशा बदल सकता है। जिस दिन व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसकी सोच है, उसी दिन से उसके विकास का नया अध्याय शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए परिस्थितियों को बदलने की प्रतीक्षा मत कीजिए, बल्कि अपने दृष्टिकोण को इतना मजबूत बनाइए कि परिस्थितियां भी आपके अनुकूल बनने लगे। जब मन में उजाला होता है तो जीवन के रास्ते स्वयं स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और जब सफलता केवल एक लक्ष्य नहीं बल्कि जीवन जीने का स्वाभाविक परिणाम बन जाती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आज का युग वो तेजी से बदल रहा है। तकनीकी, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक जीवन में लगातार परिवर्तन हो रहे हैं।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे समय में श्रोता साथियों, सकारात्मक सोच व्यक्ति को चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है। हम देखते हैं कि आज के युवा में तनाव, प्रतिस्पर्धा और भविष्य की चिंता बढ़ रही है। अंजलि जी, यदि वे सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाएं तो वे इन चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं। श्रोता साथियों, सकारात्मक सोच उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है, नई संभावनाओं को पहचानने की क्षमता देती है, साथ ही जीवन में संतुलन बनाए रखने में भी सहायता करती है, निराशा को दूर कर आशा का दीपक जलाती है।
1: जी हाँ मनीषा, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम हमारे श्रोता साथियों को ये बात समझाना चाहेंगे। हमारी कहानी है सोच का जादू। श्रोता साथियों, एक गांव में दो मित्र रहते थे, मोहन और सोहन। दोनों की आर्थिक स्थिति लगभग समान थी। एक दिन दोनों ने अपने खेत में फसल बोई। कुछ समय बाद तेज आंधी और बारिश से फसल को नुकसान पहुंच गया। मोहन बहुत निराश हो गया। वह हर किसी से कहता, अब कुछ नहीं हो सकता, मेरी किस्मत ही खराब है। उसने खेत पर जाना भी कम कर दिया। लेकिन सोहन ने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि जो नुकसान हुआ उसे तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन आगे क्या करना है यह मेरे हाथ में है। उसने खेत की देखभाल जारी रखी, नई तकनीकों के बारे में सीखा और मेहनत करता रहा। कुछ महीनों बाद सोहन की बची हुई फसल अच्छी हुई और उसे अच्छा लाभ मिला। वहीं मोहन अपनी निराशा में ही उलझा रहा और उसकी स्थिति पहले से भी खराब हो गई।
0: जी हाँ,
1: एक दिन मोहन ने पूछा कि हम दोनों की शुरुआत तो एक जैसी थी, फिर तुम सफल कैसे हो गए? सोहन मुस्कुराया और बोला कि हमारी परिस्थितियां नहीं, हमारी सोच अलग थी। तुमने नुकसान देखा, मैंने अवसर देखा।
0: बिल्कुल।
1: तुमने हार मान ली, मैंने कोशिश जारी रखी। उस दिन मोहन को समझ में आया कि जीवन में हर समस्या के साथ एक नया अवसर भी आता है, बस उन्हें देखने के लिए सही सोच की जरूरत होती है। ये कहानी हमें बताती है मनीषा कि परिस्थितियां जीवन नहीं बदलती, उन्हें देखने का हमारा नजरिया जीवन बदलता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें, क्योंकि सोच बदलेगी तो जिंदगी बदलेगी। मनुष्य का जीवन केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है श्रोता साथियों, बल्कि उन घटनाओं के प्रति उनकी प्रतिक्रिया का परिणाम भी है। एक ही परिस्थिति दो लोगों के सामने आती है, लेकिन एक व्यक्ति उससे हार मान लेता है तो दूसरा उसी परिस्थिति को अपने विकास का माध्यम बना लेता है।
0: जी हाँ,
1: ये अंतर किसी चमत्कार का नहीं बल्कि सोच का होता है। इसलिए जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए बाहरी संसाधनों से अधिक आंतरिक दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता होती है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि जीवन को बदलने की शुरुआत हमारी सोच से ही होती है। सकारात्मक सोच व्यक्ति को आत्मविश्वास, साहस और धैर्य और सफलता प्रदान करती है।
1: बिल्कुल।
0: वहीं श्रोता साथियों, नकारात्मक सोच जीवन को कठिन और दुखद बना देती है। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मकता में अपने विचारों में सकारात्मक लाएं श्रोता साथियों और स्वयं पर विश्वास रखें तो हर परिस्थितियों में सीखने का प्रयास हम कर सकते हैं
1: जी जी।
0: और साथ ही हमारे जीवन में निश्चित रूप से परिवर्तन भी आएगा। इसलिए श्रोता साथियों हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि परिस्थितियां नहीं बल्कि उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन को आकार देता है। जब श्रोता साथियों सोच बदलती है तब हमारा व्यवहार बदलता है, व्यवहार बदलता है तो हमारी आदतें बदलती हैं, और जब श्रोता साथियों आदतें बदलती हैं तब पूरी जिंदगी बदल जाती है। यही कारण है कि कहा जाता है श्रोता साथियों कि सोच बदलोगे तो जिंदगी बदलेगी।
1: जी हाँ मनीषा, जब व्यक्ति अपनी सोच को सकारात्मक दिशा देता है तो वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है।
0: जी हाँ,
1: उसके शब्दों में उत्साह, उसके कार्यों में आत्मविश्वास और उसके व्यवहार में संतुलन दिखाई देने लगता है। वह समस्याओं के बीच घबराने के बजाय समाधान खोजने की आदत विकसित कर लेता है और यही आदत धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है और उसे जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की शक्ति भी देती है। श्रोता साथियों ये समझना आवश्यक है कि अच्छी सोच का अर्थ केवल बड़े सपने देखना नहीं है बल्कि जीवन के छोटे छोटे पहलुओं में अच्छाई को पहचानना भी है। जो व्यक्ति अपने वर्तमान के प्रति आभारी रहता है, अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है और निरंतर सीखने की इच्छा बनाए रखता है वह धीरे धीरे अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। उनकी सफलता केवल उपलब्धियों में नहीं बल्कि उनके संतुलित और संतुष्ट जीवन में दिखाई देती है।
0: जी हाँ,
1: ये स्वीकार करना चाहिए कि जीवन को बेहतर बनाने की शुरुआत किसी और से नहीं स्वयं से होती है। यदि हम अपने विचारों को स्वच्छ, उद्देश्यपूर्ण और सकारात्मक बनाए रखें तो कठिन रास्ते भी सरल लगने लगते हैं। बदलती हुई दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं श्रोता साथियों जो मन को नहीं संभावनाओं के लिए खुला रखते हैं। इसलिए आज और अभी से हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे बल्कि आशा, विश्वास और निरंतर प्रयास के साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब विचार ऊंचे होते हैं तो लक्ष्य भी ऊंचे बनते हैं और जब लक्ष्य ऊंचे होते हैं तो जीवन स्वयं एक नई पहचान को प्राप्त कर लेता है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि बड़े सपनों की शुरुआत है वो हमारे सोच से होती है। हर बड़ी उपलब्धि पहले एक विचार के रूप में श्रोता साथियों जन्म लेती है। दुनिया में जितने भी आविष्कार, खोज और परिवर्तन हुए हैं वे किसी न किसी व्यक्ति की सकारात्मक सोच और साहसी सोच का परिणाम है।
1: बिल्कुल,
0: जो व्यक्ति बड़े सपने देखने का साहस करता है साथियों वही उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास भी करता है। सपने देखने का अर्थ केवल कल्पना करना नहीं है

0: साथियों, जैसा कि इससे पहले हमारी आपसे ढेर सारी बातें हो गई हैं कि किस तरीके से हमारी सोच का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है, यही अंत में आपको कहना चाहेंगी कि जीवन में बदलाव किसी इच्छा लगभग हर व्यक्ति के मन में होती ही है। कोई अपने काम में आगे बढ़ना चाहता है, तो कोई अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहता है, तो कोई मानसिक शांति और संतोष की तलाश में रहता है। लेकिन इन्हीं सभी बदलावों की जड़ हमारे विचारों में छिपी होती है। जब हम अपने मन को नई संभावनाओं के लिए तैयार करते हैं, तब जीवन के बंद दरवाजे भी खुलने लगते हैं। असली परिवर्तन की शुरुआत हमेशा भीतर से होती है, बाहर से नहीं। हमें यह समझना होगा श्रोता साथियों कि हर दिन हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक शिकायतों का और दूसरे प्रयासों का। शिकायतों का रास्ता हमें दूसरों पर निर्भर बनाता है, जबकि प्रयासों का रास्ता हमें अपनी शक्ति पहचानने का अवसर देता है। जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का इंतजार करने के बजाय मनीषा स्वयं पहल करता है, वह धीरे धीरे अपने जीवन का निर्माता बनता है। वह समझ जाता है कि सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि हर दिन स्वयं को पहले से बेहतर बनाने में भी है। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि सीखने और बदलने की कोई उम्र नहीं होती। चाहे व्यक्ति कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह अपने विचारों को नया रूप दे सकता है, नई आदतों को अपना सकता है और अपने जीवन को नई दिशा दे सकता है। एक छोटा सा सकारात्मक विचार, एक अच्छा निर्णय या एक नई शुरुआत कई बार ऐसे परिणाम लेकर आती है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए श्रोता साथियों, हम अपने भीतर ऐसी सोच विकसित करें जो हमें जोड़ने का काम करे, तोड़ने का नहीं, जो उम्मीद जगाए, निराशा नहीं, जो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, रुकने के लिए नहीं। जब मन में विश्वास, कर्म में ईमानदारी और दृष्टिकोण में सकारात्मकता होती है, तब जीवन केवल गुजरता नहीं है मनीषा, बल्कि एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़ता है। और यही वह परिवर्तन है जो साधारण दिनों को भी विशेष बना देता है और इंसान को अपनी वास्तविक क्षमता तक पहुंचने का मार्ग दिलाता है। इसलिए अपने विचारों को संवारिए, अपने दृष्टिकोण को विस्तृत बनाइए और हर दिन का स्वागत इस विश्वास के साथ कीजिए कि बेहतर जीवन की शुरुआत बेहतर सोच से होती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी हाँ,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता हम बता दें।
0: बिल्कुल, तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ साथियों आप हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
2: नमस्कार।
0: साथी दोस्तों, आपको छोड़े चलते हैं एक और छोटे से प्यारे से गीत के साथ में।

हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट कशिश पारशर। स्वागत करती हूं दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इस कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम आपकी फरमाइश को लेकर हाजिर होते हैं तो आपसे आपके ही द्वारा भेजे गए नगमों के साथ हम मनोरंजन करते हैं। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से हमें हमारी आपसे श्रोता साथियों फरमाइश का सिलसिला चलेगा सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। तो आइए श्रोता साथियों, पहले हम बढ़ते हैं हमारी पहली फरमाइश के गीत की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आई है तालुका पंडरपुर से। फिल्म का नाम है दीवाना मस्ताना। गीत के बोल हैं ओ मम्मी ओ डैडी। गीत के बोल हैं श्रोता साथियों, और इस गीत को आवाज़ दी उदित नारायण जी और अलका याग्निक जी ने। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं जाखिल मुलाणी, सुबयान सलमा, मुमताज दिलसाद नशीर भी, बानो भी बादशाह मुलाणी जी। इसी बीच हमारे और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं। रोहिदास चौक पंडापुर से हैं प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशा सिंधे, शिशिंदे, कृष्णा घोड़के जी। खरगोन मध्य प्रदेश से तिलोक चंद्र वर्मा, बाकव वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन मास्टर, समरराज आर्यन, आरोही ऐशिका, श्वेता वर्मा जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं ओ मम्मी ओ डैडी।

श्रोता साथियों, जैसे कि फरमाइश का सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है, शुरू हो चुका है और ढेर फरमाइशी कार्यक्रम के माध्यम से आ ही रही हैं। और अभी हमने कार्यक्रम की फरमाइश का पहला गीत भी सुना श्रोता साथियों, जो कि बहुत ही प्यारा सा था। इसी गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है कस्बा से, बागपत से। फिल्म का नाम है खुदा गवाह, गीत के बोल हैं तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्कान, सादिक अली खान, सारिक अली खान जुड़ना चाह रहे हैं। और भी श्रोता साथी इसी गीत के साथ में मनोरंजन करना चाह रहे हैं। आपको बताना चाहूंगी दोस्तों, रोहिदास चौक पंडरपुर से हैं यशाह शिंदे, प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घोड़के जी। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं बागपत से हैं जगमोहन सिंह बदापत, मनीष देवी, अर्जुन भारती, अंजलि और नितिन जगमोहन जी, सुदनुतन, भुवनेश्वरी देवी जी, रामनाथ प्रजापति, सुमन देवी जी। और भी श्रोता साथी भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार, ईशान छिपा। दोस्तों कश्मीर से जुड़ रहे हैं फैजरा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन, क्वासिरुद्दीन। कोका बिलाई से हैं उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अलिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंगेल, नंदिनी जंगेल। सुगरी कला से अमित जंगेल, शकुन, आरुषि, उषिका, आदित्य, अंजलि जंगेल। मजनू का टल्ला से है कमल बालूजा, मधु बालूजा, साग बालूजा, अम मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे बीच आई है लसनपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है कसूर। गीत के बोल हैं मोहब्बत हो न जाए। इस गीत को आवाज़ दिए कुमार सानू जी और अलका याग्निक जी ने। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू। इसी बीच और भी श्रोता साथी इस गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं। नवा शहर से सुरेंद्र साधु, अनिता साधु, रोहित साधु और भी श्रोता साथी हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। बागपत से अब्दुल सत्तार अब्बासी, गाजीबाद से शिषपाल अकेला जी, तेजपाल प्रजापति जी, बोड़खेड़ा पित्रा मल से हैं विनोद मोड़त, नेहा जैत, दीपंक मयंक मोड़त, चेतन नाटा, दिलीप सिंह पंवार जी, दीक्षा कुश मोड़त जी, जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विन और विपुल कांबड़े जी। तो आइए श्रोता साथियों, मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के गीत के साथ में। गीत के बोल हैं मोहब्बत हो न जाए।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है, मैं आपको बताना चाहूंगी रतलाम से। फिल्म का नाम है दोस्तों अजनबी। गीत के बोल है, मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं जगदीश धाकड़ जी, रंजू भाई धाकड़ जी, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़ जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी हैं जो सुनना चाह रहे हैं इसी गीत को। हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कटवासरा, सचिन सतीश और योगेश यादव कटवासरा जी। करेली बरेली से हैं आरिफ हुसैन अंसारी, अमीर अंसारी, नसीन अंसारी, शमा शमीम अंसारी, माहिनूर अंसारी जी। छत्तीसगढ़ से हैं तेलीपारा बिलासपुर से गुणवंत शिवास, करुणा शिवास, आयुष श्रीवास, विवेक शिवास, बेबी आशीष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमो मानस राज। जुड़ना चाह रहे हैं और भी श्रोता साथी अजित कसाना, माया देवी, ऋतिक आदित्य कसाना और लदावली मुरादाबाद से हैं ये। पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकन्न वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा, मुरली अमित वर्मा। गंजुडवारा से जुड़ना चाह रहे हैं शमशिल कमर राही, शाइन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी जी। और भी दोस्त जुड़ रहे हैं बाबा कुटीर रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, आशिक संक्रांति चौहान, रितेश कुमार चौहान, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान और डुग्गू जी। छत्तीसगढ़ से जुड़ रहा है फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार चंदन, हियांश कुमार चंदन। और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे लगान पर रही है छत्तीसगढ़ से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मिणी बघेल, साहिल भारती बघेल। तो आइए दोस्तों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है, मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है पलारी छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है दोस्तों धड़कन। गीत के बोल है नाना करते प्यार हाय मैं कर गई। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर जी, तनुजा देवांगन, ईशांत देवांगन जी और भी दोस्त इसी गीत के साथ मनोरंजन करना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूंगी श्रोता साथियों, बक्सर बिहार से सफवद अंसारी, खातून अंसारी, सुरित रमेश साहू, डुमराव बिहार से डब्ल्यू अंसारी, सोना अदिबा, दानिश अंसारी जी, बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभ्यानंद आर्य, परमानंद आर्य, सरिमपुर बक्सर से जुड़ना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूंगी एजिराज अंसारी, खातून आसमा अंसारी जी। यही श्रोता साथियों, जफराबाद से श्रोता साथी मनोरंजन करना चाह रहे हैं सुधाकर राजे यादव, प्रशांत राजे यादव, संचित वयाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणय देशमुख, सानवी देशमुख जी, हर्षता देशमुख। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है नाना करते प्यार हाय मैं कर गई।

श्रोता साथियों, उस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारी भी चाय है। मैं आपको बताना चाहूँगी, फिल्म का नाम है सिर्फ तुम, गीत के बोल हैं एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। फरमाइशकर्ता इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं मलकापुर महाराष्ट्र से शत्रुघ्न धाड़े, वकील वाल्मीक धाड़े, नीनाजी धाड़े, सप्पल धाड़े, अजय खिरोड़कर। बिहारी कॉलोनी से हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राय, चेतन मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल, रचिता खुराना जी। कुरावली से हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार, सोनम वर्मा। छत्तीसगढ़ से हैं हीरामणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल वर्मा जी। खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्मण मल्होत्रा, लाडूकुल मल्होत्रा, नानक चंद मल्होत्रा। रोहतक से पीयूष सिक्का, कोनिका सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू सिक्का जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी महाराष्ट्र से ही जुड़ रहे हैं। गोविंदपुर अहमदनगर से जुनेद मुजावर, सबिया मुजावर, मिखाइल जैनब मुजावर। श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नाशिद शेख, नाजर नाशिद, साजिद शाहिद। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा। और भी श्रोता साथी हैं जो जुड़ना चाहते हैं इसी गीत के साथ में। सिरसा से जुड़ना चाह रहे हैं राधेश्याम शर्मा, इंद्र शर्मा, सार्थक, सचिन शर्मा, रोहित शर्मा जी। अमरावती महाराष्ट्र से श्याम कीटे, वंदना कीटे, कार्तिक कीटे, भाविका कीटे, समस्त कीटे परिवार सदस्यगण। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं एक मुलाकात जरूरी है सनम। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है दोस्तों, बताना चाहूँगी। फिल्म का नाम है खान, गीत के बोल हैं सजदा। साथियों, फरमाइश करता है इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, आपको बताना चाहूँगी, जुड़ रहे हैं नेहरू चौक पैठन से सुरेश जाधव, नीता जाधव, आरती जाधव, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बिबिसिया जाधव, जलाना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता ओम, सुभाष चंद्र, एकनाथ जाधव। नवाब शहर पंजाब से हैं गगनदीप ठांडी, रीता कुमारी ठांडी, प्रियं प्रशांत और प्रियम वामिका जी। जुड़ना चाह रहे हैं सहारनपुर से सैयद मसूर, साइना असा, अक्सा, नाजमा, आफिया, इब्राहिम, सिद्धम, आदि बली जी। इसी बीच नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नवाड़कर, निमा नवाड़कर, विशाल नवाड़कर, सोपान ताइडे जी। साथियों, जुड़ना चाह रहे जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी। सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोडी केस्टो, पल डिकेस्टो, विलिस डिकेस्टो जी। आज़ाद नगर अक्सर हरिद्वार से ताज बदनसारी, गुलाम शाबी राही। पटेल नगर मोलत से रमेश कुमार जजोरिया, गीतरनी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया जी। और भी दोस्त इसी गीत के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, आपको नाम बताना चाहूँगी। राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, मुस्कान दिव्या, सोमन कोमल, परिकितिका, रमेश चंद्र डांगी जी। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं सजदा।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड रेडियो 90.8 FM। जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता कशिश पारेषर के साथ में। अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में। श्रोता साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है अम्बाला हरियाणा से। फिल्म का नाम है फांसी। गीत के बोल हैं, जब आती होगी याद मेरी। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मुन्नत, गुरशब्द, गुरकीरत राहुल। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे कलानौर से, नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन शर्मा, मयंक जी शर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है सदर बाजार माड़वार भिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक जी चौहान। अमरावती से जुड़ना चाह रहे हैं शीला देवी शेंडे, हीरामन शेंडे, सिद्धार्थ जी गोड़ानी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही जब आती होगी याद मेरी। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

तो आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है पंडरपुर सिटी से। फिल्म का नाम है अजनबी, गीत के बोल ही मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। इस गीत की फरमाइश करते हैं प्रशांत सिंधी, सुनीता सिंधी, यशराज सिंधी, ऋषि सिंधी, कृष्णा घोड़की जी और भी श्रोता साथी जुन्नाचार्य पथरोड से, विजय अंबाटकर, सुनीता अंबाटकर, अक्षय अंबाटकर, राधिका अंबाटकर, ऋषिकेश जी अंबाटकर। इसी बीच जुन्नाचार्य ही झारखंड से मोहम्मद याशीन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफरा नवाज, बीबी चाहत और सादिया जी। इस गीत की अनुरोध करता है राजनंदा गांव छत्तीसगढ़ से बबलू शाहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांचल, समीक्षा बीबी आराध्या जी शाहू। अस्तुपुरा जिला महू से जुड़ना चाह रहे हैं मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक जी अंसारी। गांजीपुर से जुड़ रही हैं आजाद अली अनवर, रजवाना परवीन, अब्दुल्ला जी आजाद। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं मॉडल ट्यून कर्नल सी, सुधर न्यूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापत, प्रतिभा शर्मा, इशप्रीत शर्मा। गंजुड़वारा से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासिन हाशमी, शमशुल कमर राही जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वग रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है धनुरी तेरे वाला सी। फिल्म का नाम है हीरो, गीत के बोल हैं तू मेरा जानू है। इस गीत की फरमाइश करता है निसार सरमानी, नौसाद सरमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। दुलापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोहनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं भीड़चर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटी, संगीता घटी, साक्षी घटी, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनजय बेटू, पीबी कुतलेश जी। गंजड़ द्वारा उत्तर प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमरान नाज, नवाजिक शेख, दानिश शेख, अमन अफरीदी, राधा नामदेव जी। इसी बीच जुड़ना चाह रही दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिलगानी, बबीता मिलगानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं तू मेरा जानू है। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है वीरम काम गुजरात से। फिल्म का नाम है विजयपद, गीत के बोल हैं राहों में उनसे मुलाकात हो गई। इस गीत के अनुरोध करता है बेगम प्रमिला प्रदीप, बेगम हेमा जी प्रदीप, बुलंदशहर से जुड़ना चाह रही नरेंद्र कुमार डोम, सरिता भन्ना, प्रभा डोम, डोली और अंजलि डोम, बालू से जुड़ रही सुनील कुमार, आशा देवी जी, चंद्रनगर राजनंदा गांव से जुड़ना चाह रही रविशंकर जयपुरिया, प्रभा फरजू जी, इसी बीच जुड़ना चाह रहे गंजीडवारा गणेशपुर से फिरासत हुसैन, अलकमर जहां सिफा सिमरन, मोहम्मद अलफेक, सेवाजी शेख, अनारकली बाजार जगराव से जुड़ना चाह रहे हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीविका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोद पुरी जी, इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं डुमराव से राज एडी अंसारी, नरसी अंसारी, वल्लीउल्ला अंसारी, दिल्ली से जुड़ना चाह रहे हैं अजीम वक्कार, लाहौर से जुड़ना चाह रहे हैं प्रभा रानी बेलदार, कुमारी दुर्गा बेलदार और शंकर जी बेलदार। इस गीत के अनुरोध करता है सरगुजा किसी प्रजा डोमिम, प्रभा डोमिम, प्रमिला डोमिम, आशा डोमिम, निशा डोमिम और डोमिन परिवार के सभी सदस्य जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे रमेश कुमार राहुल, रमेश कुमार शाहू, राधिका देवी, डोली देवी और श्रीमती मिश्री देवी जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही राहों में उनसे मुलाकात हो गई।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जमशेदपुर से। फिल्म का नाम है मन, गीत के बोल हैं चाहा है तुमको। इस गीत की फरमाइश करते हैं हरमिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया और हरजिंदर सिंह भाटिया। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं लोनी से नसीमुल इस्लाम नूरी जी, प्रकाशवीर राजपूत। लाहौरा बालोस से जुड़ रहे हैं कमलेश जी पुरिया। खड़वा से जुड़ना चाह रहे हैं पिंकी मिंकी सिंकी रिंकी जी। रायगढ़ से जुड़ रहे हैं लालचंद मिश्रा, रमेश चंद, कुमकुम मिश्रा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। इस गीत के अनुरोध करता है बिहार से सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा शर्मा और अनामिका जी शर्मा। जलालाबाद वेस्ट से जुड़ना चाह रहे सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जी। दुलापुर उत्तर प्रदेश से जुड़ रही मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरार, नरगिस जी खातून। इस गीत के अनुरोध करता है खड़वा से राजेश सेन, सुरेखा सेन, शुभम सेन, अक्षयजीत सेन। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं डाबकी रोड अकोला से शशिला देवी मधुरकर, सिद्धानंद मधुरकर, कुमार गौरव जी मधुरकर। मरियाना सरथाना मेरठ से जुड़ रहे हैं अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जी वी एम जी जैन। सरथाना मेरठ से जुड़ना चाह रहे हैं आदि जैन, अंश जैन, भव्य जी जैन। श्रीरामपुर से जुड़ रहे हैं डी अशोक कुम्भार, रविका जीविका, सोनू कुम्भार, अर्चना जी कुम्भार। पुनावले से जुड़ना चाह रहे हैं अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, शायशा जी सोनवने। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं राही नगर गंजुड़वा राशि शमशुल खान, अदनान खान, फिजाद खान, ताबिश खान, आबाद खान और अनुजी खान। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं राजगढ़ बिहार से उमा राज, पवन उमा, संजीव उमा, दीपक उमा, कमल जी उमा। खड़वा से जुड़ना चाह रहे हैं राधिका, अनिता, सपना और राकेश ताई। जेल रोड रायगढ़ से जुड़ रहे हैं निशा डोमिन, उषा डोमिन, जानवी डोमिन। सहारनपुर से जुड़ना चाह रहे हैं देवेंद्र शंकर यादव, प्रभा रानी यादव, सुरेश यादव और नरेंद्र जी यादव। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं जाखोत राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा जी खटक। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही चाह है तुमको। आप सभी बनी रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से। फिल्म का नाम है सनम बेवफा, गीत के बोल हैं हरी दुपट्टे वाले। इस गीत की फरमाइश करता है उमाशी, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल रश्मि, प्रियंका सृष्टि बन्नी, आरुषि शौर्या, दिनेश जी और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं। अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्चना गुड़ाने, प्रणय प्रसिद्धि, हीरा मंजी शेंडे। इस गीत के अनुरोध करता है छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतलजी राजेश। सिंधी बुजुर्ग से जुड़ना चाह रही हैं किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर, पन्नूजी वड़तकर। इस गीत के अनुरोध करता है कुंभार गली, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले, सानिका जी दले। पुनावली पुणे से जुड़ना चाह रही हैं अजय सोनू ने, करिश्मा सोनू ने, अविका सोनू ने, विशाखा सोनवनी जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं जैन मंदिर वाले गली कुरावली से साईद हुसैन अंसारी, नरसिंह अंसारी, नूरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद फेक जी अंसारी। महाराष्ट्र से जुड़ रहे हैं रुपेश संगई, महेश संगई, प्रदेश संगई, ब्रजेश संगई और संगई परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। पंजाब से जुड़ना चाह रही हैं बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। बरकाकाना से जुड़ रहे हैं अवतार ताज, साहिन सुल्तान, सोनू तस्नीम, निप्पी सोहिनी, अफ्ताब मलिक जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण योगिता, प्रणाली जी, पार्थ जी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है दिल्ली से। फिल्म का नाम है सर, गीत के बोल हैं सुन सुन बरसात की धुन। इस गीत की फरमाइश करते हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेगा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ना चाह रहे राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव खुराना, रिधानजी खुराना। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे बोपालगेट राजस्थान से धर्मेंद्र चिपा, कपिल चिंपा, पूजा परिहार जी, ईशान जी चिंपा। इस गीत की अनुरोध करता है कोकाबलाई से बेगम अनुश्री प्रदीप, राष्ट्रीय प्रमिला जी प्रदीप। रायगढ़ से जुड़ रहे हैं जानवी डोम, पिंकी, दीपा डोमिन। लाहौरा से जुड़ रही फर्जी हरिशंकर बेलदार, फर्जी प्रभा रानी बेलदार। जेल रोड रायगढ़ से जुड़ रही उमर राज, जगदीश राज। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं कालेगांव से सुधाकर राज यादव, प्रशांत राज यादव, सचिन वायल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, कुमारी सानवी देशमुख, कुमारी हर्षिता देशमुख। इसे भी जुड़ना चाह रहे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिदा श्रीवास, रंजन शाओ, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं यूपी से सूर्य चौरासिया, श्रीमती सरोज चौरासिया, सबोज चौरासिया, सलोनी चौरासिया, संजू लल्ला चौरासिया, बाबू शिवा चौरासिया, शिवानी चौरासिया, पंकज घोड़ और योगेंद्र नायक जी। कानपुर से जुड़ रहे हैं श्रीमती सुजाता चौरासिया, पंकज चौरासिया, पीयू और दिहाजी चौरासिया। आगरा से जुड़ना चाह रहे हैं श्रीमती सरिता चौरासिया, सुमित चौरासिया और अवीरजी चौरासिया। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं रामपुर से अमरजीत, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ जी और यश। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं गुणवश्रिया, श्रीमती करुणा श्रीवास, आरुषि श्रीवास, विवेक श्रीवास, बीबी आयुषी श्रीवास। छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित और मोनू मानस जी राज। इस गीत के अनुरोध करता है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी, नंदनी।

नामदेव नेहा नामदेव छन्नूलाल श्रीवास रंजन शाहू जी भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रही सोहन जोशी हरमिंदर सिंह चावला लोकेश जोशी आकांक्षा शिव कुमार शर्मा बीबी वेदे जोशी बीबी हंसिका जी जोशी कुमारी अंकिता जी जोशी खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़नाचार्य अब्दुल गफ्फार डावर जी। इसी बीच जुड़नाचार्य झारखंड से अब्बास आलम अमजद अली लाडली जी निशा और उसके सभी मित्र। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं सुन सुन बरसात की धुन। आप सभी बनी रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। और साथियों यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए। हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।

प्रिय श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाक रेडियो 90.8 FM और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट। साथियों, अब वक्त है शाम के खास कार्यक्रमों का, जो आपके हर पल को बनाएगा खास। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए आज के शाम के कार्यक्रम की रूपरेखा। साथियों, शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति शांति और सुकून से भरे सुरों के साथ दिन भर की थकान को अलविदा कहने का समय। इसी के साथ अगला कार्यक्रम होगा शाम 5:30 पर युवाओं की आवाज, जहां सपने बोलते हैं, विचार उड़ान भरते हैं और युवा अपनी बात खुलकर रखते हैं। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी रेडियो साथी जागृति भट्ट यानी कि मैं और कशिश पाराशर। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम है श्रोता साथियों शाम 6 बजे कार्यक्रम सच्चा बचपन। इसे लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे बच्चों की मासूमियत, मुस्कान और बचपन की यादों से भरा प्यारा सा सफर। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है खेतीबाड़ी, इसे आप सुन पाएंगे 6:30 पर। ये कार्यक्रम किसानों के काम की बात, जमीन से जुड़ी सच्ची जानकारी और अनुभव है। इसे लेकर आएंगे हमारे रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट यानी कि मैं। श्रोता साथियों, जैसे कि कार्यक्रमों की रूपरेखा चल रही है तो हम अगला कार्यक्रम आपको बताते हैं। अगला कार्यक्रम शुरू होगा 7 बजे और इस कार्यक्रम का नाम है सच्चा स्वराज। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप जानेंगे समाज, सोच और सच्चाई से जुड़ी आवाज जो हमें जागरूक बनाती है। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम होगा हमारा स्वास्थ्य, जो कि सेहत और सम्मान की बातों के साथ होगा। इसे आप सुन पाएंगे 7:30 पर। इसे लेकर आएंगी आरजे कशिश पाराशर और हमारे रेडियो साथी मनीषा पटेल। अगली कड़ी में हमारा कार्यक्रम है सपनों की उड़ान, इसे आप सुन पाएंगे 8 बजे। तो श्रोताओं, जैसे कि कार्यक्रमों की रूपरेखा मैं आपको बता रही हूँ तो अंत में आप सुनेंगे 9:00 शाम कसले। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सुनेंगे अल्फाज जो छू जाए, एहसास जो ठहर जाए, सुकून भरी रात की शुरुआत। तो श्रोताओं, शाम की घड़ियां यूं ही नहीं गुजरती, ये वो पल है जहाँ भक्ति भी है, युवा सोच भी है, बचपन की हंसी भी है, किसान की मेहनत भी है, सच की आवाज भी है, सेहत और सम्मान की बात भी है, संगीत का जादू भी है और गजलों का सुकून भी है। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागर रेडियो। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

0: जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन्म ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती है, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति, जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है। और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनो, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जानते हैं कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
4: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
1: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
5: नाना अंजलि बोन, हूँ था का?
1: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
5: ओ अंजलि बोन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
5: होवे अंजलि पुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति पुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तकीस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
6: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जय वरे सब सोरा भणेगा तारे स्तुदेश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: अरी रू है, मानी दुआ, पितानी उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान।
1: होवे इटली गाड़ी धीरे चलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो, एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, किनकी घेरे कोई आपरू इंतजार करी रू है।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारी बातें रहने वाली है, आर्थिक अनुशासन का क्या महत्व है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि श्रोता साथियों, हम मनुष्य के जीवन में धन का बहुत महत्व होता है। धन केवल हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने का साधन नहीं है, बल्कि हमारे भविष्य की सुरक्षा, आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता का भी आधार बनता है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन धन तभी लाभदायक सिद्ध होता है जब उसके उपयोग में अनुशासन हो। जिस प्रकार बिना दिशा के बहती नदी विनाश का कारण बनती है, उसी प्रकार बिना अनुशासन के खर्च किया गया धन जीवन में परेशानियां पैदा करता है।
0: बिल्कुल,
1: आज के समय में हम देखते हैं कि बढ़ती महंगाई, दिखावे की प्रवृत्ति और अनियंत्रित खर्चों के कारण आर्थिक अनुशासन की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हम हमारे साथियों से ढेर सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना साथियों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत सुनवा दें हम।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं आर्थिक अनुशासन को लेकर। जैसा कि जागृति जी गीत से पहले भी हमने हमारे साथियों को बताया था कि आज के जो युवा हैं वो सपनों से भरे हुए हैं, वह अच्छी शिक्षा चाहते हैं, बेहतर करियर बनाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, नई नई चीजें खरीदना और सीखना चाहते हैं,
1: बिल्कुल,
0: साथ ही जीवन को खुलकर जीना चाहते हैं। लेकिन श्रोता साथियों, इन सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए केवल मेहनत ही नहीं बल्कि आर्थिक समझ और अनुशासन भी बहुत जरूरी होता है। हम अक्सर ये देखते हैं कि कई युवा जागृति जी कम उम्र में ही पैसे कमाने लगते हैं,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन सही योजना और अनुशासन के अभाव में वे आर्थिक परेशानियों में कई कबार फंस जाते हैं। कुछ लोग दिखावे के लिए अनावश्यक खर्च करते हैं साथियों, और कुछ बिना सोचे समझे ऑनलाइन शॉपिंग करने लगते हैं,
1: बिल्कुल,
0: तो कुछ ऐसे भी हैं जो क्रेडिट कार्ड और कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। श्रोता साथियों, धीरे धीरे ये जो आदत है वो हमारे अंदर तनाव, चिंता और भविष्य की असुरक्षा का कारण बन जाती है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि कहा गया है कि धन वही सफल कहलाता है जो सोच समझकर खर्च हो जाए। श्रोता साथियों, आर्थिक अनुशासन का अर्थ है अपनी आय और खर्चों को संतुलित ढंग से संचालित करना।
0: जी हाँ।
1: इसका मतलब केवल पैसे बचाना नहीं होता बल्कि धन का सही योजना के साथ उपयोग करना भी है। जब व्यक्ति अपनी कमाई का कुछ हिस्सा बचत, कुछ आवश्यकता और कुछ भविष्य की सुरक्षा के लिए निर्धारित करता है, तभी वो आर्थिक रूप से मजबूत बन पाता है।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, आपसे कहना चाहेंगे कि आर्थिक अनुशासन हमें ये सिखाता है कि इच्छाओं और आवश्यकताओं में अंतर समझना कितना जरूरी है। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि जरूरतों को पहचानना फिजूल खर्चों से बच जाना है, यानी कि आज की दुनिया में लोग अक्सर दूसरों को देखकर खर्च करने लगते हैं। महंगे मोबाइल, जैसा कि आपने कहा था, फैशन, गाड़ियाँ और दिखावटी जीवन शैली कई लोगों को कर्ज की ओर धकेल देती है। श्रोता साथियों,
0: बिल्कुल,
1: और कशिश सोशल मीडिया ने भी इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है। लोग अपनी वास्तविक आय से अधिक खर्च करने लगते हैं ताकि समाज में अपनी झूठी छवि बना सके, और इसका परिणाम ये आता है कि तनाव, चिंता और आर्थिक संकट बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल,
1: आर्थिक अनुशासन व्यक्ति को इस दिखावे की दौर से दूर रखता है और सादगीपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि युवाओं के जीवन में तो आर्थिक अनुशासन बहुत जरूरी है, क्योंकि युवावस्था जीवन का वह समय होता है जब युवा अपने भविष्य की नींव रख रहे होते हैं।
1: बिल्कुल
0: साथियों, इसी उम्र में हमारी आदतें जो हैं वो आगे चलकर जीवन की दिशा तय करती है। यदि ऐसे में युवा शुरुआत से ही आर्थिक रूप से अनुशासित बन जाए तो वे भविष्य की कई परेशानियों से बच सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि आत्मनिर्भर बनने में सहायता मिलती है। दोस्तों, आर्थिक अनुशासन युवाओं को आत्मनिर्भर बनाता है। जब व्यक्ति जागृति जी अपने खर्चों को नियंत्रित करना सीख जाता है तब वह दूसरों पर निर्भर नहीं रहता।
1: जी हाँ,
0: उसे छोटी छोटी जरूरतों के लिए किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, और वह अपने पैसों की कीमत समझने लगता है, साथ ही जिम्मेदारी के साथ जीवन जीता है।
1: बिल्कुल कशिश,
0: वहीं हम देखते हैं कि ये भविष्य को भी सुरक्षित बनाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि भविष्य में अचानक आने वाली परिस्थितियों का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बीमारी हो, नौकरी का संकट हो या पारिवारिक समस्या, दोस्तों किसी बड़े खर्चे की जरूरत भी हमें पड़ सकती है।
1: बिल्कुल,
0: हम कह सकते हैं कि ये जो समस्याएं हैं वो कभी भी हमारे सामने आ सकती है।
1: जी हाँ,
0: ऐसे में यदि व्यक्ति आर्थिक रूप से अनुशासित है और उसने बचत की आदत को बनाए रखा है तो वह कठिन समय में अपने परिवार का और स्वयं का ध्यान रख सकता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि आर्थिक अनुशासन परिवार की खुशहाली का आधार भी है। जिस परिवार में आय और खर्च का संतुलन बना रहता है वहाँ तनाव कम होता है। ऐसे परिवार कठिन परिस्थितियों का सामना आसानी से कर लेते हैं। इसके विपरीत हम देखते हैं जहाँ अनावश्यक खर्च अधिक होते हैं वहाँ अक्सर कलह और चिंता का वातावरण बना रहता है।
0: बिल्कुल,
1: आर्थिक रूप से मजबूत परिवार ही बच्चों को अच्छी शिक्षा और बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हम बात कर रहे हैं आर्थिक अनुशासन के महत्व को लेकर, ये बातें ऐसे ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि हमारी बातें चल रही थी गीत से पहले कि आर्थिक अनुशासन का क्या महत्व है।
1: बिल्कुल,
0: तो साथियों आपको यही बताना चाहेंगे कि आर्थिक अनुशासन व्यक्ति को आत्मसम्मान भी देता है। जो व्यक्ति अपने खर्चों को नियंत्रित रखना जानता है कशिश, उसे दूसरों के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
1: बिल्कुल,
0: कर्ज का बोझ इंसान की स्वतंत्रता छीन लेता है, इसलिए समझदारी इसी में है श्रोताओं कि व्यक्ति अपनी आय के अनुसार जीवन जीना सीखे। छोटी आय में संतोष पूर्वक जीना बड़ी आय में कर्ज लेकर जीने से कहीं बेहतर है।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ दोस्तों हम देखते हैं कि पैसों की कमी अक्सर मानसिक तनाव का कारण बनती है। कई युवा जागृति जी कर्ज और खर्च के साथ साथ आर्थिक दबाव के कारण चिंता में रहने लगते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन दोस्तों जब आय और खर्च संतुलित रहते हैं और बचत होती है और साथ ही हम योजना बनाकर खर्च करते हैं तभी मानसिक शांति बनी रहती है। हम देखते हैं कि हर युवा के कुछ सपने होते हैं, जैसे कि खुद का घर, उच्च शिक्षा प्राप्त करना, अच्छा व्यवसाय, यात्रा, माता पिता की मदद या फिर बेहतर जीवन।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, ये सपने केवल इच्छा करने से पूरे नहीं होने वाले, इनके लिए आर्थिक तैयारी जरूरी होती है। ऐसे में आर्थिक अनुशासन व्यक्ति को धीरे धीरे अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करता है। जागृति जी
0: बिल्कुल कशिश,
1: हम देख सकते हैं कि अनियंत्रित खर्च कई बार युवाओं को गलत रास्तों की ओर ले जाता है, जैसे कि दिखावे की होड़ हो गया, जरूरत से ज्यादा खर्च करना, दूसरों को प्रभावित करने की चाह। दोस्तों ये सभी जो चीजें हैं वो आर्थिक असंतुलन पैदा कर सकती है।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में जो आर्थिक अनुशासन है वो व्यक्ति को सादगी के साथ साथ जिम्मेदारी और समझदारी भी सिखाता है। जागृति जी
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि गांव और ग्रामीण क्षेत्र में भी आर्थिक अनुशासन का महत्व कम नहीं है। किसान यदि अपनी आय का सही प्रबंध करे तो वे कर्ज के बोझ से भी बच सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: कई बार हम देखते हैं कि लोग सामाजिक दिखावे, शादी ब्याह और अनावश्यक खर्चों में इतना धन खर्च कर देते हैं कि बाद में आर्थिक संकट में फंस जाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: सादगी और समझदारी से किया गया खर्च जीवन को सुरक्षित बनाता है और खुशहाल भी बनाता है। कहा गया है कि सादगी में ही आर्थिक मजबूती का राज छिपा हुआ है।
1: जी जी,
0: श्रोता साथियों, आज डिजिटल युग में ऑनलाइन खरीदारी और आसान ऋण सुविधाओं ने लोगों को अधिक खर्च करने के लिए प्रेरित किया है। जैसे कि अभी खरीदो बाद में भुगतान करो, ये जो योजनाएं होती है वो कई बार युवाओं को कर्ज में डाल देती है। इसीलिए कशिश, हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि ये आवश्यक है कि व्यक्ति हर खर्च से पहले ये सोचे कि वो वास्तव में आवश्यक है या केवल क्षणिक आकर्षण है।
1: बिल्कुल,
0: आर्थिक अनुशासन हमें धीरे और विवेक का पाठ पढ़ाता है श्रोता साथियों, इसलिए हर चमकती चीज जरूरत नहीं हो सकती है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। अब दोस्तों प्रश्न ये है कि हम आर्थिक अनुशासन को विकसित कैसे करें।
0: बिल्कुल,
1: तो आपसे कहना चाहेंगे कि आपको शुरुआत बजट बनाने से करनी होगी साथियों। जैसे कि जागृति जी, हर महीने की आय और खर्च का हिसाब हमारे युवा साथियों को रखना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: एक साधारण बजट बनाए साथियों, जिसमें जरूरी खर्च हो, बचत हो और मनोरंजन के लिए अलग अलग राशि तय हो। बजट हमें ये समझने में मदद करेगा जागृति जी कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। साथ ही जरूरत और इच्छा में अंतर समझना भी जरूरी है, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि हर चमकती चीज जरूरी नहीं होती है।
0: बिल्कुल,
1: जरूरत वही है श्रोता साथियों जिसके बिना काम नहीं चल सकता।
0: बिल्कुल,
1: जबकि इच्छा वह है जो केवल मन को खुश करने के लिए होती है। यदि जागृति जी युवा इस अंतर को समझ लेंगे तो अनावश्यक खर्च कम हो सकता है।
0: बिल्कुल,

0: व्यक्ति अपनी आय और खर्चों का सही प्रबंधन करना सीख ले तो न केवल उसका जीवन सुखमय होगा बल्कि समाज और राष्ट्र भी प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगा। हमें आज से ही ये संकल्प लेना होगा श्रोता साथियों कि हम फिजूल खर्चों को छोड़कर बचत, निवेश और जिम्मेदारीपूर्ण आर्थिक व्यवहार को अपनाएंगे, यही समृद्धि का मार्ग है।
1: इसलिए
0: आपसे कहना चाहेंगे साथियों कि आर्थिक अनुशासन को जीवन में अपनाना है और सुखी और सुरक्षित भविष्य हमें हमारा बनाना है।
1: बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि पैसा जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन के लिए आर्थिक स्थिरता जरूरी है। आज यदि आप श्रोता साथियों छोटी छोटी आर्थिक आदतों पर ध्यान देंगे तो भविष्य में आपको बड़े लाभ मिलने लगेंगे। ऐसे में याद रखिए कि फिजूल खर्ची कुछ समय की खुशी जरूर देगी लेकिन आर्थिक अनुशासन पूरी जिंदगी की सुरक्षा देगी।
0: बिल्कुल,
1: आज के इस कार्यक्रम में दोस्तों जैसा कि हमने जाना कि आर्थिक अनुशासन केवल पैसों को बचाने का विषय नहीं है बल्कि जीवन को व्यवस्थित और सुरक्षित बनाने का भी माध्यम है। हम कह सकते हैं कि ये हमारी युवा साथियों को आत्मनिर्भर बनाएगा। जागृति जी, उनके भविष्य को सुरक्षित रखेगा, तनाव कम करेगा और सपनों को पूरा करने की शक्ति भी उन्हें देगा।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि आज की दुनिया में जहां दिखावा और उपभोग की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है वहां आर्थिक अनुशासन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है।
0: जी
1: हां, इसलिए दोस्तों याद रखिए धन कमाना महत्वपूर्ण है लेकिन धन को सही तरीके से संभालना उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की और अब देख पा रहे हैं कि समय उचला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: जी हाँ,
0: विदा हम जरूर लेंगे पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद है कि जो बातें रही कार्यक्रम युवाओं की आवाज के माध्यम से आर्थिक अनुशासन के महत्व को लेकर, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर एक नए विषय के साथ में।
0: बिल्कुल,
1: जैसा कि कशिश कार्यक्रम सच्चा बचपन में हम बात करते हैं जीवन से जुड़ी छोटी मोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण आदतों को लेकर।
0: जी हाँ,
1: आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि बच्चों को कैसे सिखाएं प्लीज सॉरी और थैंक यू बोलने की आदत। साथियों, ये तीन शब्द बहुत छोटे होते हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि ये शब्द सिर्फ बोलने के लिए नहीं बल्कि एक अच्छे संस्कार, एक अच्छी सोच और एक सुंदर व्यक्तित्व की पहचान भी होते हैं। तो जानेंगे कशिश आज कार्यक्रम के माध्यम से कि थैंक यू, सॉरी और प्लीज का जो महत्व है वो हम हमारे बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: शुरुआत में मनोरंजन करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में, फिर बातें हमारी आगे जारी रहेंगी।
0: जी हाँ अंजलि जी,

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हुए हम बढ़ना चाहेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन में हमारे विषय की ओर। जैसा कि साथियों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि बच्चों को सिखाना है हमें प्लीज, सॉरी और थैंक यू बोलने की आदत के बारे में। श्रोता साथियों, जैसा कि गीत से पहले पे बताया था कि ये जो तीन शब्द हैं वो दिखने में काफी छोटे हैं, लेकिन इनका असर बच्चों के जीवन में काफी हद तक बड़ा है।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हम देखते हैं अंजलि जी की बचपन वह समय होता है जब बच्चों का व्यक्तित्व बन रहा होता है। जो आदतें हम उन्हें बचपन में सिखाते हैं साथियों, वही उनके पूरे जीवन की नींव बनती है।
1: जी हाँ,
0: हम देखते हैं कि ये जो तीन शब्द है प्लीज, सॉरी और थैंक यू, ये बच्चों में अलग अलग गुण विकसित करता है। जैसे कि प्लीज जो शब्द है वो सिखाता है विनम्रता, सॉरी जो शब्द है वो सिखाता है गलती मानना, और थैंक यू सिखाता है आभार व्यक्त करना।
1: बिल्कुल
0: दोस्तों, एक बहुत ही सुंदर पंक्ति है जो कही गई है कि संस्कार शब्दों से नहीं, शब्दों के पीछे की भावना से बनते हैं।
1: बिल्कुल, यही कशिश अब बात आती है कि बच्चों को प्लीज बोलना कैसे सिखाएं। तो साथियों, जब बच्चा कुछ मांगता है तो वह अक्सर सीधे बोल देता है मुझे ये चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: यहाँ से हमें शुरुआत करनी होती है। इसके लिए हमें करना ये है कि बच्चों को प्यार से समझाना है कि प्लीज जोड़ने से बात और भी प्यारी लगती है।
0: जी हाँ,
1: खुद उदाहरण बने। जब आप बच्चों से कुछ कहें तो प्लीज का प्रयोग करें। उसे सिखाएं कि किसी से मदद मांगते समय विनम्र होना जरूरी होता है।
0: बिल्कुल,
1: उदाहरण भी हम दे सकते हैं, मम्मी पानी दो, मम्मी प्लीज पानी दे दीजिए। साथियों, ये जो सारी चीजें हैं वो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि किसी ने क्या खूबी कहा है कि विनम्रता वह चाबी है जो हर चीज का दरवाजा खोल देती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। यही अब बात करते हैं सॉरी बोलने की आदत की। तो देखते हैं अंजलि जी कि आजकल बच्चे गलती करने के बाद भी सॉरी बोलने से बचते हैं, लेकिन ऐसे में माता पिता को उन्हें ये समझाना जरूरी हो जाता है कि गलती मानना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत होती है।
1: बिल्कुल,
0: तो ऐसे में दोस्तों जब बच्चा गलती करे तो उसे डांटने के बजाय आप उसे समझाएं और उसे महसूस कराएं कि सॉरी बोलने से रिश्ते मजबूत होते हैं।
1: जी हाँ,
0: साथ ही अगर आपकी भी गलती अगर हो तो खुद भी अपनी गलती पर बच्चे से सॉरी बोलें श्रोता साथियों, क्योंकि हम देखते हैं अंजलि जी कि सॉरी सिर्फ शब्द नहीं होता बल्कि सच्चाई होती है। दोस्तों देखते हैं कि माफी मांगना झुकना नहीं होता बल्कि रिश्तों को बचाना होता है अंजलि जी। तो ऐसे में सॉरी बोलने की आदत हमारे बच्चों को सिखाना एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। अब बात आती है थैंक यू कहना क्यों जरूरी है। तो साथियों, कृतज्ञता जीवन को सुंदर बनाती है।
0: बिल्कुल,
1: जब बच्चा थैंक यू कहना सीखता है कशिश, तो वह हर छोटी चीज की कद्र करना भी सीखता है। अगर थैंक यू बोलना हम कैसे सिखाएं बच्चों को, तो साथियों जब कोई बच्चे की मदद करे तो उसे थैंक यू बोलने के लिए प्रेरित करें। घर में ऐसा माहौल बनाए जहाँ हर कोई एक दूसरे का ध्यान रखता हो। बच्चे को सिखाएं कि धन्यवाद सिर्फ बड़े काम के लिए नहीं बल्कि छोटी छोटी मदद के लिए भी कहा जाता है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि श्रोता साथियों, कृतज्ञता वह फूल है जो हर दिल में खुशबू भर देती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बात कर ही रहे हैं कि हम अपने बच्चों को सॉरी, थैंक यू और प्लीज कहना कैसे सिखा सकते हैं, तो ये बातें हम आगे भी करेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और गीत के साथ में।
1: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जान ही लिया, अब बात करते हैं कि ये तीनों जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हम हमारे बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो साथियों, इसके लिए हमें उदाहरण बनना होगा। बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं। अगर माता पिता कशिश खुद भी प्लीज, सॉरी और थैंक यू का प्रयोग करें तो बच्चा भी वही सीखेगा।
1: बिल्कुल।
0: इन शब्दों को लेकर सिखाएं नहीं, बल्कि रोज की आदत बना दें। जब बच्चा सही आदतों का इस्तेमाल करे तो उसकी तारीफ करें, इससे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। बच्चों को कहानियों के माध्यम से समझाएं कि अच्छे व्यवहार का क्या महत्व है। हर बच्चा अलग होता है, उसे सीखने में समय लगेगा, इसके लिए हमें धैर्य भी बनाकर रखना है। कह सकते हैं साथियों कि जब बच्चे प्लीज, सॉरी और थैंक यू जैसे शब्द सीखते हैं तो वे एक अच्छे नागरिक बनते हैं। समाज में शांति, सम्मान और प्यार भी बढ़ता है। छोटे शब्द बड़े बदलाव लाते हैं साथियों।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। अब यहीं अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्लीज, सॉरी और थैंक यू जैसे छोटे छोटे शब्द जो हैं वो बच्चों के जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि दोस्तों, ये केवल बोलने के लिए शब्द नहीं है, बल्कि एक अच्छे व्यक्तित्व, एक अच्छा संस्कार और मजबूत रिश्तों की पहचान माने जाते हैं। देखते हैं अंजलि जी की जब बच्चा प्लीज बोलना सीखता है तो उसमें विनम्रता आती है, और जब सॉरी बोलता है तो उसे अपनी गलतियों को स्वीकार करना सिखाया जाता है। साथ ही थैंक यू शब्द से उसके अंदर कृतज्ञता के भाव आते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि बचपन में डाली गई ये आदतें जीवन भर साथ रहती हैं बच्चों के। इसलिए माता पिता और शिक्षकों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को इन शब्दों का सही अर्थ और सही उपयोग करना सिखाएं।
0: जी हाँ।
1: क्योंकि दोस्तों, ये केवल समझाने से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से सिखाया जा सकता है। जैसा कि हमने हमारे साथियों को पहले भी बताया अंजलि जी, कि बच्चे वही सीखते हैं जो वे देखते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, आज के समय में जहां लोग तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और व्यवहार में कठोरता बढ़ती जा रही है, ऐसे में इन छोटे छोटे शब्दों की अहमियत और भी बढ़ जाती है।
1: बिल्कुल।
0: ये शब्द रिश्तों में मिठास खोलते हैं, लोगों के बीच सम्मान बढ़ाते हैं और समाज को बेहतर बनाते हैं। यदि हर बच्चा बचपन से ही इन आदतों को अपनी आदत बना ले तो आने वाला समाज अधिक सभ्य, संवेदनशील और सकारात्मक होगा।
1: बिल्कुल।
0: साथियों, एक ऐसा समाज जहां लोग एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे, सम्मान देंगे और प्रेम से रहेंगे।
1: बिल्कुल।
0: संस्कारों की शुरुआत छोटी आदतों से होती है, और वही आदतें कशिश आगे चलकर महान व्यक्तित्व का निर्माण करती है। जब शब्द मीठे होते हैं तो रिश्ते अपने आप मजबूत हो जाते हैं। श्रोता साथियों
1: जी, बिल्कुल,
0: आइए हम सभी को मिलकर बच्चों को सिर्फ ज्ञान ही नहीं बल्कि अच्छे व्यवहार और अच्छे शब्दों की ताकत भी सिखानी है, ताकि वे एक अच्छे इंसान बनकर समाज में नई दिशा दे सके।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो ऐसे में कार्यक्रम के माध्यम ये कहा जा सकता है कि जब एक बच्चा प्लीज कहना सीखता है साथियों, तो वह दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना भी समझता है, और जब वह सॉरी कहता है तो वह ये सीखता है कि गलती करना गलत नहीं है बल्कि उसे स्वीकार करना सही बात है। हम देखते हैं श्रोता साथियों कि वही जब बच्चा थैंक यू बोलता है तो उसे जीवन में मिलने वाली हर छोटी बड़ी मदद की कद्र करना वह सीख जाता है।
0: जी जी।
1: इस प्रकार से अंजलि जी, ये तीनों शब्द मिलकर बच्चे को एक अच्छा इंसान बनने के लिए दिशा में आगे बढ़ाते हैं। लेकिन हम देखें दोस्तों, तो ये भी सच है कि आज के व्यस्त और प्रतिस्पर्धात्मक जीवन में लोग अक्सर शिष्टाचार को नजरअंदाज कर देते हैं।
0: जी जी।
1: ऐसे समय में यदि बच्चों को शुरू से ही हम इन शब्दों की आदत डलवा दें, तो वे न केवल अपने परिवार में बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: दोस्तों, उनके व्यवहार में मिठास होगी इससे, और उनके रिश्तों में मजबूती आएगी। साथ ही वे हर परिस्थिति में संतुलित, समझदार और कह सकते हैं कि सभ्य बन पाएंगे।
0: बिल्कुल। तो साथियों, अच्छे शब्दों की ताकत तलवार से भी ज्यादा होती है, क्योंकि ये दिलों को जीत लेती है। जहाँ व्यवहार में मिठास होती है वहाँ रिश्तों में हमेशा उजाला बना रहता है।
1: जी हाँ।
0: तो कशिश, इस तरीके से कार्यक्रम में हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि प्लीज, सॉरी और थैंक यू जैसे छोटे शब्द बच्चों के जीवन में कितने बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक अच्छा इंसान बने तो हमें सिर्फ उसे पढ़ाना नहीं है बल्कि अच्छे संस्कार भी सिखाने हैं।
1: जी हाँ।
0: तो बातें कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से ढेर सारी हो गई है, और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल अंजलि जी।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाघ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाघधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vaghdara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। नमस्कार।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात में शुरुआत पानी तक ही करो, थोड़ू सी व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पता है लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
4: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: थारी में पासो लावो चूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारतेनु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: અંજલિ બોન, ગીત તો અહીં પૂરું અને ગીતને બાદ એક વખત ફરી આપણે કિસાન ભાઈ બહેનોનું આપણે સ્વાગત કરવા આપણે આજને કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જેમ કે ગીત કે પહેલે આપણે વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાત કરવા રહ ધાનની ખેતીને બારે મેં, કે ધાનની ખેતી હરતે કરવી જોઈએ અને ધાનની ખેતી આપણે બોલે હરતે મહત્વપૂર્ણ હે. તો આના વિશેની જાણકારી અલવા બોલે આજે આપણે સ્ટુડિયોમાં વિશે વિશેષજ્ઞ આવ્યા હે, જે કે જેનું નામ હે પટેલ સર. તો એ આપણે બતાડેંગા ધાનની ખેતીને બારે મેં. તો પહેલે હાંભળી લાણાની વાત મારે કરા આપણી વાત એમ.
1: હવે સર નમસ્કાર.
2: નમસ્કાર
1: સર, આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં.
2: ધન્યવાદ
1: સર. જૈસા કે આજ આપ હમારે કાર્યક્રમ સે જુડ રહે હૈ ઓર આજ હમારી કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ ધાન કી ખેતી કે મહત્વ કો લેકર. હમ દેખતે હૈ કે ધાન કી ખેતી કરના હમારે લિયે બહોત ઝ્યાદા મહત્વપૂર્ણ હૈ. એસે મેં સબસે પહેલે બાત આતી હૈ કે હમારે જો કિસાન ભાઈ બહેન હૈ વો ભૂમિ કા ચયન ઓર ઉસકી તૈયારી કૈસે કરે.
2: બિલકુલ, જૈસે અપન કો ધાન કી ખેતી કરની હૈ તો ઇસમે खेत की तैयारी तो करना ही है.
1: बिल्कुल,
2: खेत गर्मी के अंदर अच्छी तरह से उसको हकाई कर देनी है, क्योंकि धान की खेती है अच्छी जल धारण क्षमता वाली चिकनी खेत के अंदर, मतलब चिकनी मिट्टी जो होती है, चिकनी मिट्टी के अंदर ही ये धान की खेती होती है, क्योंकि उसके अंदर जल टिक रहना चाहिए, मतलब जल का भराव क्षमता रहना चाहिए, तब जाके वो धान की खेती होती है.
1: बिल्कुल सर.
2: तो उसके लिए खेत की तैयारी पहले कर देनी चाहिए. खेत की पूर्व तैयारी करने के बाद बारिश का पानी ज्यादा से ज्यादा अपने खेत में रहे, ऐसी व्यवस्था करना बहुत जरूरी है.
1: जी हाँ.
2: और धान की खेती दो प्रकार से होती है.
1: बिल्कुल.
2: एक उसका, एक तो नर्सरी करके, नर्सरी करके रोप लगाते हैं, दूसरी सीधी बुवाई करते हैं.
1: बिल्कुल सर.
2: तो दो प्रकार की खेती, धान की खेती दो प्रकार की होती है.
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा. तो यही अब मैं जानना चाहूंगी कि बीज का चुनाव और उपचार कैसे करना है, और साथ ही अगर ये बुवाई दो तरीके की होती है तो दोनों क्या ऐसे तरीके हैं जो हमारे भाई बहनों को ध्यान में होने चाहिए.
2: बिल्कुल, एक तो अपन खेत की तैयारी अपन करते हैं, अच्छी तरह से खेत को तैयार कर दिया.
1: बिल्कुल.
2: अब जैसे अपन को रोपाई करनी है, तो जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन से खेत के अंदर किस टाइप का धान अच्छा होता है.
1: बिल्कुल,
2: वो किसान को खुद को पता है, है ना. ऐसी जगह पर अपन को खेत की नर्सरी करना बहुत जरूरी है. यदि अपन को 25 जून जुलाई के अंदर, मतलब 25 जून में बारिश आती है या जुलाई के अंदर धान की रोपाई करनी है, तो अभी अपन को उसकी नर्सरी करना बहुत
1: जरूरी है. बिल्कुल.
2: तो जैसे अपन को बीज लिया, अब धान की नर्सरी अपन करेंगे तो जैसे बीज लेते हैं, तो बीज के अंदर कमजोर बीज, अच्छा बीज, सब कुछ बीज होता है.
1: बिल्कुल.
2: तो उस बीज को अपन को बीज उपचार करना बहुत जरूरी है. बीज उपचार करके ही अपन को नर्सरी करें.
1: जी हाँ.
2: तो अच्छी उत्पादन मिलने की क्षमता रहती है. अपन सीधी बुवाई करेंगे तो भी बीज उपचार करना बहुत जरूरी है.
1: जी हाँ.
2: और बीज उपचार एकदम आसान तरीका है. धान के अंदर आसान तरीका इसीलिए बता रहा हूँ कि अपन जो जो धान अपने को बुवाई करनी है या नर्सरी तैयार करनी है, उसको पानी के अंदर डाल दिया अपन ने, तो जो हल्का बीज होगा वो ऊपर तर के बाहर आ जाएगा.
1: बिल्कुल.
2: इसके बावजूद भी हल्का बीज इसके अंदर रहता है, तो इसके अंदर आलू डाल दो, आलू हमेशा पानी में डूब जाता है.
1: बिल्कुल.
2: लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हिलाया करो, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हिलाया करो, नमक डालते जाओ पानी हिलाया करो, नमक डालते जाओ पानी हिलाया करो, तो थोड़ी देर में अपने आप आलू ऊपर आ जाएंगे. तो आलू जैसे ऊपर आ जाएंगे तो इसके साथ साथ हल्का बीज भी ऊपर आ जाएगा. तो ये स्थिति में जो हल्के बीज है वापस आप निकाल दो, और नीचे जो बैठे हुए बीज है वो निकाल के उसका नर्सरी तैयार कर दीजिए. अब नर्सरी कैसे करनी है सब किसान भाई जानते हैं कि जमीन लेवल से आधा फीट 6 इंच ऊपर मिट्टी का गादी क्यारा तैयार करके इसके अंदर बेड बना के आपको नर्सरी
1: तैयार
2: करनी है, तैयार करनी है. इसके बाद जब बारिश अच्छी आती है और 6 इंच का अपना रोप तैयार हो गया, 1 फीट का रोप तैयार हो गया, तो उसके बाद अपन को सीधा खेत के अंदर
1: बुआई
2: कर देनी है. और इस तरह आप जो नर्सरी यानी रोप जो करते हैं, रोप से आप कर सकते हैं. लेकिन यदि आप सीधी धान की बुआई करते हैं, तो खेत को तो अपन को गर्मी में तैयार कर देते हैं.
1: जी जी.
2: और बहुत सारा धान अलग अलग, मतलब कोई कम नमी वाला कम पानी में भी धान हो जाता है, कोई ज्यादा पानी में भी धान होता है. तो अलग अलग धान का प्रकार है. यहाँ अपने एरिया में बहुत सारा 7-8 प्रकार की वैरायटी है धान की. इसमें का एक पाथरिया भी है.
1: बिल्कुल.
2: जो पाथरिया वैरायटी है वो एकदम पहाड़ी एरिया में सूखे में होता है, जिसको पानी की जरूरत ही नहीं है, वो डायरेक्ट बारिश आती है और किसान बुआई करता है. तो इस प्रकार का भी धान है. तो अपन को जहाँ जैसे पानी की नमी वाला जो खेत है उसके अंदर यदि सीधी बुआई करते हैं तो जैसे मैंने बताया ऐसा उपचार करके आप सीधी बुआई अंदर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन जितने कम मात्रा में यदि धान की खेती में बीज डालेंगे इतनी इसकी ग्रोथ ज्यादा होती है, इतनी जड़ उसके अंदर ज्यादा जाती है और अच्छी पैदावार देती है।
1: बिल्कुल।
2: तो ये किसान भाई को बहुत ध्यान रखना जरूरी है। रही बात अपन खाद की, तो खाद अपन को समय समय पर बहुत डालना बहुत जरूरी है। खेत अपन जो तैयार करते हैं उसके पहले ही अपन को देसी खाद इसके अंदर डाल देना चाहिए, जिसकी वजह से अपन को अच्छी उत्पादन मिलता रहे।
1: बिल्कुल सर।
2: तो अपन जैसे खाद एक एकड़ के अंदर कम से कम 8 से 10 टन अपन को देसी खाद डालना चाहिए और इसके अंदर किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं लगे या किसी भी प्रकार का खरपतवार नहीं हो, उसके लिए अपन को खरपतवार निकालना भी जरूरी है।
1: बिल्कुल।
2: और साथ साथ में उसके अंदर अपन को जैसे अच्छी पैदावार के लिए आप रेगुलर पानी को भी, जैसे पानी की कमी हो गई, बारिश नहीं आई, तो अपना इरिगेशन का पानी भी अंदर देना बहुत जरूरी है, तब जाके अच्छी पैदावार आप ले सकते हैं। तो धान की खेती में नमी रखना बहुत जरूरी, तब जाकर उत्पादन हो सकता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा सर। जैसा कि आपने बताया कि धान की खेती में भूमि की तैयारी कैसे करनी है, खाद का कैसे ध्यान रखना है, साथ ही आपने बताया कि सीधी बुवाई धान की कैसे करनी है और रोपाई के माध्यम से हम कैसे करते हैं, तो सर दोनों में से कौन सी चीज ज्यादा फायदेमंद है हमारे किसान भाई बहनों के लिए?
2: देखो, नर्सरी करके वो जो बुवाई करेंगे वो काफी फायदेमंद है।
1: बिल्कुल।
2: इसीलिए कि एक तो इसके अंदर बीज की मात्रा बहुत कम लगती है, दूसरी चीज कि जब वो बुवाई करेंगे तो निश्चित मात्रा में करते हैं बुवाई, इसीलिए उसकी जो जड़ है वो गहराई में जाती है और अच्छा उत्पादन देती है, और उसका जो दाना है, उसका जो धान है, वो क्वालिटी अच्छी निकलती है और उसकी क्वांटिटी क्वालिटी दोनों अच्छा निकलता है, उत्पादन भी अच्छा आता है और गुणवत्ता भी उसकी अच्छी रहती है।
1: जी जी।
2: तो अपन को इस तरह से जो नर्सरी तैयार करके रुपाई करेंगे तो बहुत अच्छा किसान फायदेमंद रहेंगे।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। यही अब मैं जानना चाहूंगी कि धान की खेती में कीटों का प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण उन्हें कैसे करने की जरूरत है?
2: खरपतवार तो देखो अपन को करना, अंदर हल चलाना जरूरी है, अपन ने लाइन टू लाइन बुआई की है, एक तो वो करेंगे किसान, हाथ से भी खरपतवार अंदर निकाल देना है, और किसी बीमारी लगी तो अपन को जैसे बताया कि निमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, इस प्रकार का प्रयोग करके अपन को इसका छिड़काव करेंगे तो भी वो बीमारी खत्म हो जाती है। तो अपन को इस तरह का प्रयोग, जैविक दवाई का प्रयोग करके अपन को खरपतवार जो बीमारी लगती है उसका प्रयोग करना चाहिए, और खरपतवार अपन को हाथ से निकालेंगे तभी जाके उसका अच्छी लाभ किसान ले सकता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने बताया कि खरपतवार का नियंत्रण करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं कि खरपतवार की वजह से बहुत सी बार हमारी फसलों पर कीटों का प्रकोप भी हो जाता है, और साथ ही हम जो पोषण हमारी मिट्टी को, हमारे पेड़ पौधों को देना चाहते हैं वो खरपतवार सोख लेते हैं। तो ऐसे में हमारे किसान भाई बहनों को खेती करते समय विशेष तौर पर खरपतवार नियंत्रण की बातों पर ध्यान देना है। तो सर, जैसा कि बातें बहुत अच्छी चल रही है, क्या कोई विशेष ऐसी सावधानियां है जो हमारे भाई बहनों को इसमें ध्यान रखने की जरूरत है?
2: बिल्कुल, महत्वपूर्ण बातें धान की खेती में ऐसी है कि अपन को समय समय पर उसको, जैसे समय समय पर खाद देंगे, कोई बीमारी आती है तो बीमारी नष्ट के लिए बराबर है उसका उपचार करेंगे, और बीच में खाद की मात्रा भी यदि अपन ने दे दी, वर्मी कम्पोस्ट दे दिया अपन ने, जीवामृत अंदर दे दिया, और जैसे एक सरल विधि में बताऊं कि जैसे कंडे होते हैं, कंडे के भिगो करके उसका पानी भी इसके अंदर अपन देंगे तो भी अच्छी उत्पादन, अच्छी फ्लावरिंग आने की क्षमता रहती है, उसके अंदर काफी अच्छे हॉर्मोन्स रहते हैं, तो ये भी खाद की एक मात्रा है, उसको भी दे सकते हैं। तो समय समय पर यदि अपन ने धान की खेती की जो ध्यान रखा तो किसान भाई अच्छी तरह से आमदनी बिल्कुल ले सकता है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो सर, जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से आपने हमें ढेर सारी बातों से अवगत करवाया है, आपका धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जागृति बुन सीम के अवड़े अपने वैसमी पटेल सर जुड़े तक हता ने एने अपना ने घनी असल तरीका थी कि बताड़ियो है कि धान की खेती बल्ले अपना ने भूमि हरते तैयार करवी है, बीजों नु चयन हरते करवो है, ने एने साथे एने ई भी बताड़ियो कि धान की खेती बे प्रकार नी थाय है, तो कया प्रकार नी खेती अपने बल्ले फायदेमंद है, कई कई वातों अपने ने ध्यान राखवू है, ई हंगरी बातें एने अपना ने कार्यक्रम ने माध्यम तक ही बताड़ी है। आशा कर रहा हूँ कि हंगरी बातें अपने भाई बहनों ने गम्मी होंगा, क्योंकि अभी टाइम थी गयो है अपने अनस कार्यक्रम तक ही सूटा पड़वा, तो सूटा तो पड़ो पर जाते पहले हमरी लाइक और कितने मोरे पड़ो सूटा
0: हो गए।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग अपना ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भयन बोनू, आ लक्षण आपड़ने आपड़े मई देखाय तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
4: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है?
7: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
6: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
7: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ू जीवन है।
6: होवे जागृति बूंद, हर बूंद में आपड़ू जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
7: होवे अंजलि बूंद, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ू ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
6: होवे होवे जागृति बूंद, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई ने बोलो घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोर ने मुस्कान। होवे इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से हमारी बातचीत रहने वाली है पर्यटन और तीर्थ यात्रा की भीड़ से करा रहे हैं पहाड़। श्रोताओं, पहाड़ जिन्हें हम प्रकृति का मुकुट कहते हैं, जहाँ की हवा में ताजगी होती है, नदियों में जीवन होता है और जंगलों में सुकून। लेकिन अंजलि, आज वही पहाड़ मानो हमसे कह रहे हैं, हमें देखने आओ लेकिन हमें तोड़ने मत आओ।
0: बिल्कुल। तो जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें बनी रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे साथियों को सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय से अवगत करवाया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है पर्यटन और तीर्थ यात्रा की भीड़ से करा रहे हैं पहाड़।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि पहाड़ सिर्फ चट्टाने नहीं है, वे नदियों के जन्मदाता है।
0: बिल्कुल,
1: वे जंगलों के रक्षक हैं और वे लाखों लोगों की आजीविका का आधार भी है। हम देखते हैं कि मैदानों में बैठकर जिस पानी को हम पीते हैं उसका बड़ा हिस्सा पहाड़ों से ही आता है।
0: बिल्कुल,
1: जिस स्वच्छ हवा की हम बात करते हैं उसकी रक्षा में पहाड़ों का बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन जागृति जी, जब लाखों लोग एक साथ सीमित स्थानों पर पहुँचते हैं तब पहाड़ों की क्षमता पर भारी दबाव पड़ता है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि हम जानते हैं कि लोग घूमने और भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं, लेकिन सोचिए श्रोता साथियों, अगर एक छोटे से गांव में 10,000 लोगों की व्यवस्था हो और अचानक 1,00,000 लोग पहुंच जाए तो क्या होगा? सड़कें जाम हो जाएंगी, कचरा बढ़ जाएगा, पानी की कमी होगी और प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव पड़ेगा। और यही स्थिति जागृति जी कई पहाड़ी क्षेत्रों की होती है।
0: बिल्कुल अंजलि, पर्यटन और तीर्थ यात्रा हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: बिल्कुल,
0: लोग प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए पहाड़ों की ओर आते हैं। श्रद्धालु अपनी आस्था व्यक्त करने के लिए तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब ये यात्रा प्रकृति की सीमाओं को भूलकर केवल भीड़ और उपभोग का माध्यम बन जाती है। आज हम देखते हैं कि कई प्रसिद्ध पहाड़ी क्षेत्रों में एक साथ इतनी अधिक संख्या में लोग पहुंच रहे हैं कि वहां की प्राकृतिक व्यवस्था भी चरमरा रही है।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि पहाड़ों का अपना एक प्राकृतिक संतुलन होता है।
0: बिल्कुल,
1: वहां की मिट्टी नाजुक होती है, ढलानें संवेदनशील होती है, जंगलों का महत्व बहुत अधिक होता है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन जागृति जी, जब बड़ी संख्या में होटल, पार्किंग, सड़कें और निर्माण कार्य होने लगते हैं तो ये संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: कई स्थानों पर पहाड़ काटे जा रहे हैं और पेड़ हटाए जा रहे हैं। नतीजा ये होता है श्रोता साथियों कि भूस्खलन, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाएं बढ़ रही है। हम देखते हैं जागृति जी कि पहले तीर्थ यात्रा का अर्थ होता था सादगी, अनुशासन और प्रकृति के प्रति सम्मान और आत्मिक शांति। आज कई जगह तीर्थ यात्रा भीड़ और प्रदर्शन का रूप लेती जा रही है।
0: बिल्कुल,
1: जहाँ श्रद्धा होनी चाहिए वहाँ जल्दबाजी दिखाई देती है, जहाँ संयम होना चाहिए वहाँ अव्यवस्था दिखाई देती है। भगवान के दर्शन करने जाते समय हम भगवान की बनाई प्रकृति को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। क्या श्रोता साथियों ये सही है? हमें सोचने की जरूरत है कि ये सारी चीजें हमारे लिए सही नहीं है।
0: बिल्कुल अंजलि, जैसे कि तीर्थ यात्रा के क्षेत्र में ये भी स्थिति देखने को मिल रही है कि पहले तीर्थ यात्रा का अर्थ था संयम, सादगी और प्रकृति के प्रति सम्मान। लोग कठिन रास्तों पर चलकर यात्रा करते थे और यात्रा को आत्मिक साधना का माध्यम मानते थे।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कई स्थानों पर तीर्थ यात्रा भीड़ और सुविधाओं की होड़ में बदलती जा रही है। श्रद्धाओं की बढ़ती संख्या के कारण पहाड़ों पर भारी दबाव पड़ रहे हैं। आस्था का सम्मान आवश्यक है श्रोताओं, लेकिन आस्था के नाम पर प्रकृति को नुकसान पहुंचाना उचित नहीं कहा जा सकता। पर्यटन का एक सकारात्मक पक्ष ये भी है कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार जरूर मिलता है।
1: बिल्कुल,
0: छोटे व्यवसाय को बढ़ावा मिलता है और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। लेकिन यदि पर्यटन अनियंत्रित हो जाएंगे तो उसके लाभ भी कम और नुकसान ज्यादा होने लगते हैं।
1: जी जी,
0: इसलिए आवश्यकता इस बात की है श्रोता साथियों कि पर्यटन विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाया जाए। एक ऐसा विकास ही वास्तव में टिकाऊ और भविष्य के लिए उपयोगी होगा।
1: बिल्कुल जागृति जी, जैसा कि हमने पहले जाना था कि भगवान के दर्शन करने जाते समय हम भगवान की बनाई प्रकृति को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: तो श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि इसका असर स्थानीय लोगों पर भी पड़ता है। हम जानते हैं कि इससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है, ये सकारात्मक पक्ष है। लेकिन दूसरी तरफ जागृति जी, पानी की कमी, कचरे का बढ़ना, महंगाई और पर्यावरणीय समस्याएं भी बढ़ती हैं। जब पर्यटन संतुलित नहीं होता है तब लाभ से अधिक नुकसान होने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे जागृति जी कार्यक्रम के माध्यम से कि आज कई प्रसिद्ध पर्यटन और तीर्थ स्थलों पर प्लास्टिक की बोतलें, खाने के पैकेट और अन्य कचरा बड़ी समस्या बन चुके हैं। सोचिए दोस्तों कि जिस स्थान पर लोग शांति और सुंदरता देखने जाते हैं वही कूड़े के ढेर दिखाई दे तो कैसा लगेगा? कचरा केवल सुंदरता नहीं बिगाड़ता, यह मिट्टी, जल और वन्य जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है।
0: बिल्कुल,
1: कई जानवर प्लास्टिक खाकर बीमार पड़ जाते हैं और नदियां दूषित हो जाती हैं।
0: जी हाँ अंजलि, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें चल रही है, हम जान रहे हैं पर्यटन और तीर्थ यात्रा की भीड़ से करा रहे हैं पहाड़ को लेकर, तो बातें ऐसे ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, इसी के साथ जागृति जी, अब हम बात करें वाहनों की बढ़ती संख्या पर। तो हम देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है।
1: बिल्कुल,
0: लंबे ट्रैफिक जाम अब आम बात हो गए हैं। घंटों तक खड़े वाहन प्रदूषण बढ़ाते हैं, शोर बढ़ाते हैं और पहाड़ों की शांति प्रभावित करते हैं। जिस सुकून की तलाश में लोग पहाड़ों पर आते हैं, उसे सुकून को वे अनजाने में खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब जागृति जी ये नहीं है कि लोग आनंद करना बंद कर दें। इसका समाधान ये है कि हमें जिम्मेदार यात्रा करनी चाहिए।
1: जी हाँ अंजलि, इसी के साथ हम हमारे श्रोता साथियों को ये कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि श्रोताओं, आज समय की मांग है कि हम जिम्मेदार पर्यटन की अवधारणा को अपनाएं। जिम्मेदार पर्यटन का अर्थ है कि हम किसी भी स्थान की यात्रा करते समय उसके पर्यावरण, संस्कृति और संसाधनों का सम्मान करें। हमें कचरा नहीं फैलाना है, प्लास्टिक का उपयोग कम करना है, जल और ऊर्जा की बचत करनी है, स्थानीय परंपराओं का सम्मान करना है।
0: बिल्कुल,
1: एक जिम्मेदार पर्यटक केवल दर्शक नहीं होता बल्कि प्रकृति का संरक्षक भी होता है। इसमें युवाओं की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है अंजलि। युवा समाज को नई दिशा देने की क्षमता रखते हैं। अगर युवा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक होंगे तो वे दूसरों को भी प्रेरित कर सकेंगे। सोशल मीडिया पर केवल सुंदर तस्वीरें साझा करने के बजाय प्रकृति संरक्षण का संदेश देना भी बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: आज का युवा यदि प्रकृति का मित्र बन जाए अंजलि, तो कल का भारत अधिक सुरक्षित और सुंदर बन सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, श्रोता साथियों से कहना चाहेंगे कि उन्हें याद रखना है कि हम पर्यटन नहीं प्रकृति के मेहमान हैं, और अच्छे मेहमान कभी भी घर को नुकसान नहीं पहुंचाते।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम यात्रा के दौरान किस तरह वहां की जगहों को साफ रखें। इसी के साथ सरकार, प्रशासन और समाज को भी मिलकर काम करना होगा। यात्रियों की संख्या का वैज्ञानिक प्रबंधन करना होगा, मजबूत लेकिन पर्यावरण अनुकूल ढांचा विकसित करना होगा, कचरा प्रबंधन की जागृति जी बेहतर व्यवस्था बनानी होगी, पर्यावरणीय नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। युवा केवल दर्शक नहीं है, वे परिवर्तन के वाहक भी है। यदि युवा जागरूक होंगे तो समाज जागरूक होगा, और अगर युवा जिम्मेदार पर्यटन को अपनाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां भी इसी को अपना पाएंगी।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि आज का जो विषय है केवल पहाड़ों का नहीं है बल्कि हमारे भविष्य का भी विषय है। श्रोताओं, सवाल ये नहीं है कि हर साल कितने लोग पहाड़ों पर घूमने या तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: असली सवाल तो ये है कि हम अपने पीछे क्या छोड़कर आ रहे हैं, प्रकृति के प्रति सम्मान या प्रदूषण का बोझ। याद रखिए, पहाड़ कभी शिकायत नहीं करते, वे चुपचाप हमें पानी देते हैं, शुद्ध हवा देते हैं अंजलि, हरियाली देते हैं और जीवन देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जब नदियां मेली होने लगे, जब जंगल कम होने लगे, जब भूसंकलन और बाढ़ जैसी घटनाएं बढ़ने लगेगी, तब समझ लेना चाहिए कि प्रकृति हमें चेतावनी दे रही है।
0: बिल्कुल,
1: हमें ये नहीं भूलना होगा श्रोताओं कि पहाड़ केवल आज की पीढ़ी के लिए नहीं बने, इन पर उतना ही अधिकार हमारे बच्चों और आने वाली पीढ़ियों का भी है। यदि हम आज स्वार्थ में आकर पहाड़ों को नुकसान पहुंचाएंगे तो कल हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि आखिर हमने उनके हिस्से की प्रकृति क्यों छीन ली।
0: बिल्कुल जागृति जी, आज हमें सोशल मीडिया पर केवल सुंदर तस्वीरें साझा करना ही पर्याप्त नहीं है, जरूरी है कि हम प्रकृति संरक्षण का संदेश फैलाएं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, प्रकृति बहुत सहनशील है, वो हमें पानी देती है, हवा देती है, जंगल देती है, जीवन देती है, लेकिन उसका धैर्य असीम नहीं है। जब हम उसकी सीमाओं को बार बार चुनौती देते हैं तो वो हमें चेतावनी देती है, कभी भूस्खलन के रूप में तो कभी बाढ़ के रूप में तो कभी सूखे के रूप में।
1: बिल्कुल,
0: इन संकेतों को समझना होगा हमें। पहाड़ हमें बुलाते हैं, उनकी सुंदरता हमें आकर्षित करती है, उनकी नदियां हमें जीवन देती है जागृति जी, उनके जंगल हमें सांस देते हैं, लेकिन आज पहाड़ हमसे एक विनती कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि आओ हमारा आनंद लो, आओ हमारी गोदी में सुकून खोजो, आओ अपनी आस्था व्यक्त करो, लेकिन हमें घायल मत करो।
1: बिल्कुल अंजलि, सच्चा यात्री वही है जो किसी स्थान से केवल यादें लेकर लौटे और अपने पीछे केवल अच्छे पद चिन्ह छोड़ कर आए।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, सच्चा श्रद्धालु वही है जो मंदिर में भगवान के दर्शन करने के साथ भगवान की बनाई प्रकृति का भी सम्मान करे, क्योंकि प्रकृति की रक्षा करना भी एक प्रकार की पूजा है।
0: बिल्कुल,
1: और पर्यावरण की सेवा करना भी एक प्रकार की तीर्थ यात्रा है। आज आवश्यकता इस बात की श्रोताओं कि हम अपनी सोच बदले, पर्यटन को केवल मनोरंजन न समझे और तीर्थ यात्रा को केवल यात्रा न माने।
0: बिल्कुल,
1: इन्हें प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी और संवेदनशीलता से जोड़े। जब भी पहाड़ों पर जाएं, ये संकल्प लेकर जाएं कि वहां की सुंदरता को बढ़ाएंगे, घटाएंगे नहीं। हम स्वच्छता फैलाएंगे, गंदगी नहीं, हम संरक्षण करेंगे, विनाश नहीं। श्रोताओं, इतिहास गवाह है कि जब जब युवाओं ने कोई संकल्प लिया है तब तब समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन भी आया है।
0: बिल्कुल,
1: आज का युवा प्रकृति संरक्षण को अपना मिशन बना ले अंजलि, तो आने वाले वर्षों में पहाड़ फिर से मुस्कुराने लगेंगे, नदियां फिर से निर्मल बहेंगी और जंगल फिर से जीवन से भर उठेंगे।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए हम सब मिलकर ऐसा भारत बनाने का संकल्प ले जहां विकास भी हो, प्रकृति भी सुरक्षित रहे, जहां तीर्थ यात्रा भी हो और पर्यावरण का सम्मान भी, जहाँ पर्यटन भी हो और पहाड़ों की आत्मा भी जीवित रहे।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि पहाड़ बचेंगे तो नदियाँ बचेंगी, नदियाँ बचेंगी तो खेत बचेंगे तो जीवन बचेगा, और जब जीवन बचेगा तो हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ श्रोता साथियों याद रखिए कि पर्यटन का उद्देश्य केवल यात्रा नहीं प्रकृति से जुड़ना भी है।
1: बिल्कुल,
0: अगर आज हमने पहाड़ों की रक्षा नहीं की तो कल आने वाली पीढ़ियां केवल तस्वीरों में ही उनकी सुंदरता देखेगी।
1: जी हाँ, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से बहुत सारी बातें कर चुके हैं और अब समय का मान रखते हुए आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे, पर जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की जो भी बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है। बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक किस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर। हिंडो स्कूल जा, अपने अपना भी अपना पूरा करो। याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है। होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा। शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे, कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
4: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
2: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर घर हर रसोई और हर परिवार से जुड़ा हुआ है। हमारा आज का विषय है रसोई में मौजूद हल्दी अदरक और लहसुन को लेकर।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा, क्योंकि हम देखते हैं कि भारतीय रसोई केवल भोजन बनाने का स्थान नहीं है बल्कि ये प्राकृतिक औषधियों का एक भंडार भी है साथियों।
0: जी हाँ,
1: अक्सर हम देखते हैं कि हमारे घरों में उपयोग होने वाले जो अनेक मसाले हैं और जो अनेक खाद्य सामग्रियां हैं वो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होती हैं। लेकिन कई बार इन सभी चीजों की हमें जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण श्रोता साथियों हम इसके लाभों से परिचित नहीं हो पाते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय को लेकर आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, जानेंगे साथियों कि ये जो औषधियां हैं हल्दी अदरक और लहसुन, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे फायदेमंद है और इनके अंदर ऐसे कौन से गुण हैं जो हमारे सेहत को बेहतर बनाते हैं।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल, तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम गीत सुनवा दें।
0: बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: साथियों, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि कशिश और मनीषा हमने श्रोता साथियों को गीत से पहले विषय से रूबरू करा दिया था कि आज हमारी बातचीत रहने वाली है रसोई में मौजूद औषधियां हल्दी अदरक और लहसुन को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: अक्सर हम सोचते हैं श्रोता साथियों कि स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए केवल महंगी दवाइयां और बड़े अस्पतालों की आवश्यकता होती है, लेकिन सच यह है कि हमारे घर की रसोई में ही कई ऐसी चीजें मौजूद हैं जो वर्षों से हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करती आ रही है।
1: जी बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हमारी दादा दादी नाना नानी इन चीजों का महत्व अच्छी तरह से जानते हैं। जब सर्दी होती थी, खांसी होती थी, गला खराब होता था या शरीर में किसी भी प्रकार से कोई कमजोरी होती थी, तब सबसे पहले रसोई में रखी हल्दी अदरक और लहसुन का उपयोग किया जाता था। आज के कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि रसोई और स्वास्थ्य का पुराना रिश्ता क्या था और अभी के समय में उसका महत्व और ज्यादा क्यों बढ़ गया है।
1: जी हाँ दिलीप जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब यहीं अगर भारतीय रसोई और स्वास्थ्य के पुराने रिश्ते को लेकर अगर हम बात करें तो जानते हैं साथियों कि भारतीय संस्कृति में भोजन को केवल पेट भरने का साधन नहीं माना जाता है।
0: जी जी
1: साथियों, हमारे यहाँ भोजन को स्वास्थ्य और जीवन का आधार कहा गया है।
0: बिल्कुल,
1: और इसी कारण से भारतीय रसोई में उपयोग होने वाले मसालों और खाद्य पदार्थों का चयन केवल स्वाद के लिए नहीं बल्कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर भी किया जाता है।
0: जी हाँ,
1: पहले के समय में गाँव में अस्पताल और डॉक्टर आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते थे अंजलि जी। ऐसे में लोग अपने अनुभव और पारंपरिक ज्ञान के आधार पर ही घरेलू उपायों का सहारा लेते थे। साथियों, हल्दी, अदरक और लहसुन ऐसे ही घरेलू उपचारों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। अंजलि जी, आज भले ही चिकित्सा सुविधाएं बढ़ गई हैं, लेकिन इन प्राकृतिक चीजों का महत्व कभी कम नहीं हुआ, बल्कि हम देखते हैं कि लोग फिर से प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रहे हैं।
0: बिल्कुल जी, बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। इसी के साथ अगर हम हल्दी की बात करें तो हम देखते हैं कि भारतीय रसोई की सबसे लोकप्रिय सामग्री का नाम लिया जाए तो वो निश्चित रूप से हल्दी है। लगभग हर सब्जी, दाल और कई व्यंजनों में इसका उपयोग किया जाता है।
1: जी
0: श्रोता साथियों, हल्दी का रंग सुनहरा होता है और यही सुनहरा रंग इसे विशेष पहचान देता है, लेकिन इसकी असली ताकत इसके स्वास्थ्य लाभों में छिपी होती है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि भारत में हल्दी का उपयोग केवल खाने तक सीमित नहीं है, धार्मिक कार्यों, शुभ अवसरों और विवाह समारोह में भी हल्दी का विशेष महत्व है। शादी से पहले होने वाली हल्दी की रस्म हमारे समाज की एक महत्वपूर्ण परंपरा भी रही है अंजलि जी। बिल्कुल मनीषा, अगर यही बात करें सर्दी जुखाम में हल्दी का प्रयोग हम कैसे करते हैं, तो श्रोता साथियों, जब मौसम बदलता है तो कई लोगों को सर्दी जुखाम की समस्या हो जाती है। ऐसे समय में कशिश और मनीषा, गर्म दूध में हल्दी मिलाकर पीने की सलाह दी जाती है।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगी ये घरेलू उपाय वर्षों से प्रचलित है। अगर किसी को हल्की सी चोट लग जाए तो कई घरों में हल्दी का लेप भी लगाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में कशिश और मनीषा, आज भी लोग इस उपाय का उपयोग करते हैं। हल्दी का उपयोग त्वचा की देखभाल के लिए भी किया जाता है और कई घरेलू उपटन फेस पैक में भी हल्दी मिलाई जाती है। यह त्वचा को साफ और चमकदार बनाए रखने में सहायक होता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो ये तो हमने बात की हल्दी की, अब यही अगर श्रोता साथियों दूसरी महत्वपूर्ण औषधि की बात की जाए तो वो है अदरक, जिसे स्वाद और स्वास्थ्य का संगम कहा जाता है। साथियों, अदरक एक ऐसी चीज है जो लगभग हर रसोई में हमें मिल ही जाएगी।
0: जी जी,
1: जी हाँ, चाहे चाय बनानी हो, सब्जी बनानी हो या कोई विशेष व्यंजन तैयार करना हो, साथियों सभी में अदरक का उपयोग करना आम बात है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि अधिकतर लोग अदरक वाली चाय ज्यादा पीना पसंद करते हैं। साथियों, जब भी ठंड का मौसम आता है तो अदरक वाली चाय की मांग बढ़ जाती है। सुबह की शुरुआत अदरक वाली चाय से ही होती है और शरीर में ताजगी महसूस होती है।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही जब गले में कुछ परेशानी हो जाती है तो भी हम अदरक का ही सेवन करते हैं साथियों। जैसे कि जब गला बैठ जाए या फिर खराश महसूस हो तो अदरक का उपयोग हर घर में किया जाता है।
0: बिल्कुल
1: जी हाँ, अदरक और शहद का जो मिश्रण है उसे मिलाकर एक पेस्ट बनाना पुराने समय से लोकप्रिय और घरेलू उपाय माना जाता है।
0: बिल्कुल जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे, लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हुए हम बढ़ना चाहेंगे हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हमारी स्वास्थ्य प्रद बातें चल रही है रसोई में मौजूद औषधियों को लेकर।
1: बिल्कुल
0: जी हाँ, जैसा कि हमने गीत से पहले हल्दी के बारे में जाना था और हम गीत से पहले श्रोता साथियों अदरक के औषधीय गुणों के बारे में बात कर रहे थे।
1: जी जी,
0: यही अगर बात करें कि ये पाचन के लिए कैसे लाभकारी है तो आजकल अनियमित खानपान के कारण पाचन संबंधित कई समस्याएं बढ़ रही है। अंजलि जी और मनीषा
1: जी, हाँ,
0: ऐसे समय में अदरक को भोजन का हिस्सा बनाना हमारे श्रोता साथियों के लिए लाभदायक होगा। साथ ही अगर बात करें बरसात के मौसम की, तो साथियों बरसात के मौसम के दिनों में संक्रमण और मौसम बीमारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे समय में अगर आप चाय, काढ़े और भोजन में अदरक का सेवन करेंगे साथियों, तो ये आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर रखेगा।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल कशिश। यही अगर हम बात करें लहसुन की, तो हम देखते हैं कि लहसुन का स्वाद और सुगंध भोजन को विशेष बनाते हैं। इसके बिना कई व्यंजन श्रोता साथियों अधूरे लगते हैं। हम देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में लहसुन का उपयोग लंबे समय से घरेलू उपचारों के रूप में किया जाता रहा है।
0: बिल्कुल,
1: बुजुर्ग अक्सर इसके नियमित सेवन की सलाह देते हैं साथियों। साथ ही श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि सर्दियों में लहसुन का उपयोग बढ़ जाता है।
0: बिल्कुल,
1: कई लोग लहसुन की चटनी, सूप और सब्जियों का सेवन करते हैं। श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि लहसुन को शरीर को सक्रिय और ऊर्जावान बनाए रखने का खाद्य पदार्थ भी कहा जाता है।
2: बिल्कुल,
1: यही कारण है श्रोता साथियों कि लोग इसे अपने खाने में शामिल करते हैं।
2: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि हल्दी, अदरक और लहसुन तीनों अलग अलग गुणों वाली चीजें हैं, लेकिन जब ये हमारे दैनिक भोजन का हिस्सा बनती है तो स्वास्थ्य को कई प्रकार के लाभ पहुंचाती है।
1: बिल्कुल,
2: जैसे कि कशिश, ये रसोई में आसानी से उपलब्ध होती हैं, इनका उपयोग करना सरल है, ये भोजन का स्वाद बढ़ाती हैं, परिवार के सभी सदस्य इनका उपयोग कर सकते हैं और ये हमारी पारंपरिक जीवन शैली का हिस्सा भी है।
1: बिल्कुल,
2: कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग फास्ट फूड और पैकेट वाले खाद्य पदार्थों की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं।
0: जी हाँ,
2: इसके कारण स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे समय में हमें अपनी परंपराओं, घरेलू ज्ञान की ओर फिर से ध्यान देना चाहिए।
0: बिल्कुल,
2: यदि हम अपने भोजन में प्राकृतिक चीजों को शामिल करें तो स्वास्थ्य को बेहतर रखने में सहायता मिल सकती है।
0: जी हाँ,
2: हल्दी, अदरक और लहसुन जैसे साधारण पदार्थ हमें यह सिखाते हैं कि स्वस्थ रहने के लिए हमेशा महंगे साधनों की आवश्यकता नहीं है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। अब यही श्रोता साथियों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि इन तीनों का सेवन करने के लिए कुछ सावधानियां हैं जो हमें बरतनी है। क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं अंजलि जी, कि किसी चीज की अति हमारे स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी हो सकती है, तो ऐसे में श्रोता साथियों, प्राकृतिक चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होती हैं, लेकिन किसी भी चीज का बहुत ज्यादा उपयोग करना या ज्यादा सेवन करना उचित बात नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आप इसका संतुलित मात्रा में ही सेवन करें। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो पहले डॉक्टर से सलाह ले लें, फिर ही इन खाद्य पदार्थों का आप सेवन करें।
1: जी हाँ,
0: साथ ही घरेलू उपायों पर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए साथियों। बच्चों और बुजुर्गों की अगर बात करें तो उनके लिए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है, और स्वस्थ जीवन शैली के साथ ही हम इनका सेवन कर सकते हैं साथियों।
1: बिल्कुल जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल

0: अस्पतालों की हमें जरूरत होती है। लेकिन श्रोता साथियों, हमारी रसोई केवल भोजन बनाने का स्थान नहीं है बल्कि स्वास्थ्य का खजाना भी है। हल्दी, अदरक और लहसुन जैसी साधारण दिखने वाली चीजें हमारे दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि हम संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और अच्छी दिनचर्या के साथ इसका सही उपयोग करें तो स्वस्थ जीवन की और एक मजबूत कदम बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो हमें श्रोता साथियों इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हमारी रसोई में बहुत सी ऐसी औषधीय चीजें उपलब्ध है जिनका सेवन करके हम हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं।
2: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी बातें ढेर सारी हो चुकी हैं और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
1: जी हाँ,
2: तो विदा हम जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे दोस्तों को एक और प्यारा सा गीत यहाँ पर सुनवा दें हम।
1: जी बिल्कुल कशिश, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य यहीं समाप्त होता है। अंत में साथियों आपसे यही कहना चाहेंगे कि हल्दी, अदरक और लहसुन भारतीय रसोई की ऐसी अमूल्य औषधियां हैं जो भोजन का स्वाद बढ़ाने के साथ साथ स्वास्थ्य की भी रक्षा करती हैं।
1: जी हाँ
0: साथियों, हल्दी सूजन और संक्रमण से बचाती है, तो वहीं अदरक जो है वो पाचन और श्वसन तंत्र को मजबूत बनाती है, और जो लहसुन है वो साथियों रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। तो ऐसे में हम कार्यक्रम के माध्यम से कह सकते हैं कि इन तीनों चीजों का नियमित और संतुलित उपयोग अनेक रोगों से हमारे स्वास्थ्य का बचाव कर सकता है।
1: बिल्कुल। तो श्रोता साथियों, जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी बातें ढेर सारी हो गई हैं और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता बताना चाहेंगे ताकि आज का ये कार्यक्रम उन्हें कैसा लगा उसके लिए वो राय सुझाव हमें पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
2: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ,
2: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
2: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए स्वास्थ्यप्रद विषय को लेकर। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को,
2: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को,
1: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
3: नमस्कार।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि हम कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर जब भी हाजिर होते हैं तो बात करते हैं एक नए विषय को लेकर। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसे ही नए विषय को लेकर बातचीत होगी। साथियों, बात करेंगे मेहनत के फल को लेकर, क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि जीवन में हर इंसान सफलता चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके सपने पूरे हो और उसका परिवार खुश रहे, समाज में उसे सम्मान मिले और उसके जीवन में सुख समृद्धि आए। लेकिन दोस्तों, इन सब के पीछे जो सबसे बड़ी ताकत काम करती है वह है हमारी मेहनत। हम देखते हैं कि मेहनत वह चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देती है। साथियों, मेहनत वह दीपक है जो अंधेरे रास्तों में भी रोशनी कर देती है। और मेहनत का फल वह सिर्फ सफलता नहीं देता साथियों, बल्कि इंसान को आत्मविश्वास, सम्मान और संतोष भी देता है। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही बात करेंगे दोस्तों कि मेहनत का फल इतना महत्वपूर्ण क्यों होता है और मेहनत इंसान की जिंदगी को कैसे बदलती है। साथ ही क्यों मेहनत करने वाला इंसान कभी वास्तव में हारता नहीं है। साथियों, तो ऐसी ढेर सारी बातें होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो पहले सुनते हैं श्रोता साथियों उसी दस्तूर को निभाते हुए एक प्यारा सा गीत। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुकी है और बातचीत की शुरुआत भी हमारी हो चुकी है कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं मेहनत के फल को लेकर। साथियों, जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बताया था कि मेहनत वह चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे को भी खोल देती है, साथ ही मेहनत वह दीपक है जो अंधेरे के रास्ते में भी रोशनी भर देती है। साथियों, अब यही साथियों अगर बात करें कि मेहनत सफलता की पहली सीढ़ी कैसे मानी जाती है, तो श्रोता साथियों, दुनिया में ऐसा कोई महान इंसान नहीं है जिसने बिना मेहनत की बड़ी सफलता प्राप्त की हो। आपको बताना चाहूंगी कि हर सफल व्यक्ति के पीछे वर्षों की मेहनत, संघर्ष और धैर्य छिपा हुआ होता है। दोस्तों, जैसे कि एक किसान को ही देख लीजिए आप, वह तपती धूप में खेत जोतता है, बीज बोता है, पानी देता है और फसलों की रक्षा करता है। दोस्तों, कई महीनों के मेहनत के बाद जब खेत में सुनहरी फसल लहराती है तब उसे अपनी मेहनत का फल मिलता है। ठीक उसी तरह विद्यार्थी भी रात रात भर पढ़ाई करते हैं, खिलाड़ी लगातार अभ्यास करता रहता है और जो मजदूर है वो दिन भर पसीना बहाता है तब जाकर उन्हें सफलता मिलती है। साथियों, यानी कि कहने का मतलब यही है कि मेहनत के बिना जीवन में कोई भी बड़ा लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए श्रोता साथियों, मेहनत को सफलता की पहली सीढ़ी माना जाता है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि मेहनत जो है वो इंसान को मजबूत भी बनाती है। वो कैसे साथियों? तो मेहनत सिर्फ पैसे कमाने का माध्यम नहीं होती साथियों, ये इंसान के व्यक्तित्व को भी मजबूत बनाती है। जैसे कि जो इंसान मेहनत करता है वह संघर्ष करना भी सीख जाता है, उसे मुश्किलों से डर नहीं लगता, वह हर परिस्थिति का सामना करना सीख जाता है। और कई बार तो दोस्तों जीवन में ऐसे मौके भी आते हैं जब सब कुछ हमारे खिलाफ हमें दिखाई देता है, लेकिन मेहनती इंसान हार नहीं मानता दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि उससे ये पता होता है कि मेहनत करने से ही उसे सफलता मिलेगी। और फिर वह बार बार कोशिश करता है और फिर एक दिन उसे इतने संघर्ष के बाद सफलता मिल ही जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों कार्यक्रम के माध्यम से हम ये समझ पा रहे हैं कि मेहनत इंसान को मजबूत बनाती है और अगर सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत और संघर्ष तो करना ही होगा दोस्तों, क्योंकि मेहनत करते करते ही सफलता मिलती है। अगर आप सोच ले श्रोता साथियों कि आपको मेहनत नहीं करनी है लेकिन आपको सफलता भी चाहिए, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कार्यक्रम के माध्यम से कि अगर हमें सफलता चाहिए, अगर हमें परिणाम अच्छे चाहिए तो हमें मेहनत तो करनी ही होगी, साथ ही संघर्ष भी करना होगा, असफलताओं को भी झेलना होगा दोस्तों। क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेहनत करते हैं और उन्हें असफलता मिलती है और फिर वो असफलता से हार मान जाते हैं और निराश होकर बैठ जाते हैं और खुद से ये कहते हैं कि अब मैं आगे कोशिश नहीं कर सकता या कर सकती। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपसे कहना चाहूंगी कि मेहनत करने पर जरूरी नहीं है कि पहली बार में ही आपको सफलता मिल जाए। दोस्तों, असफलता सफलता तक पहुंचने का रास्ता होती है, इसलिए अगर आप भी किसी कार्य में मेहनत कर रहे हैं साथियों, तो सफल होने के लिए आपको असफलता को भी झेलना होगा। इसलिए असफलता से घबराए नहीं बल्कि असफलता को सफलता का एक अवसर समझे श्रोता साथियों। तो इस तरीके से जैसा कि कार्यक्रम में मेरी आपसे बातें बहुत अच्छी चल रही है और हम मेहनत के फल को जान रहे हैं श्रोता साथियों, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

दोस्तों इस गीत के बाद फिर से रुक करना चाहूंगी कार्यक्रम सपनों की उड़ान की ओर। जैसा कि दोस्तों बातें हम कर रहे हैं मेहनत से लेकर सफलता तक के सफर की, और इसी सफर को अगर श्रोता साथियों आगे बढ़ाऊं तो गीत से पहले जैसा कि हमने जाना था कि मेहनत सफलता की पहली सीढ़ी होती है और मेहनत जो है वो इंसान को मजबूत भी बनाती है। यही श्रोता साथियों आपसे कहना चाहूंगी कि मेहनत का फल देर से जरूर मिलता है लेकिन मिलता जरूर है, क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं कि आज की दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो तुरंत सफलता पाना चाहते हैं। वे ऐसा चाहते हैं कि बिना मेहनत के सब कुछ जल्दी मिल जाए, लेकिन दोस्तों जीवन का सच्चा नियम ये है कि मेहनत का फल समय लेकर आता है। बीज बोने के तुरंत बाद पेड़ नहीं बनता साथियों, उसे मिट्टी में रहना पड़ता है, धूप सर्दी मौसम की मार झेलनी पड़ती है, तब जाकर श्रोता साथियों वो फल देता है। इसी तरह इंसान को भी दोस्तों मेहनत का परिणाम धीरे धीरे मिलता है। कई बार लोग मेहनत करके थक जाते हैं क्योंकि उन्हें तुरंत सफलता नहीं मिलती। ऐसे में हम

ये याद रखना चाहिए दोस्तों कि हर सच्ची मेहनत भविष्य में जरूर रंग लाती है, इसलिए हमेशा दोस्तों असफल होने पर निराश नहीं होना है, बल्कि सफलता की ओर बढ़ने के प्रयास जारी रखने हैं। इसी के साथ दोस्तों कहावत तो आपने सुनी होगी कि मेहनत का फल मीठा होता है या फिर धैर्य का फल मीठा होता है। तो दोस्तों जो चीज बिना मेहनत के मिलती है उसकी कीमत इंसान जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जो सफलता हमें संघर्ष मेहनत से मिलती है और उसके लिए हमने धैर्य रखा हो, बहुत लंबे समय तक उसका इंतजार किया हो साथियों, तो उस चीज को, उस सफलता को पाने का आनंद हमें बहुत अलग मिलता है। जैसे कि दोस्तों अगर उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं, तो एक गरीब परिवार का बच्चा जब मेहनत करके नौकरी पाता है तो उसकी खुशी सिर्फ उसकी नहीं होती बल्कि पूरे परिवार की होती है। एक खिलाड़ी जब सालों के अभ्यास के बाद मेडल जीतता है तो उसके आंसू उसकी मेहनत की कहानी बताते हैं। दोस्तों मेहनत से मिली सफलता इंसान को गर्व देती है, उसे एहसास होता है कि उसने अपने दम पर कुछ हासिल किया है और उसे एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। हम देखते हैं कि जो इंसान मेहनत करता है दोस्तों, उसे खुद पर भरोसा होने लगता है, क्योंकि वह जानता है कि अगर आज मुश्किल है तो कल वह अपनी मेहनत से स्थिति बदल सकता है। मेहनती इंसान दूसरों पर निर्भर नहीं रहता दोस्तों, वह अपनी क्षमता पहचानता है और यही आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि जो किस्मत में तुम्हारे लिखा होगा वो तुम्हें मिल ही जाएगा, लेकिन दोस्तों मेहनत एक ऐसी ताकत है जो किस्मत की दिशा भी बदल सकती है। अगर दोस्तों सिर्फ किस्मत से ही सब कुछ मिल रहा होता तो मेहनत करने वाले किसान खेत में क्यों जाते, विद्यार्थी पढ़ाई क्यों करते और खिलाड़ी अभ्यास क्यों करते। दोस्तों सच तो ये है कि मेहनत ही किस्मत को अवसर में बदलती है, इसलिए श्रोता साथियों मेहनत करना बहुत जरूरी है। इसी के साथ आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता, उसके साथ धैर्य रखना भी जरूरी होता है, क्योंकि दोस्तों कई लोग शुरुआत में बहुत मेहनत करते हैं लेकिन परेशानी आते ही हार मान लेते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सफल वही व्यक्ति होता है जो लगातार मेहनत करता रहे। तो ऐसे में हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे श्रोता साथियों आपसे यही कहना चाहेंगे कि धीरे धीरे चलने वाला इंसान भी मंजिल तक पहुंच जाता है, लेकिन रुकने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता। इसलिए श्रोता साथियों यही समय है जब आप अपनी जिंदगी की दिशा तय कर रहे हैं। अगर आज आप मेहनत करेंगे, कुछ नया सीखेंगे और अपने समय का सही उपयोग करेंगे दोस्तों, तो आने वाला भविष्य उज्जवल होगा आपका। मोबाइल, आलस्य और समय की बर्बादी दोस्तों हमें और हमारे सपनों को कमजोर कर देती है, लेकिन मेहनत को अपना साथी अगर हम बना लें तो जीवन में हम आगे निकल सकते हैं। याद रखिए, आज की मेहनत ही आपकी कल की पहचान बनेगी, क्योंकि दुनिया मेहनती लोगों का ही सम्मान करती है साथियों। जैसे कि एक ईमानदार मजदूर, किसान, एक शिक्षक, डॉक्टर हो या कलाकार, हर वह इंसान सम्मान के योग्य है साथियों जो मेहनत से अपना काम करता है। मेहनत इंसान को सिर्फ धन नहीं देती बल्कि समाज में पहचान भी देती है। इसलिए कार्यक्रम के अंत में आपसे यही कहना चाहूंगी कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती दोस्तों, वह या तो सफलता देती है या फिर सफलता तक पहुंचने का अनुभव देती है। इन्हीं महत्वपूर्ण बातों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी, क्योंकि देख रही हूं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। तो श्रोता साथियों विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी यहाँ पर एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यही समाप्त होता है। हमें उम्मीद है साथियों कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: हमरो हमरो हमरो घनी बोने पूछे हैं, जमी माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनावो पड़े, सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
4: तो हमरो बोनू अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है, पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरा ने हाथे मली ने जावो है, फार्म भरो, जानकारी लो, जमी माते नाम लकड़वो काटो नती, जैवरे अधिकार हंग्रा अपनावे, जानकारी सबनु हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
3: होवे भाइयों ने बहनों, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो।
5: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
6: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

सुबह सुबह एक ख्वाब की दस्तक पर दरवाजा खोला, देखा सरहद के उस पार से कुछ मेहमान आए हैं। आंखों से मानूस थे सारे, चेहरे सारे सुने सुनाए, पांव धोए, हाथ धुलाए, आंगन में आसन लगवाए और तंदूर पे मक्की के कुछ मोटे मोटे रोट पकाए। पोटली में मेहमान मेरे पिछले

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्यघर।
2: श्रोताओं, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आपको जरूर पसंद आए होंगे। आपको हमारे आज के कार्यक्रम कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागुर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए, हमारा नंबर है 9460051234। तो श्रोताओं, दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी जागृति को सभा समाप्त करने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ हम दोबारा मिलेंगे अगली सभा में। तब तक के लिए नमस्कार।